श्रोताओं सुप्रभात। मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज़ और FM 14.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आज दिन बुधवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 13 मई सन 2026। इस समय स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:55 और 50 सेकंड्स हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा।

0: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सवेरे के 6 बजने को हैं। कुछ ही क्षणों में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र के माध्यम से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय पात्र परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
2: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
1: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवीके सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान के दौरे पर रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। कल राज्य में सबसे गर्म स्थान बाड़मेर रहा, जहां अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स की टीम 15वें ओवर में 86 रन पर ही सिमट गई। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

0: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details, log on to www.ddindia.com।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
4: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
5: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
4: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान, केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
5: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
4: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
5: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
6: ईश्वर वो नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है।

0: भाव से जो भी भजे तो समझे भव से पार है। भगवान ये भी कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्यावर नहीं दूंगा। इतना सुनते ही भगवान को लगा ये जो सारी इसकी व्यवस्थाएं थी वो बाह्य थी, आंतरिक नहीं थी। आंतरिक पवित्रता के बिना पवित्र भाव का उदय हो जाना यह संभव नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है तब मैं चलता हूँ। तो दुर्योधन ने कहा हमने इतने भोज्य पदार्थ बनवाए हैं 56 प्रकार के, आप इसे पा कर जाइए। उन्होंने कहा नहीं, मेरा निमंत्रण विदुर के वहाँ है। उसी सभा में विदुर जी बैठे हैं, छोटे से नीचे सिंहासन पर विराजमान। विदुर जी ने भगवान को देखा, कांपने लगे, दुर्योधन को देख रहे हैं कि प्रभु ये क्या कह रहे हो, लेकिन कोई मेरे घर प्रसाद पाने आया तो सौभाग्य है, तो विदुर जी नहीं कर पा रहे। विदुर जी को रोका दुर्योधन ने और भगवान सीधे विदुर जी के घर पहुंच गए। बाहर दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? भगवान कहते हैं मैं कृष्ण, द्वारिका से आया हूँ। इतना सुनकर के विदुरानी की पत्नी को पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि मेरे घर कृष्ण आ सकते हैं। दरवाजा खोला, सामने प्रभु को पाया तो प्रभु के हाथ को स्पर्श करती, प्रभु सच में मेरे घर आए हो आप? भगवान ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। अगर भाव है ना तो भगवान भोजन मांग के पालेंगे, और भाव नहीं है तो कितना भी कुछ अर्पण करते रहो। और भाव है कि नहीं यह कोई बता भी नहीं सकता, यह एक ऐसा आंतरिक विषय है जिससे आप ही विज्ञ और अभिज्ञ दोनों स्थितियाँ आपकी ही हैं। भगवान अंदर पहुँचे और उन्होंने जल्दी से शीघ्रता से एक शिला पर बिठाया और केले का फल लेके आए। और संयोग देखिए, चाहे प्रेम में चाहे भाव में, अक्सर भाव में व्यक्ति होता है तो उसकी क्रियाएं थोड़ा ऐसी इधर उधर हो जाती हैं। तो विदुरानी केले का छिलका प्रभु को पवाने लगी और केला स्वयं पाने लगी। भगवान के नेत्र से भी अश्रु गिर रहे हैं और विदुरानी के भी नेत्र से अश्रु गिर रहे हैं। अचानक विदुर जी महाराज दौड़ते हाँपते भागते हुए आए और जब उन्होंने दशा देखी कि विदुरानी भगवान को केले का छिलका दे रही हैं और बड़े प्रेम से बड़े चाव से पा रहे हैं, प्रभु ऐसा लग रहा है कि उस केले के छिलके में उस केले से भी अधिक स्वाद हो। अचानक हाथ पकड़ा विदुर ने विदुरानी का, क्या कर रही हो? जिस प्रभु ने 56 प्रकार के भोग का त्याग कर दिया हो कि मैं विदुर के वहां प्रसाद पाऊंगा, उस भगवान को तुम केले का छिलका खिला रही हो? विदुरानी सहम गई, उन्होंने भगवान से क्षमा याचना किया कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो, गलती हो गई। भगवान ने विदुर जी से कहा कि विदुर, जो स्नेह, जो प्रेम, जो भाव था, वह प्रेम तुमने छीन लिया। जो आनंद उस केले के छिलके में आ रहा था, वह आनंद इस फल में नहीं आ रहा। इस कथा का आशय मात्र इतना है कि अगर भाव प्रधान है, भाव अगर आपका दिव्य है, तो निश्चित है आप कुछ भी अर्पण करो उस परमात्मा तक पहुंच ही जाता है।
1: ये था आज का चिंतन बिंदु। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे विदुषी पद्मा तलवलकर से राग केदार में गायन। इसके अतिरिक्त पंडित हरिप्रसाद चौरसिया से राग झिंझोटी में बांसुरी वादन।

शाम 5:35 पर ग्राम जगत में आज आप सुनेंगे डॉक्टर विमल कुमार मोदी से विनय कुमार की बातचीत। बातचीत का विषय होगा पानी और मिट्टी से प्राकृतिक चिकित्सा।

दिन में 1:15 पर स्वास्थ्य कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे डॉक्टर आलोक सिंह से मनोज यादव की बातचीत। बातचीत का विषय रहेगा लीवर से बीमारियों, कारण, लक्षण और उपचार।

अभी आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से आज का संगीतमय पाठ।

पुत्र वेओ की कल्पना ने महाराज दशरथ से मानो उनकी वाक शक्ति छीन ली है। उनके मन में एक ही विचार उमड़ घुमड़ रहा है कि जगत में चाहे उनका सुयश नष्ट हो जाए, पूर्व पुण्यों द्वारा अर्जित स्वर्ग भले ही ना मिले, बस राम किसी भी तरह उनकी आंखों से दूर ना हो। किंतु श्री राम को पिता के वचन के मर्यादा का पालन करने के लिए अपने वन गमन की बात अत्यंत तुच्छ सी लगती है। पिता से उनका अनुरोध है कि वे पुत्र स्नेह के कारण दुखी ना हों। इस पृथ्वी पर उस पुत्र का जीवन धन्य है जिसके आचरण से पिता को आनंद की प्राप्ति हो। वे पिता को धीरज बंधाते हैं कि उनकी आज्ञा का पालन कर शीघ्र ही लौट आवेंगे। उधर राम वन गमन के समाचार से अयोध्या नगरी में विषाद छा गया है। उसकी दशा ऐसी हो गई है जो जंगल की आग में झुलस गए पेड़ पौधों की होती है। जो भी ये समाचार सुनता है सिर धुनने लगता है। लोग कैकई के लिए अपशब्द कह रहे हैं जिसने भरे पूरे घर में आग लगा दी है, जिसने पत्ते पर बैठकर पेड़ को ही काट डाला है। कभी शायद सत्य ही कहते हैं कि स्त्री के मन की गति पकड़ में नहीं आती। जैसे आग सब कुछ भस्म कर सकती है, समुद्र में सब कुछ समा सकता है, उसी प्रकार अबला कहलाने वाली प्रबल स्त्री क्या कुछ नहीं कर सकती।

0: ये था आज का मानस गान। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
1: स्वच्छता से ही मिलेगी खुशहाल और सुरक्षित जिंदगी।
2: स्वच्छता का संकल्प लाओ, गंदगी को दूर भगाओ,
1: कूड़ेदान में कूड़ा डालो, साफ सफाई का ध्येय अपनाओ,
2: हर गली हर मोहल्ला हो साफ। स्वच्छता से ही मिलेगी खुशियों की सौगात।
1: स्वच्छता का ये संकल्प लें, गंदगी को दूर भगाएं,
2: हर जगह स्वच्छता का दीप जलाएं, स्वस्थ और सुंदर जीवन को अपनाएं।
3: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
5: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
5: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
5: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
4: For details, log on to www.ddindia.com।
3: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
6: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
7: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
6: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान, केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
7: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
6: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
7: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़कम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव इडप्पार्नी के पलानीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवीके सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना। अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवीके सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच कराने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा है कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा, सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान दौरे पर रहेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के अल्पकालीन अनुमानों और चौथी तिमाही के अनुमान जारी करने की तिथि संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दी है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि 7 जून को अवकाश होने पर अंतिम अनुमान पिछले कार्य वर्ष पर जारी किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये बदलाव आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। फलौदी, जैसलमेर, बीकानेर और चित्तौड़गढ़ में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। वहीं जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिन तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. The Central Bureau of Investigation, CBI, has taken into its custody Shubham Khairnar in connection with the alleged NEET paper leak. Shubham was detained from Nashik in Maharashtra yesterday by the Crime Branch Unit of Nashik Police on request of Rajasthan Police. The NEET UG 2026 exam for admission to undergraduate courses in medical colleges held on 3rd of this month was cancelled yesterday amid allegations of paper leak. The government asked the CBI to carry out a comprehensive inquiry into the irregularities. In a related development, a parent of a NEET UG 2026 candidate has filed a complaint with the Lathur SP office, alleging that a private coaching institute conducted a mock test before the exam, in which 42 questions reportedly matched those asked in the actual NEET paper. SP Amol Tambe directed the subdivisional police officer to conduct an immediate inquiry and initiate legal action against those found guilty. Earlier, Rajasthan Police Special Operations Group detained 15 people during investigations into the suspected network and money trail. The Special Operations Group yesterday detained an alleged mastermind, Manish, from Jaipur. In Tamil Nadu, the TVK government is scheduled to prove its majority in the assembly today. Chief Minister C. Joseph Vijay has been holding meetings with leaders of supporting parties to consolidate support ahead of the floor test. Along with the backing from allies, the TVK government has secured the support from the breakaway faction of AIADMK and the lone MLA of Amma Makkal Munnerettra Kadagam, S. Kamaraj. The TVK now has support of around 150 MLAs in the assembly. Meanwhile, in a dramatic turn of events in the political situation in Tamil Nadu yesterday, the AIADMK split into two groups over extending support to the government. The faction led by former Chief Minister and Party General Secretary Idappadi Palaniswamy has directed party MLAs not to support the TVK government. A high-level Indian parliamentary delegation led by Lok Sabha Speaker Om Birla will visit Bhutan from today with the main objective of further strengthening India-Bhutan relations. The 51-member delegation includes MPs from Rajya Sabha and Lok Sabha and officials from the Ministry of External Affairs. The delegation is expected to hold discussions on various aspects of Bhutan-India relations and ways to enhance cooperation between the two neighbouring countries. The delegates will also meet the King of Bhutan and the Prime Minister of Bhutan during the visit. In West Bengal, following the change of government, the state police has adopted a stringent stance regarding law and order and past cases of political violence. In this regard, ADG Law and Order issued a detailed directive yesterday to all police commissioners, police superintendents and railway police authorities mandating a series of immediate actions. The directive orders a fresh review of all cases related to violence following the 2021 assembly elections, including those which were final reported.

0: अभी आप सुन रहे थे देशगान। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in। देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
2: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
1: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
2: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
1: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
2: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
3: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे।
4: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण

0: पेड़ को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। CBI ने कथित नीट पेपर लीक के संबंध में दर्ज किया मामला, देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। पेपर लीक के आरोपों के कारण 3 मई को आयोजित हुई नीट UG परीक्षा रद्द, अलग से अधिसूचित की जाएगी नई परीक्षा तिथि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक कर ईंधन की बचत और संसाधनों के बेहतर उपयोग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील से जुड़ने की पहल की। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की फ्लीट में 50% कटौती सहित दिए कई अहम निर्देश। और मौसम विभाग ने कल से मौसम साफ होने की संभावना जताई, आने वाले दिनों में तापमान बढ़ने के संकेत। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस प्रकरण में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट UG परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष CBI टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी। एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
3: हमने इस मैटर को CBI को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
2: इस बीच NTA ने स्पष्ट किया है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर से पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी। एक रिपोर्ट।
4: NTA ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे और दोबारा होने वाली परीक्षा में उपयोग किए जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर से पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
2: सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में FIR दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई और मामले की जांच जारी है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में ईंधन की बचत और संसाधनों के बेहतर उपयोग को लेकर प्रदेशवासियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान से जुड़ने की अपील के साथ ही कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
5: राज्य सरकार की तैयारियों के संबंध में कल अपने सरकारी आवास पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने स्वयं और मंत्रियों की फ्लीट में तत्काल 50% तक कटौती करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत अनावश्यक वाहनों को हटाया जाएगा। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से भी जिम्मेदारी निभाने को कहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सरकारी कार्यों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक उपयोग किया जाए और सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे मनाया जाए। साथ ही मंत्री, सांसद और विधायक भी सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। श्री योगी ने कहा कि सरकारी बैठकों, सेमिनारों और कार्यशालाओं का अधिक से अधिक आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया जाए जिससे अनावश्यक यात्रा और ईंधन की खपत कम हो सके। इसके अलावा उन्होंने वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को भी प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से भी अपील की है कि वे मेट्रो, बस, साइकिलिंग और कार पूलिंग जैसे विकल्प अपनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए सभी को सतर्क और जिम्मेदार व्यवहार अपनाने की आवश्यकता है। समाचार अरुण।
2: प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कल गोरखपुर में संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में सरकार, उद्योग जगत, निजी ITI संचालकों और प्रशिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों ने युवाओं को रोजगार परक और भविष्य आधारित प्रशिक्षण उपलब्ध कराने को लेकर मंथन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि कौशल विकास संस्थान आत्मनिर्भर भारत की मजबूत आधारशिला हैं। गोरखपुर के रामगढ़ ताल में आज से अस्मिता नेशनल महिला रोइंग लीग का शुभारंभ होगा। 5 दिवसीय इस प्रतियोगिता में मेजबान यूपी और तेलंगाना सहित विभिन्न राज्यों की 16 टीमों के 275 खिलाड़ी शामिल होंगे। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में आज भी कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने पूर्वी जिलों में कहीं कहीं बिजली गिरने और तेज झोंकेदार हवा चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। इस बीच प्रदेश के पश्चिमी जिलों में कल हुई तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं और आसपास के जिलों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। एक रिपोर्ट।
6: बदायूं जिले में जमकर बारिश हुई जिस कारण जगह जगह पेड़ टूटने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। जिले के कई इलाकों में अचानक घने बादलों के साथ आई तेज आंधी से जहां पेड़ टूटकर गिर गए वहीं तेज बारिश से मौसम सुहाना हो गया। साथ ही बारिश को देखते हुए किसानों ने भी खेतों की जुताई शुरू कर दी है। मौसम के लगातार करवट बदलने से लोगों को गर्मी से भी काफी राहत मिली है। मोहम्मद नईम, आकाशवाणी समाचार, बदायूं।
2: मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने आगामी दिनों में तापमान में बढ़ोतरी की संभावना व्यक्त की है।
7: आने वाले दिनों में अगर लखनऊ की बात करें तो मौसम साफ रहेगा और दिन में धूप खिलेगी, लेकिन तापमान ऐसा कोई एक्सट्रीम लेवल तक का नहीं पहुंचेगा। हालांकि तापमान में यहां धीरे धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम आने वाले दिनों के लिए पूरी तरीके से साफ है। अब यहां से धीरे धीरे तापमान में हल्की हल्की आने वाले दिनों में बढ़ोतरी होने की संभावना है।
2: आगरा जिले के कमला नगर थाना क्षेत्र में कल यमुना नदी में नहाने के दौरान 6 बच्चे डूब गए। पीएसी और गोताखोरों की रेस्क्यू टीम ने बच्चों को नदी से बाहर निकाल लिया। सभी बच्चों को गंभीर हालत में एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां उपचार के दौरान 4 बच्चों की मौत हो गई। अंतिम समाचार मिलने तक 2 बच्चों का उपचार जारी था। पुलिस उपायुक्त नगर सैयद अली अब्बास ने बताया कि सभी बच्चे एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आगरा आए थे। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सीबीआई ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक के संबंध में दर्ज किया मामला। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। पेपर लीक के आरोपों के कारण 3 मई को आयोजित हुई नीट यूजी परीक्षा रद्द। अलग से अधिसूचित की जाएगी नई परीक्षा तिथि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक कर ईंधन की बचत और संसाधनों के बेहतर उपयोग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील से जुड़ने की पहल की। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की फ्लीट में 50% कटौती सहित दिए कई अहम निर्देश। और मौसम विभाग ने कल से मौसम साफ होने की संभावना जताई। आने वाले दिनों में तापमान बढ़ने के संकेत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
8: मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम पूर्वा सुहानी।

कार्यक्रम का पहला गीत बाजी फिल्म से, आवाज गीता दत्त की। बोल साहिर के हैं और संगीत एसडी बर्मन का।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम पूर्वा सुहानी में लीजिए अब सुनिए पेइंग गेस्ट फिल्म से ये गीत। आवाजें किशोर कुमार और आशा भोसले की है। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं एसडी बर्मन।

0: और आइए अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में चलती का नाम गाड़ी, इस फिल्म का ये गीत।
1: एक लड़की भीगी भागी सी।
0: बोल मजरू सुल्तानपुरी के और संगीत सचिन देव बर्मन का।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details, log on to www.ddindia.com।
4: आकाशवाणी गोरखपुर से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम पूर्वा सुहानी। लीजिए अब सुनिए आशा भोसले की आवाज़ में हावड़ा ब्रिज, इस फिल्म का ये गीत।

0: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में सवेरे के 8 बजने को हैं। थोड़ी देर में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है।
2: मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। सहयोगियों के समर्थन के साथ साथ टीवी के सरकार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK से अलग हुए गुट का समर्थन प्राप्त है। इस बीच तमिलनाडु में AIADMK सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडप्पाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ नेता एग्री कृष्णमूर्ति ने चेतावनी दी है कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले किसी भी विधायक को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने SP वेलुमणि को AIADMK विधायक दल का नेता चुना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
1: वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने राज्य सरकार में IAS अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें पूर्व मुख्य सचिव एन मुरुगंदम और वित्त सचिव टी उदय चंद्रन शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्योतिषी रिकी राधान पंडित को विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किए जाने पर गठबंधन सहयोगी ने कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल और ज्योतिमणि ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाए, जबकि CPIM के राज्य सचिव पी शुनगमुगम ने कहा है कि कदम सरकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ है। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: पुदुचेरी में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। एन रंगासामी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 76 वर्षीय एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में यह 5वां कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष VP रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले श्री नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट UG परीक्षा कल पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द कर दी गई। नीट UG के एक उम्मीदवार के अभिभावक ने लातूर SP कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि एक निजी कोचिंग संस्थान ने परीक्षा से पहले एक मॉक टेस्ट आयोजित किया था, जिसमें कथित तौर पर 42 प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मेल खाते थे। इससे पहले राजस्थान पुलिस के विशेष जांच दल ने संदिग्ध नेटवर्क और धन के लेनदेन की जांच के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कल जयपुर से कथित मास्टरमाइंड मनीष को भी गिरफ्तार किया। इसी महीने की 7 तारीख को सीकर के करियर काउंसिलर राकेश कुमार समेत 5 लोगों को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन 4 नीट उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्य भर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मितव्ययिता के आह्वान पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया और साप्ताहिक वाहन मुक्त दिवस को प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। मुख्यमंत्री के काफिले में अब केवल 8 वाहन होंगे और कोई भी वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो और बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद GDP के वार्षिक और चौथी तिमाही के अनुमानों की प्रकाशन तिथि को

0: संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये संशोधन आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर जाएगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। युगांडा के राष्ट्रपति यूवेरी मुसवेनी ने जनवरी में हुए चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अपने 7वें कार्यकाल की शपथ ली। राष्ट्रपति मुसवेनी पिछले 40 साल से राष्ट्रपति पद पर हैं। श्री मुसवेनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड्स में आयोजित समारोह में हजारों लोगों के बीच पद की शपथ ली। श्री मुसवेनी ने 71% से अधिक वोट हासिल किए। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मानसून आ सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कल भी इसी क्षेत्र में था और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ था। इस बीच राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी जिलों के लिए आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 4 पश्चिमी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 6 दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन के साथ रातें भी तप रही हैं और कई स्थानों पर रात का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी की इन परिस्थितियों से जनजीवन पर खासा असर हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन तापमान के यही हालात रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: महाराष्ट्र के सांगली जिले की जाट तहसील में कल एक धार्मिक सभा के दौरान दीवार गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 15 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में सेना के कल पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास कृष्णा घाटी सेक्टर में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। हमारे संवाददाता के अनुसार सेना को मिली सूचनाओं के बाद शाम करीब 4 बजे नियंत्रण रेखा के अंदर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इस पर सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। खेलों में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में फोगाट ने कोरिया के सेंगुमिन ली को पराजित किया। वहीं 8 भारतीय लड़कियों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फाइनल में जगह बनाई और 4 ने कांस्य पदक जीते। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। नीट यूजी 2026 की परीक्षा निरस्त करने का समाचार आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। अमर उजाला लिखता है सीबीआई को पेपर लीक की जांच, 1 गिरफ्तार, 20 संदिग्ध हिरासत में। दैनिक भास्कर की खबर है 22 लाख अभ्यर्थियों से खिलवाड़, परीक्षा दोबारा होगी, नई तारीखों की घोषणा जल्द। कल से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की समिट, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है पीएम से भी संयुक्त मुलाकात, खाड़ी संकट के बीच दिल्ली पर दुनिया की निगाहें। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के 30 विधायकों का टीवीके को समर्थन का ऐलान, विजय आज बहुमत साबित करेंगे, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। अमर उजाला ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, नया भारत और बदलती सियासी समझ। संपादक का कहना है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खबरें। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय की क़यादत वाली नौमुंतखबा टीवी के सरकार आज असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित करेगी। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के रहनुमा एन रंगासामी आज पुदुचेरी के वज़ीर आला का हलफ लेंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकारों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई किफ़ायत शहरी की अपील के बाद ईंधन की खपत से मुतालिक इकदामात पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। मरकज़ ने सोने और दीगर कीमती धातों पर दरामदाती ड्यूटी में इजाफा कर दिया है। आईएमडी ने इस साल मानसून जल्द शुरू हो जाने की पेशगोई की है। और आईपीएल में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। तमिलनाडु में आज टीवी के हुकूमत असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित करेगी। वज़ीर आला सी जोसेफ विजय इस आजमाइश से पहले हिमायत हासिल करने की गरज से अपनी हामी पार्टियों के रहनुमाओं के साथ मीटिंग्स करते रहे हैं। मज़ीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: तमिलनाडु में हुकूमत तश्कील देने के लिए कांग्रेस, VCK, CPI, CPIM और IUML जैसी इत्यादि पार्टियों के साथ TVK के पास 120 अरकान की अक्सरियत है। सरकार की हलफबरदारी के बाद अब TVK को AIADMK के 29 अरकान असम्बली की हिमायत हासिल है जो इस पार्टी से अलग हुए हैं। TVK को अम्मा मक्कल मुनेत्र कडगम के एक MLA एस कामराज की भी हिमायत हासिल है। अब असम्बली में TVK के पास कुल 151 अरकान हैं। जनरल सेक्रेटरी ई पलानीस्वामी की क्यादत वाली AIADMK ये कह चुकी है कि जो लोग व्हिप के जाब्तों पर अमल नहीं करेंगे उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। इस पार्टी की बुनियाद MGR ने रखी थी और इसे फिलहाल एक बड़े सियासी बुहरान का सामना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: ऑल इंडिया NR कांग्रेस के रहनुमा एन रंगासामी आज पुडुचेरी के वज़ीर आला का हलफ लेंगे। एक सादा सी तकरीब में जो लोक निवास में मुनाकिद की जाएगी, पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के कैलाश नाथ जनाब रंगासामी को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: पुडुचेरी में हलफ बरदारी की तकरीब मुनाकिद की जाएगी। एन रंगासामी वज़ीर आला के ओहदे की एक बार फिर जिम्मेदारी संभालने को तैयार है। 76 साल सियासी कदावर शख्सियत की वज़ीर आला के तौर पर यह पांचवीं मुद्दत होगी। इस तकरीब में वज़ीर आला के साथ साथ कुछ वजीरों को भी हलफ दिलाया जाएगा। मरकजी वजीर और BJP के चुनाव इंचार्ज मनसुख पांडविया, BJP के कौमी सदर नितिन नबीन, BJP पुडुचेरी के इंचार्ज निर्मल कुमार सोलाना और रियासती BJP के सदर VP रामलिंगम उन मुमताज रहनुमाओं में शामिल हैं जिनकी इस तकरीब में शिरकत की उम्मीद है। जनाब नवीन कल शाम पुडुचेरी पहुंचे थे। उन्होंने पार्टी ओहदेदारों और

0: इंक्वायरी शुरू करें और कसूरवारों के खिलाफ कानूनी कदम उठाएं। इससे पहले राजस्थान पुलिस के खसूसी ऑपरेशंस ग्रुप ने मुश्तबा नेटवर्क और पैसे के लेन देन की तफ्तीश के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया था। इस ग्रुप ने कल एक मुबैना सरगना मनीष को जयपुर से गिरफ्तार किया है। हुकूमत ने सालाना मजमूई घरेलू पैदावार GDP के आर्जी तखमीने और चौथी सहमाही के लिए GDP के सहमाही तखमीने के इजरा की तारीख दोबारा मुकर्रर की है। पहले यह तारीख मई का कामकाज का आखिरी दिन होता था, लेकिन अब इसे हर साल जून की 7 तारीख कर दिया गया है। इजरा की तारीख में यह तब्दीली कौमी अकाउंट्स के आदाद शुमार से मुतालिक मशावरती कमेटी के साथ सलाह मशवरे के बाद की गई है। वजारत ने कहा है कि इस तब्दीली का मकसद आदाद शुमार की क्वालिटी को मजीद मुस्तहकम बनाना है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की क़यादत में एक आला सतही भारतीय पार्लिमानी वफद आज से भूटान का दौरा करेगा। इसका मकसद भारत भूटान रिश्तों को मजीद मुस्तहकम करना है। इस 51 रुकनी वफद में राज्यसभा और लोकसभा के अरकान पार्लिमान और वजारत खारजा के अहलकार शामिल हैं। महाराष्ट्र के ज़िला सांगली की जाट तहसील में कल एक मजहबी तकरीब के दौरान दीवार गिरने से 6 अकीदतमंद हलाक और तकरीबन 15 जख्मी हो गए। तकरीब में 300 से ज़्यादा अकीदतमंद जमा थे, जब इलाके में तेज़ हवाओं के साथ शदीद बारिश हुई। तकरीबन 30 अकीदतमंद एक दीवार के पास खड़े हो गए और इस वक्त दीवार गिर गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। जख्मियों को इलाज के लिए जाट और सांगली सिविल अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दीवार गिरने के हादसे में होने वाली अमवात पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की तमन्ना की। सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान की ताज़ा तरीन अमन तजवीज़ को मुस्तरद किए जाने के बाद अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी में और भी कमज़ोरी पैदा हो गई है। जनाब ट्रंप ने ईरान की तरफ से की गई जवाबी पेशकश को कचरा बताया है। इस इल्ज़ाम तराशी के सबब मगरबी एशिया में तनाज़े को फैलने से रोकने की कोशिशों में गैर यकीनी पैदा हो गई है। जम्मू कश्मीर में फौज ने कल पुंछ जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब दरंदाजी की कोशिश नाकाम कर दी। कृष्णा घाटी सेक्टर में एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया गया। भारत में इस हफ्ते जुनूब मगरबी मानसून दस्तक दे सकता है। महकमे मौसमियात IMD के मुताबिक इस हफ्ते के अख्ताम तक जुनूब मगरबी मानसून के जुनूबी खलीज बंगाल, अंडमान समुंदर और अंडमान और निकोबार जजायर के हिस्सों में आगे बढ़ने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जुनूब मगरबी खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव का हल्का कल उसी इलाके में बरकरार है। इसके साथ ही हवा का गिरदाबी निज़ाम सतह समुंदर से 4.5 किलोमीटर की बुलंदी तक फैला हुआ है। भारत के महकमे मौसमियात ने राजस्थान में शदीद गर्मी और लू के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। रियासत के सरहदी अजला में इस वक्त सख्त गर्मी है। कई मुकामात पर दर्जे हरारत 45 से 47 डिग्री के दरमियान रिकॉर्ड किया जा रहा है। IPL क्रिकेट में कल रात अहमदाबाद में खेले गए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से शिकस्त दी। आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात ने आज अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार इंकलाब ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इस बयान को अपनी शह सुर्खी बनाया है कि मगरबी बंगाल के अवाम की फलाह बहबूद हुकूमत की अवलिन तरजीह, रियासत के अवाम को आयुष्मान भारत सेहत बीमा स्कीम के फवायद हासिल होंगे। अखबार प्रताप ने भी इस खबर को अहमियत के साथ शाया किया है। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, सदर जमहूरिया ने 15 नर्सिंग स्टाफ को नेशनल फ्लोरेंस नाइटेंगेल अवार्ड से नवाजा। अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने हेमंत बिस्व शर्मा के मुसलसल दूसरी बार आसाम के वजीर आला के तौर पर हलफ लेने की खबर को नुमाया तौर पर शाया किया है। अखबार इनकलाब ने वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल की इस बयान को अहमियत दी है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान की मदद की। हिंदुस्तान एक्सप्रेस लिखता है, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से असलाह, धमाका खेज मवाद और 1 करोड़ नकद बरामद। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, भारत नेपाल सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश, 4 अफराद गिरफ्तार। अखबारात की अहम बैनुल अक्वामी खबरें इस तरह हैं, मुज़ाकरात में हो रही नाकामी पर ट्रंप का ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का मनसूबा जेर गौर। دوبارہ حملہ ہوا تو 90% یورینیم افزودگی شروع ہو سکتی ہے، ایران کا بیان۔
0: خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ تمل ناڈو میں سی جوزف وجے کی قیادت والی نو منتخبہ ٹی وی کے سرکار آج اسمبلی میں اپنی اکثریت ثابت کرے گی۔ آل انڈیا این آر کانگریس کے رہنما این رنگا سامی آج پڈوچیری کے وزیر اعلیٰ کا حلف لیں گے۔ اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور دلی سرکاروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے کی گئی کفایت شعاری کی اپیل کے بعد ایندھن کی کھپت سے متعلق اقدامات پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ مرکز نے سونے اور دیگر قیمتی دھاتوں پر درآمداتی ڈیوٹی میں اضافہ کر دیا ہے۔ آئی ایم ڈی نے اس سال مانسون جلد شروع ہو جانے کی پیش گوئی کی ہے۔ اور آئی پی ایل میں احمد آباد میں گجرات ٹائٹنز نے سن رائزرز حیدرآباد کو 82 رن سے شکست دی۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔
2: میڈیم ویو 330.03 میٹر ارتھات 909 کلو ہرٹز اور ایف ایم 14.1 میگا ہرٹز پر آپ آکاشوانی گورکھپور کے پرسارن سن رہے ہیں۔ پرستوت ہے فلم سنگیت کا کارکرم ہٹ سپر ہٹ۔

0: कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म सावन को आने दो।
1: धीरे धीरे घूम घटा,
0: आवाज येसुदास की।

लीजिए, अब सुनिए आरती मुखर्जी की आवाज़ में गीत गाता चल, इस फिल्म का ये गाना। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

0: अरे आनंद बाबू, आइए आइए आनंद बाबू, आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं?
1: गाइए ना, आप रुक क्यों गए?
2: गाओ ना बेटी, गाओ।

0: हिट सुपर हिट्स के बाकी गाने इस अंतराल के बाद।
1: स्वच्छता का संदेश फैलाओ, हर जगह सफाई लाओ,
2: कूड़ा कचरा सही जगह डालो, स्वच्छता की आदत अपनाओ,
1: साफ सफाई से जीवन सुहाना, स्वस्थ समाज का सपना सजाना,
2: गली मोहल्ला शहर हर क्षेत्र हो चमकदार, स्वच्छता का नियम सबको समझाओ मेरे यार।
3: Hey girls,
4: hey, congratulations.
3: आज तो पार्टी चाहिए,
4: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
5: आइडिया, यही करते हैं पार्टी,
3: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
5: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
3: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग।
5: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
7: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
8: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
7: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान, केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
8: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
7: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
8: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।

कारवां फिल्म का गाना आप सुन रहे हैं, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं।

इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम हिट्स सुपर हिट्स अब खत्म होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अगला प्रसारण हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आइए सुनते हैं जिले की हलचल।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए मेरठ और बाराबंकी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं मेरठ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है संगीता श्रीवास्तव का।
2: IIMT विश्वविद्यालय मेरठ के तृतीय दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने मेधावियों को मेडल प्रदान किए। डिग्री प्राप्त करना शैक्षिक जीवन का समापन नहीं बल्कि यह शुरुआत है। भारत के विकास में सहयोगी बनने की IIMT विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने विद्यार्थियों से नौकरी पाने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनने के लिए प्रेरित किया। उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने मंच से 4 विश्वविद्यालयों टॉपर और 13 विभिन्न कॉलेजों के टॉपर सहित 17 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की। उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन द्वारा निरंजन पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज, परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज, महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय के डायरेक्टर डॉक्टर हरि सिंह रावत को डायरेक्टरेट की मानक उपाधि प्रदान की। दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए छात्रों को संस्कारों का महत्व समझाया। उपराष्ट्रपति ने डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करने की सीख दी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सभी विद्यार्थी अपनी शिक्षा को राष्ट्र सेवा का माध्यम बनाएं और नवाचार स्टार्टअप के क्षेत्र में भी आगे बढ़ें। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम, लक्ष्य के प्रति समर्पण और लगन जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने नए स्नातकों से कहा कि वर्ष 2047 में जब देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तब तक हम सबको मिलकर भारत को विकसित बनाना है। देश को ग्लोबल लीडर के रूप में सामने लाने के लिए ईमानदारी, कार्य के प्रति समर्पण और सेवा भाव से काम करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण UPIDA द्वारा तैयार यह 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक राज्य का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, जो 12 जिलों से होकर गुजरते हुए प्रदेश में कनेक्टिविटी के साथ साथ पर्यटन को भी नई रफ्तार देगा। मेरठ गंगा एक्सप्रेसवे के शुभारंभ पर मेरठ के बिजौली गाँव में भी एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि पशुधन कैबिनेट मंत्री रामपाल सिंह और ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने भी प्रधानमंत्री का लाइव प्रसारण देखा। इस अवसर पर पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा,
3: मेरठ से प्रयागराज तक जो 600 किलोमीटर की दूरी है, जो 12 घंटे में पूरी होती थी वो 6 घंटे में पूरी हो जाएगी, और 120 किलोमीटर की स्पीड से जिसमें निर्वाध गति से ये यात्रा पूरी होगी। अब लोग हवाई यात्रा की ओर कम मुखातिब होंगे, एक्सप्रेस वे से ज्यादा लाभ उठाएंगे।
2: मेरठ में जनगणना का पहला चरण शुरू हो गया है। इसमें नागरिक अपना ब्यौरा खुद दर्ज करा सकेंगे। जिलाधिकारी डॉक्टर VK सिंह ने बताया कि यह प्रक्रिया बेहद आसान है और इसमें बहुत कम समय लगता है। जनगणना की वेबसाइट पर जाकर निर्देशों का पालन करते हुए इसे आसानी से भरा जा सकता है। नागरिक 7 से 21 मई के बीच अपने मोबाइल या लैपटॉप पोर्टल पर अपनी जानकारी अपलोड कर सकते हैं। जिलाधिकारी ने बताया,
4: आपके घर में क्या क्या सुविधाएं हैं, कपल कितने रहते हैं, फैमिली में कितने मेंबर हैं, रूम्स कितने हैं, ड्रिंकिंग वाटर की क्या सुविधा है, कुकिंग गैस आपके यहाँ अवेलेबल है कि नहीं है, रेडियो TV ट्रांजिस्टर है कि नहीं है, नेट की फैसिलिटी है कि नहीं। व्हाट्सएप पर एक OTP आती है, OTP को आपको फिल करने के बाद, सबमिट करने के बाद एक इम्यूनेशन ID जो है जनरेट हो जाती है। उस ID को आपको सुरक्षित रखना है ताकि जब 22 तारीख से जब हाउस टू हाउस हाउस लिस्टिंग का कार्य जो है न्यूमेटरी के द्वारा किया जाएगा प्रेगनेंट के द्वारा, तो ID मांगने पर आपको देना है।
2: तकनीकी सहयोग जोहद शो इंडिया एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में मेरठ मंडल के प्रथम नागरिक स्वास्थ्य केंद्र पुलिस लाइन में मॉडल टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी द्वारा किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी द्वारा मॉडल टीकाकरण केंद्र एवं HPV वैक्सीनेशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वैक्सीन 14 वर्ष से अधिक और 15 वर्ष से कम आयु की किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से मुक्त करेगी। उन्होंने कहा कि मेरठ में 10,000 से लगभग वैक्सीन आ चुकी हैं। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बताया कि ये वैक्सीन अत्यंत प्रभावी है और बालिकाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक कटारिया ने बताया कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, के कोई गंभीर दुष्प्रभाव नहीं है। सभी अभिभावकों से अपील की गई है कि अपनी बेटियों को यह वैक्सीन अवश्य लगाएं। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में पुलिस एवं प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण अनंता का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नारी शक्ति के सम्मान, प्रतिभा के उत्कृष्ट और सामाजिक जागरूकता के प्रभावी संगम देखने को मिला। कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं, खिलाड़ियों एवं स्कूली छात्र छात्राओं को जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।
1: मेरठ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बाराबंकी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है परवेज सिद्दीकी का।
5: बाराबंकी के जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने विभागों और विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया, साथ ही लापरवाही करने वाली कार्यदायी संस्थाओं और संबद्ध अधिकारियों को कमी पाए जाने पर कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं, साथ ही शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन और उन्हें जन जन तक पहुँचाने को कहा है। असानी रिजर्व पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में प्रशिक्षु आरक्षियों के आधारभूत प्रशिक्षण समापन के उपरांत दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया। दीक्षांत परेड समारोह के मुख्य अतिथि अमिताभ यश अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था द्वारा सलामी लेने के पश्चात परेड का निरीक्षण किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा कठिन प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए प्रशिक्षु आरक्षियों के समर्पण और कड़ी मेहनत की सराहना की गई तथा कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने, नागरिकों की सेवा करने, ईमानदारी और पेशेवर पुलिसिंग के प्रति प्रतिबद्धता का आह्वान, जनता से मैत्रीपूर्ण संबंध और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्य करने हेतु प्रेरित किया गया, साथ ही राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने की शपथ दिलाई गई। दीक्षांत परेड में कुल 12 टोलियों के 293 प्रशिक्षु आरक्षियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह के निर्देश के क्रम में संयुक्त मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी एवं खास सुरक्षा अधिकारियों की गठित टीम द्वारा गत दिनों जनपद के समस्त तहसीलों एवं नगर पालिका क्षेत्र में मीट के अवैध कारोबार को रोकने के लिए पुलिस बल के साथ संपूर्ण जनपद में गहन छापेमारी एवं निरीक्षण अभियान चलाया गया। निरीक्षण के दौरान अस्वस्थकर एवं अस्वच्छ कर स्थिति में खाद कारोबार करने वाले खाद कारोबारकर्ताओं के विरुद्ध इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी की गई व बिना लाइसेंस करण के व्यवसाय संचालन करने वाले 9 खाद कारोबारकर्ताओं के प्रतिष्ठान को मौके पर ही बंद करा दिया गया। बैसाखी पूर्णिमा के पावन अवसर पर जनपद के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री कटुआ धाम समर्थ साहेब जगजीवन दास बड़े बाबा में आयोजित मेले के दौरान जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने मंदिर में माथा टेक कर आशीर्वाद प्राप्त किया तथा जन कल्याण एवं जनपद की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने साफ सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंध एवं यातायात व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए। 7 मई को राजस्व प्रशासन दिवस के रूप में सौगणना अभियान की शुरुआत की गई। जिला जनगणना अधिकारी अपर जिलाधिकारी निरंकार सिंह के अनुसार इस राष्ट्रीय महत्व के अभियान में अधिकतम से जन सहभागिता सुनिश्चित कर जनपद बाराबंकी को सौगणना में अग्रणी बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। जनपद के प्रभारी मंत्री सुरेश राही ने विगत दिनों जनपद का दौरा किया। उन्होंने सर्वप्रथम जिला महिला चिकित्सालय पहुंचकर ओपीडी कक्ष, मॉडल इम्यूनाइजेशन सेंटर सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। के दौरान मंत्री ने मरीजों से संवाद कर उन्हें उपलब्ध कराई जा रही व्यवस्था सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने चिकित्सालय परिसर में साफ सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए कहा कि किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने अल्ट्रासाउंड कक्ष सहित अन्य वार्डों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा अस्पताल के रसोई घर में पहुंचकर भोजन की गुणवत्ता का भी परीक्षण किया। मंत्री श्री राही द्वारा नगर पालिका परिषद नवाबगंज में कल्याण मंडल के समीप पुनर्गठन पेयजल योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन पानी की टंकी के कार्यों का स्थलीय अवलोकन किया गया। उन्होंने कार्यों को तीव्र गति एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश अधिशासी अभियंता जल निगम को दिए। मंत्री ने इसी क्रम में जिला कारागार का भी निरीक्षण किया, जहां उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं एवं स्वच्छता की स्थिति का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाए जाने बनाने के निर्देश दिए। बाराबंकी पुलिस प्रशासन ने कुख्यात ड्रग माफिया और हिस्ट्री शीटर मिसबाहुर रहमान उर्फ अज्जन की लगभग 6 करोड़ रुपए से अधिक की अचल संपत्ति कुर्क की। पुलिस अधीक्षक अर्पित विजय वर्गी ने बताया कि मिसबाहुर रहमान को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अभियुक्त विगत 25 वर्षों से मादक पदार्थों के कारोबार में संलिप्त है। अभियुक्त की अवैध मादक पदार्थों की निगरानी हेतु थाना जैतपुर में हिस्ट्री शीट भी खोली गई है, साथ ही उसे जनपद स्तर पर ड्रग माफिया घोषित किया गया है।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अभी आप सुन रहे थे जिले की हलचल, और अब आइए सुनते हैं संवेद स्वर में देश गान।

0: अभी आप संवेद स्वर में देशगान सुन रहे थे। 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। प्रत्येक बुधवार सायं 6:30 पर कार्यक्रम हेलो किसान, प्रायोजक इफको, एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा। हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं। पेश है उर्दू कार्यक्रम। पेशकश आकाशवाणी के गोरखपुर मरकज की है।
1: उर्दू प्रोग्राम सुनने वालों की खिदमत में फर्रुख जमाल का आदाब कबूल हो। सामईन, आज के प्रोग्राम में पहले आप समाअत फरमाएंगे डॉक्टर शरीफुद्दीन से उनका एक मकाला, अमीर मीनाई की गजलिया शायरी, और इसके बाद कलाम शायर के तहत आज के शायर हैं डॉक्टर सरफराज नवाज। सामईन, आज उर्दू के मारूफ शायर और सहाफ़ी मौलाना हसरत मोहानी का योम वफात है। समाअत फरमाइए इस हवाले से एक मुख्तसर तकरीर बाहमी इत्तेहाद के नकीब हसरत मोहानी। उर्दू शायरी और उर्दू गज़ल को नई जहत से रोशनास कराने वाले और अजीम मुजाहिद आज़ादी मारूफ शायर मौलाना हसरत मोहानी की पैदाइश 1 जनवरी 1875 को ज़िला उन्नाव के मोहान में हुई थी। उनका असल नाम फैज़ुल हसन था और हसरत उनका तखल्लुस था। मोहान में पैदा होने की नस्बत से वो हसरत मोहानी हो गए। मौलाना हसरत मोहानी मुजाहिद आज़ादी होने के साथ साथ बुलंद पाया सहाफ़ी भी थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम के साथ मौलाना हसरत मोहानी की सहाफ़त भी काबिल क़द्र थी। मौलाना हसरत मोहानी ने ज़माने तालिब इल्मी में ही सहाफ़त के मैदान में कदम रखा। उन्होंने सहाफ़त को अपने अफकार व नज़रियात की तर्जुमानी और हुसूल मकसद का वसीला बनाया। अरसाए सहाफ़त में उनके लाफानी नकूश जराइद उर्दू मुअल्ला और तस्करतुश शोरा में नज़र आते हैं। सन 1903 में उन्होंने उर्दू मुअल्ला जारी किया जो दुनिया सहाफ़त में इनफरादी और मुमताज़ मकाम रखता था। बकौल मजनू गोरखपुरी के, अगर हसरत न होते तो आज न जाने कितने उर्दू शोरा के कारनामे तल्फ होकर रह जाते और हम उनके नाम तक से बेखबर रहते। मौलाना हसरत मोहानी को कृष्ण जी से वालेहाना अकीदत थी। हसरत फरमाते हैं, इल्मो हिकमत का जिन्हें शौक हो आए न इधर, कुछ नहीं फलसफ़े इश्क में हैरत के सिवा। हसरत मोहानी का नज़रिया इश्क सूफिया इकराम से मुतासिर है और बहुत वाजा भी है। वो फरमाते हैं, मेरा ईमान अजब क्या जो ईमान तसव्वुफ़, तसव्वुफ़ जान मजहब है, आशिकी जान तसव्वुफ़। मौलाना हसरत मोहानी कृष्ण जी की मोहब्बत से इस तरह लबरेज हैं कि कृष्ण जी के इश्क से उनका दिल मुनव्वर हो गया। अपने इन्हीं जज्बात का इजहार उन्होंने अपनी एक गज़ल में किया है। इरफान इश्क नाम है तेरे मुकाम का, हामिल हूँ किसके नगमे मै के प्याम का, मथुरा से अहले दिल को आती है व बूए उन्स, दुनियाए जा में शोर है जिसके दवाम का। एक दूसरी गज़ल में मथुरा जाने के आरजुमंद इसलिए हैं कि वह मथुरा को शहर मोहब्बत समझते हैं। हसरत का कहना है, मथुरा के नगर है आशिकी का, दम भरती है आरजू उसी का, हर जर्रा सरजमी गोकुल का, दारा है जमाले दिलबरी का, बरसाना और

0: मात फरमा रहे थे। पेश कर रहा था मैं मोहम्मद फर्रुख जमाल, और अब आइए सुनते हैं डॉक्टर शरीफुद्दीन से उनका मकाला अमीर मीनाई की गजलिया शायरी।
1: दिल्ली हिंदुस्तान का दिल रही है, इसलिए वो बार बार दुश्मनों के हमलों का निशाना भी बनी। दिल्ली में शोरा की कदरदानी और सरपरस्ती बहादुर शाह जफर के साथ खत्म हुई। लखनऊ के नवाब और रियाया की ये ख्वाहिश थी कि हर मामले में दिल्ली से बाजी ले जाएं। ये मरकज अब लखनऊ को मुंतकिल हुआ। शाहान अवध शोरा के सरपरस्ती के लिए पहले से तैयार बैठे थे। आखिरी ताजदार अवध वाजिद अली शाह बहादुर शाह जफर की तरह खुद भी शायर थे। वाजिद अली शाह जलावतन करके कलकत्ता भेज दिए गए। शोरा रोजी की तलाश में सरगर्दां थे। हैदराबाद, भोपाल, लाहौर और अजीमाबाद के अलावा शायरों की बड़ी तादाद रामपुर पहुंची। उसका सबब यह था कि यूसुफ अली नाजिम खां ताजदारे रामपुर खुद साहेब इल्म और अजीम शायर थे। नाजिम ने जिन शायरों को अपनी सरपरस्ती से नवाजा उनमें अमीर मीनाई, दाग और जलाल खास तौर पर काबिले जिक्र है। बेशक रामपुर की रियासत ना दिल्ली के हमपल्ला थी ना लखनऊ की, इसके बावजूद यहाँ शेर व अदब को खूब फरोग हुआ। फन शायरी और कवायद पर किताबें लिखी गईं, लुगात तरतीब दी गईं, शायरी के अलावा नसर की तरफ भी तवज्जो दी गई। मर्सिया निगारी की रिवायत भी मुस्तहकम हुई। गोया दबिस्तान रामपुर दिल्ली और लखनऊ का संगम नजर आता है। मुराद ये कि जबान की रानाई तो बरकरार रही लेकिन तसन्नो और बनावट में कमी आई। सादगी, बरजस्तगी, शिस्तगी, सलासत और रवानी की तरफ शोरा का खास रुझान हुआ। मामला बंदी का सिलसिला भी जारी रहा। इस तरह उर्दू शायरी में एक नया रंग व आहंग पैदा हुआ। अमीर मीनाई का नाम अमीर अहमद था। अमीर तखल्लुस शाह मीना के खानदान से थे, इसलिए मीनाई नाम का जुज हो गया। लखनऊ में 1826 में विलादत हुई और वफात 1900 में हुई। इब्तदाई तालीम अपने वालिद से हासिल की। इसके बाद फरंगी महल में तहसील इल्म की। अरबी और फारसी में उबूर रखते थे। तिब, नुजूम और जफर का इल्म भी हासिल किया। बड़े नेक आबिद व जाहिद और आलिम व फाजिल थे। शायरी की तरफ बचपन से तबीयत रागिब थी। लखनऊ में आतिश व नासिक के उरूज का जमाना था। मीर मुजफ्फर अली असीर की शागिर्दी अख्तियार की। असीर की तरबियत और रहनुमाई से अमीर मीनाई की शेरी सलाहियतों ने फरोग पाया। अमीर मीनाई वाजिद अली शाह के दरबार से वाबस्ता हुई। इनकी फरमाइश पर हिदायतुस्सुल्तान और इशादुस्सुल्तान दो किताबें लिखीं और इनाम व इकराम से सरफराज हुई। सुकूत सल्तनत के बाद यानी जब अवध का दरबार उजड़ गया तो अमीर मीनाई लखनऊ छोड़कर काकोरी और मैनपुरी की खाक छानते हुए रामपुर चले गए और दरबारे रामपुर के साये में फरागत पाई। नवाब के कलाम पर इस्लाह देने की खिदमत सुपुर्द हुई। रामपुर ही में शेख वहीदुज़्ज़मां की बेटी से निकाह हुआ और तकरीबन 43 साल कद्र मंजिलत के साथ रामपुर में रहने के बाद दाग की दावत और फरमाइश पर हैदराबाद चले गए। वहां जाकर बीमार हो गए और 1900 ईस्वी में इस जहान फानी से कूच कर गए। मुतअद्दिद तसानीफ अमीर मीनाई से यादगार हैं। अमीनाई साहब का पहला दीवान मिरातुल गायब लखनऊ के इसी मखलूत रंग में है और इसमें वो तमाम मायब मौजूद हैं जो नासिख व आतिश और उनके तलामजा के कलाम में पाए जाते हैं। मसलन नासिख वगैरह ने गजल में ऐसे मजामीन शामिल कर दिए थे जिनको गजल से कोई ताल्लुक ही नहीं था और इस किस्म के मजामीन मिरातुल गैब में कसरत से पाए जाते हैं। जैसे एक दम हुक्म खुदा मुझको फरामोश नहीं, दिल पे लिखे हैं समावी हैं जो दफ्तर चारों, क्या हुआ चार अनासिर जो परेशान हुए आज, दम में हो जाएंगे एक जा दमे महशर चारों, बतने मादर बगल गोर मकान बागे बहिश्त, अपने बंदों को खुदा ने ये दिए घर चारों, नसीब हो कि ना हो सुबह देखना गाफिल, ख्याल मौत का जम है वक्त ख्वाब रहे, वजीरों को सनद शाह का है फर्ज एजाज, नबी के हाथ में अल्लाह की किताब रहे, गैरों को फाड़ खाए सगे यार तो कहूं, अय शेर वाह तू ही तो शेरों का शेर है, कसूर नफ्स लाई से खुदा रहा नाराज, गुनाह गैर पे

0: स्वच्छता से ही मिलेगी खुशहाल और सुरक्षित जिंदगी।
1: स्वच्छता का संकल्प लाओ, गंदगी को दूर भगाओ,
0: कूड़ेदान में कूड़ा डालो, साफ सफाई का ध्येय अपनाओ,
1: हर गली हर मोहल्ला हो साफ, स्वच्छता से ही मिलेगी खुशियों की सौगात।
0: स्वच्छता का ये संकल्प लें, गंदगी को दूर भगाएं,
1: हर जगह स्वच्छता का दीप जलाएं, स्वस्थ और सुंदर जीवन को अपनाएं।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
3: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
4: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
3: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान, केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
4: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
3: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
4: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज कलाकार थे स्वप्निल। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी ने आज पुद्दुचेरी की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित समारोह में पुद्दुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 76 वर्षीय एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में ये 5वां कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुद्दुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीपी रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर 2 गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डपड्डी के पलानी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन ना करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बीच कल रद्द कर दी गई थी। सरकार ने सीबीआई को अनियमितताओं की व्यापक जाँच के निर्देश दिए हैं। वैश्विक ईंधन में कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के बेड़े में 50% वाहनों की कमी का आदेश दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या को कम कर दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है जो आज से प्रभावित हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लेटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। विदेश मंत्रालय ने कैलाश मानसरोवर यात्रा में भाग लेने के इच्छुक लोगों से 19 मई से पहले आवेदन करने का आग्रह किया है। इस यात्रा के लिए पंजीकरण जल्द ही बंद होने वाले हैं। इच्छुक आवेदक आधिकारिक वेबसाइट kmy.gov.in पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और पंजीकरण करा सकते हैं। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का 38 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतीक यादव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया है। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक शुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु

परीक्षणों से देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashwani.
1: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाते गुनगुनाते।

पहला गीत किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में, फिल्म का नाम है न्यू दिल्ली। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

मधुमति फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। आकाशवाणी गोरखपुर से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाते गुनगुनाते। लीजिए, आप सुनिए परवरिश फिल्म का ये गाना, मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज़ों में।

गाने के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने और संगीत से सजाया है दत्ताराम ने।

श्रोताओं, स्वागत है आपका एक बार फिर से फिल्म संगीत के कार्यक्रम गाते गुनगुनाते में। लीजिए सुनिए बॉबी फिल्म का गाना शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में।

हीरा पन्ना। इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर को। अगला गीत एक बार फिर से किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में, फिल्म का नाम है आपकी कसम।

किशोर कुमार और आशा भोसले की मखमली आवाजें सुन रहे थे आप, फिल्म थी खेल खेल में, संगीत था आरी बर्मन का और बोल थे गुलशन बावरा के। आइए सुनते हैं अगला गीत, फिल्म है हम किसी से कम नहीं।

राहुल देव बर्मन के संगीत से सजा हुआ गीत आप सुन रहे थे। इस गीत को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने और आवाजें थी मोहम्मद रफ़ी और सुषमा श्रेष्ठा की। चलिए सुनते हैं अगला गीत।

नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा है गुलजार साहब ने। गुलजार साहब ने इस गीत को लिखा था और संगीत था राहुल देव बर्मन का, आवाज़ें थी लता मंगेशकर और भूपेंद्र की। फिल्म था किनारा। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाते गुनगुनाते अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: के साथ मैं लवलीन निगम। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: ना रंगासामी कड़वलीन पेयराल उरुदी कूरुदावदु नान नेर्मुगमागवो अल्लदु मरेमुगमागवो ओरुवरुक्को अल्लदु पलरुक्को இந்திய ஒன்றியத்தின் புதுச்சேரி ஆட்சி பரப்பின் முதலமைச்சர் என்ற முறையில் என் கவனத்திற்கு கொண்டுவரப்படும் அல்லது எனக்கு தெரியவரும் எந்த செய்தியையும் மேற்கூறிய முதலமைச்சர் என்ற வகையில் என்னுடைய கடமைகளை முறையாக ஆற்றுவதற்கு தேவைப்பட்டவரன்றி தெரிவிக்கவோ அல்லது வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன்.
0: अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के ए नमस्सीवयम ने भी समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, भाजपा नेता अध्यक्ष वीपी रामलिंगम अधिकारी और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वितरी कड़गम टीवीके के सरकार को विधानसभा में आज बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वासमत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या में कमी गुजरात और असम की उनकी हालिया यात्राओं के दौरान लागू की गई थी। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की है। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। वे आज चिली के विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोपहर बाद वे दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियरा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। शाम को डॉ जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गे लावरोव से भी मिलेंगे। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नाशिक पुलिस के क्राइम ब्रांच यूनिट ने कल महाराष्ट्र के नाशिक से शुभम को हिरासत में लिया। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बीच कल रद्द कर दी गई थी। सरकार ने सीबीआई को अनियमितताओं की व्यापक जांच के निर्देश दिए हैं। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का 38 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतीक यादव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार से पहले मामूली रूप से बढ़त नजर आई और फिर इसमें गिरावट दर्ज की गई। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 75 अंक की अधिक की वृद्धि के साथ खुला और बाद में 180 अंक गिरकर 74,360 पर आ गया। निफ्टी 41 अंक की गिरावट के साथ 24,350 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। लोकगीतों के कार्यक्रम लोकरंग में आज सुनिए शारदा सिन्हा के गाए कुछ लोकगीत।

0: बंधु, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटर भरनी है।
1: रुक जा बुद्धू।
2: व्हाट?
3: ऐसे पॉपअप्स?

0: सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
1: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
2: पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
0: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो,
3: कूल रहो।
4: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
5: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
4: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
5: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
4: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
5: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
6: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।

लोकगीतों के कार्यक्रम लोक रंग में आज आप सुन रहे थे शारदा सिन्हा को। इसी के साथ लोकगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

अगला गाना राजनीति फिल्म से मोहित चौहान और अंतरा मित्रा की आवाज में। प्रीतम चक्रवर्ती का संगीत है, इस गीत को लिखा है इरशाद कामिल ने।

कृष्णा और सलीम मर्चेंट की आवाज़ें आप सुन रहे थे। सलीम सुलेमान का संगीत था, गीतकार थे जयदीप सहनी और फिल्म थी चक दे इंडिया। अगला गीत सुनते हैं, एक था टाइगर फिल्म से सुखविंदर सिंह की आवाज़ में। सुहेल सेन ने इस गीत को संगीत दिया है और गीतकार हैं नीलेश मिश्रा।

के मोहन और यशिता शर्मा के गाए इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये गाना था टू स्टेट्स फिल्म से। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनिए अब आप।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जल संरक्षण के सारे काम सुख समृद्धि के रचे आयाम।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गर्मी के इस मौसम में आपके विचार की प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ जाती है। जी हाँ श्रोताओ, जल अमूल्य है, इसे बूंद बूंद बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव, अनीता जाटव और राधिका रानी जयपुरिया जी ने लिखा है, मिठाइयों का सम्मेलन कहानी बहुत पसंद आई, आपको बधाई।
0: आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: तो श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के कुछ उपायों पर
0: जी,
2: और ये भी जाना था कि 12 बजे से 4 बजे तक खास तौर से हमें गर्मी के मौसम में बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए। तो अजीत जी, जरा श्रोताओं को ये भी जानकारी दे दें कि आज की चर्चा किस विषय पर होगी।
0: विमलेश जी, आज हम ये चर्चा करेंगे कि गर्मी के मौसम में हमारा खान पान कैसा होना चाहिए
2: जी।
0: लेकिन श्रोताओं, इससे पहले कि हमारी चर्चा आगे बढ़े, एक रोचक लेकिन महत्वपूर्ण बात आपको हम बताना चाहते हैं, और वो ये कि परंपरागत धारणाओं के अनुसार गर्मी के मौसम में सबसे कठिन दिन कब आते हैं।
2: जी अजीत जी, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वो समय अब आने ही वाला है। आज 13 मई हो गई, बस कुछ दिन और। जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं नवतपा की। उत्तर और मध्य भारत में इसका प्रभाव विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। इन दिनों हमें अपना बहुत ही खास ध्यान रखना चाहिए। अजीत जी, नवतपा किसे कहते हैं ये तो बताइए जरा।
0: जी विमलेश जी, नवतपा का अर्थ है 9 दिनों तक तपना, यानी 9 दिनों तक भयंकर ताप।
2: जी,
0: ये वो अवधि है जब हमारे परंपरागत खगोल ज्ञान और मान्यता के अनुसार सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, और इन दिनों में लगभग 9 दिनों तक प्रचंड गर्मी पड़ती है।
2: तो श्रोताओ, आइए अब जानते हैं कि सामान्यतः ये समय कब आता है। आमतौर पर मई महीने के अंत यानी लगभग 25 मई से जून महीने की शुरुआती यानी 2 जून तक। जलवायु परिवर्तन के कारण ये समय थोड़ा इधर उधर हो सकता है। इस समय विशेषकर उत्तर भारत में लू चलती है और आसमान साफ होता है, इसलिए छाया की भी गुंजाइश नहीं होती है।
0: जी, बता दें श्रोताओं कि यह प्राचीन अनुभवों के आधार पर परंपरागत मान्यता है। वैसे नवतपे में गर्मी बड़ी खतरनाक हो जाती है, लेकिन इसे वरदान भी माना गया है। क्यों?
2: नवतपे में जितनी गर्मी पड़ेगी, माना जाता है कि मानसून उतना ही अच्छा आएगा।
0: जी,
2: आइए अब करते हैं चर्चा गर्मी के मौसम में खान पान की।
0: तो विमलेश जी, आपसे ही शुरुआत करें।
2: जी अजीत जी, श्रोताओ, गर्मी के मौसम में खास ध्यान ये रखना चाहिए कि हमारा आहार पौष्टिक लेकिन हल्का हो।
0: और हाँ, इस मौसम में नींबू पानी, छाछ, दही जैसे प्राकृतिक उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें।
2: सबसे जरूरी बात तो ये है श्रोताओ कि खाली पेट घर से न निकलें।
0: जी,
2: अब बात करते हैं मौसमी फलों के बारे में। अजीत जी, मुझे लगता है कि प्रकृति को सचमुच हमारी बहुत चिंता रहती है।
0: जी बिल्कुल, इसलिए तो प्रकृति को माँ भी कहा गया है।
2: जी सही कहा, जैसे माता को हमारी चिंता रहती है, वैसे ही प्रकृति भी हमारी चिंता करती है। श्रोताओ जरा सोचिए ना, गर्मी के मौसम में ही खरबूजे, तरबूज जैसे फल प्रकृति क्यों उगाती है, खीरे और ककड़ियाँ क्यों उगाती है, आम और दूसरे मौसमी फल क्यों होते हैं, ये फल सर्दियों में क्यों नहीं उगते।
0: विमलेश जी, आमतौर पर लोग कहेंगे कि इसमें भला सोचने की क्या बात है, ये गर्मी के फल हैं तो गर्मी में तो होंगे ही।
2: जी अजीत जी, आम लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ फल जैसे खरबूज, तरबूज, ककड़ी और खीरे में 80-90% तक पानी होता है।
0: जी,
2: इन्हें खाने से हमारे शरीर में पानी की मात्रा बनी रहती है। इतनी अधिक पानी की मात्रा होने के कारण ये पचने में भी आसान होते हैं।
0: जी विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा, प्रकृति को सचमुच हमारी चिंता रहती है, तभी तो वो ऐसे फल उगाती है जिनसे कि हम स्वस्थ रहें। हमें प्रकृति माता को जरूर धन्यवाद देना चाहिए।
2: जी,
0: लेकिन दुखद है कि प्रकृति हमारे स्वास्थ्य की जितनी चिंता करती है ना, उतनी प्रकृति के स्वास्थ्य की चिंता हम नहीं करते।
2: तो श्रोताओ, कैसी लगी हमारी ये जानकारी, जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न।
0: तो आज का प्रश्न है, प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है।
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IBRS नंबर है, और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है गर्मी।
2: ये कार्यक्रम गर्मी के मौसम की जानकारी देते हुए बताता है कि गर्मी के मौसम में हमें अपना ध्यान किस तरह से रखना चाहिए और गर्मी के मौसम में पैदा होने वाली साग सब्जियाँ और फल कौन कौन से होते हैं जिनका हमें भरपूर सेवन करना चाहिए।
3: बहुत पुरानी बात है, दो बहनें थी, सोना और रूपा। दोनों अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी। गर्मी का मौसम था, दोनों बाग में खेल रही थी।
4: अकर बकर बम्बी वो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा।
5: अब तेरी बारी है, तेरी
6: तुम्हारी बारी, तुम सुना।
5: अच्छा ठीक है, मुझे तो कहानी आती है।
6: तो कहानी सुना दो भाई।
5: अच्छा ठीक है। गर्मी का दिन था, एक कौआ प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था। कौआ लाया कंकड़, घड़े में डाले कंकड़, पानी आया ऊपर, कौए ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी।
6: अच्छी कहानी थी भाई। कौए ने तो पानी पी लिया, पर अब मुझे बहुत प्यास लग रही है।
5: हाँ, प्यास तो मुझे भी लग रही है। वो सामने घड़ा रखा है, चलो वहाँ चलकर देखते हैं।
6: हाँ चलो चलो, वहाँ
5: चलो,
6: पानी
5: चलो
6: होगा।
5: चलते हैं।
3: सोना और रूपा ने घड़े का ढक्कन हटाकर देखा तो उसमें पानी था। दोनों बहुत खुश हुई। रूपा पीने के लिए पानी निकाल ही रही थी कि तभी एक आवाज आई।
7: कौन है
6: दीदी?
7: कौन है
6: दीदी?
5: अम्मा जी, मैं हूँ सोना और ये है मेरी बहन रूपा।
6: अम्मा जी, हमें बहुत प्यास लगी है,
5: हम थोड़ा पानी पी ले।
8: हाँ हाँ, क्यों नहीं, पी लो पानी। बच्चों पानी पी लो, ढक्कन ठीक से लगा देना। पी लिया पानी? प्यास बुझी?
6: हाँ, हाँ पर ठंडा पानी था।
5: लेकिन अम्मा, आप कौन है?
8: मैं एक मौसम हूँ। मेरे आने से तुम्हें बहुत प्यास लगती है और बहुत गर्मी भी लगती है, पर मैं अपने साथ तरह तरह के फल भी लाती हूँ, जैसे खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी और भी बहुत सारी चीजें। अच्छा भला बताओ तो मैं कौन हूँ?
6: कौन है आप?
8: नहीं समझे?
6: नहीं।
8: अच्छा, तो फिर ये पहेली सुनो।

0: खा जलते हैं
1: और सारा दिन पानी भी पीते हैं।
0: ऐसा मौसम।
1: अब गर्मी अम्मा है।
2: बिल्कुल ठीक समझी। मैं गर्मी यानी गर्मी का मौसम ही तो हूँ।
0: गर्मी अम्मा, आप कब आती हैं पता ही नहीं चलता।
2: सीधी सी बात है, सर्दी जब जाने की तैयारी करती है, गर्म कपड़ों में तुम्हें गर्मी लगती है, तो बस समझ लो कि मेरा मौसम शुरू, यानी यानी
1: हाँ, जब होली आती है तो गर्मी भी तो लगनी
2: शुरू हो जाती है। हाँ
0: अम्मा, मुझे तो धूप में बहुत गर्मी लग रही है।
2: भाई मेरे मौसम में गर्मी ही तो लगती है। चलो ऐसा करते हैं, उस पेड़ की छाया में बैठते हैं, ठीक है?
1: हाँ चलो अम्मा, चलते हैं।
0: चलो।
3: सोना और रूपा गर्मी अम्मा के साथ जाकर पेड़ की छाया में बैठ गईं। इतने में पेड़ से दो आम गिरे।
1: अरे ये क्या गिरा?
2: मैं देखती हूँ, तुम लोग यहीं बैठो।
3: वहां दो आम गिरे थे, बच्चे भी दो और आम भी दो, लेकिन अम्मा ने वो आम छिपा लिए।
0: अम्मा आप क्या छुपा रही हैं?
1: अम्मा ये आपके हाथ में क्या है?
2: मेरे ही मौसम का एक फल है।
1: दिखाओ ना। अम्मा दे
2: दूंगी, तुम्हें दूंगी, पर पहले तुम्हें इसका नाम बताना पड़ेगा।
1: इसका नाम
2: सोचो, मेरे मौसम

0: का सबसे स्वादिष्ट फल जो बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद है, खट्टा मीठा रसदार फल। सोचो,
1: स्वाद है,
2: पसंद है,
1: सबसे अच्छा भी है।
2: कौन सा फल है?
1: कौन सा फल?
0: नहीं समझी?
1: नहीं।
0: अच्छा तो फिर सुनो।

0: झट से तुम बोलो ये क्या है, बोलो ना।
1: आ,
2: आ, आ, तुम तो बड़ी समझदार हो।
3: आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, कुल्फी वाला बर्फ का गोला ले लो, चुस्की ले लो,
2: आइसक्रीम। बच्चों, मेरे मौसम में तुम लोग खूब आइसक्रीम खाते हो, बर्फ के गोले खाते हो, है ना, कुल्फी भी खाते हो ना। अरे तुम्हारा बस चले तो तुम दिन भर आइसक्रीम ही खाते रहो, है ना।
1: अरे कोई खाने को दे तब ना।
2: अरे लगता है बहुत तेज आंधी आने वाली है, तुम लोग जल्दी से घर चले जाओ। और हाँ, ये आम तो लेती जाओ।
1: लाओ अम्मा,
4: लाओ अम्मा,
2: लो।
1: गर्मी अम्मा, आप बहुत अच्छी हैं।
2: तुम्हें मीठे मीठे आम जो खिलाती हूँ।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गर्मी, और श्रोताओं आइए अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। और हमारा अगला कार्यक्रम है कारगिल की शौर्य गाथा।
1: ये कार्यक्रम कारगिल युद्ध से ठीक पहले की परिस्थितियों की जानकारी देता है और वर्णन करता है कि कारगिल युद्ध के दौरान विपरीत और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के होते हुए भी किस प्रकार से भारतीय सेना ने अपार धैर्य और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए विजय की पताका फहराई।
2: मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। सुप्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां कितनी जीवंतता से उन पराक्रमी युद्ध सैन्य महानायकों के प्रति असीम श्रद्धा की भावनाओं को जगाती हैं।
3: विजयश्री उन्हीं के लिए निर्धारित होती है जो कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय के साथ अविचलित और अडिग खड़े रहते हैं। आज का कार्यक्रम हम श्रद्धा सहित समर्पित करते हैं उन पराक्रमी योद्धाओं को जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।
2: जी हाँ, आज हम बात करेंगे कारगिल युद्ध की, जो नियंत्रण रेखा के पास जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह ऐसी पहली लड़ाई थी जिसे संचार माध्यमों के द्वारा निरंतर प्रसारित किया गया, और परिणाम स्वरूप इस युद्ध का आंखों देखा हाल भारत की जनता के घर घर तक पहुंचाया गया।
4: What you heard right behind you was the sound of Bofors guns directly targeting the top of Tiger Hill, the prelude to the final assault.
5: We just had a shell land very close to us. I doubt if you were able to see anything.
3: देश के विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से पत्रकारों ने इस युद्ध का जीवंत रिपोर्टाज प्रस्तुत किया, जिसके कारण जनता द्वारा सेना को अपार समर्थन मिला और फलस्वरूप भारतीय सेना का मनोबल और अधिक बढ़ा, जिसने इतिहास रच दिया। एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय जिसे आने वाली पीढ़ियां गर्व के साथ याद करेंगी। कारगिल का युद्ध 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक लड़ा गया।

0: इस युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से स्थल और वायु सेना द्वारा लड़ा गया। उल्लेखनीय है कि इस दौरान भारत की समुद्री सीमाओं पर भी भारतीय नौसेना ने शत्रुओं पर कड़ी निगरानी रखी।
1: दिन था 6 मई 1999 का। समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर दुर्गम बर्फीले पर्वतों के बीच एक भारतीय चौकी पर सैनिक मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे।
2: बहुत ठंडी आज तो है। वैसे भी ये एक ऐसी जगह है जहां लगता है कि हम दुनिया के किसी और ही कोने में हैं, है ना?
3: ठीक कहते हो तुम। अभी मई महीने में इतनी ठंड है तो पता नहीं सर्दियों में क्या हाल होता होगा।
2: वैसे तुम्हारी पोस्टिंग तो अभी हाल ही में हुई है ना? अरे मैंने तो यहाँ की 2 सर्दियां देख ली हैं।
3: जरा उधर देखो।
2: अब किधर?
3: वहां लगता है कोई इधर ही आ रहा है।
2: कोहरा काफी घना है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ, इतना कह सकता हूं मैं कि कोई सैनिक नहीं है। उसका पहनावा तो देखो।
3: हाँ, हाँ। पहनावे से तो कोई कबाइली लगता है।
2: हाँ।
3: लेकिन इधर क्यों आ रहा है?
2: हाँ।
3: कोई जासूस तो नहीं? वार्निंग दो इसे।
2: हाँ, आने दो। ए, कौन हो तुम? रुको, जाओ वहीं रुक जाओ, रुको।
4: कौन हो तुम?
5: साहब, मैं एक चरवाहा हूँ साहब। मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है। अपने बड़े साहब से मुझे मिलवाओ।
4: क्या सूचना?
5: साहब, दुश्मनों के बारे में।
4: अच्छा, यहीं रुको। चलो, कमांडेंट साहब ने बुलाया तुम्हें।
5: नमस्कार सर, मेरा नाम ताशी नामग्याल है।
0: नमस्कार, कहो क्या कहना चाहते हो?
5: सर, हम एक चरवाया है।
0: आगे बताओ।
5: सर, ये 3 मई की बात है। कुछ दिनों पहले मेरा याक खो गया था। उसे खोजते हुए मैं पहाड़ों पर काफी ऊंचाई में चला गया था। एक ऊंची चट्टान पर खड़े होकर मैंने दूरबीन से नीचे देखा तो एक बड़ा अजीब सा नजारा मुझे दिखाई पड़ा।
0: क्या देखा तुमने?
5: साहब, मैंने देखा कि पठानी कपड़ों में बहुत से लोग एक जगह पर जमा है।
0: क्या?
5: उनमें बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक भी हैं। वे बंकर खोद रहे थे और उनके पास बहुत सारे हथियार भी थे। हाँ।
0: कितने लोग रहे होंगे?
5: शायद पूरी गिनती तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, इतना पक्का है कि वो बॉर्डर के उस पार से आए हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं।
0: ये तो बड़ी जरूरी बात बताई तुमने। हो सकता है कि हमें तुम्हारी फिर से जरूरत पड़े। तुम्हारा घर कहाँ है?
5: साहब, मेरा गांव है घरकोन। ये कारगिल शहर से 60 किलोमीटर दूर बटालिक शहर के पास है।
0: तो साथियों, इस स्थानीय सजग चरवाहे की सूचना से सेना सतर्क हो गई। जब सेना ने इस बात की छानबीन की तो बात सच निकली। उन्हें पता चला कि सीमा पार से बहुत बड़ी घुसपैठ हुई है।
1: सही स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए भारतीय सेना ने मेजर सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक गश्ती दल भेजा, लेकिन वो दल कभी वापस ही नहीं आया। 10 जून को पाकिस्तानी सेना ने उनके बुरी तरह से क्षत विक्षत शव वापस भेजे।
0: अब इस बात में कोई संदेह नहीं था कि पाकिस्तान द्वारा बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई थी। सेना द्वारा गहन जांच में पता चला कि मई 1999 की शुरुआत में ही पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा पार करके मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों में लगभग 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक घुस आई थी और पाकिस्तानी सेना के लगभग 2000 से अधिक पैदल सैनिकों और कमांडो ने यहां अपनी चौकियां बना ली थी।
1: यद्यपि पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा कहा गया कि ये घुसपैठिए कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानी हैं, लेकिन छापेमारी में पकड़े गए लोगों और हल्की गोलाबारी में मारे गए सैनिकों के पास मिले सारे दस्तावेजों ने साबित कर दिया कि ये काम पाकिस्तान के अलावा किसी और का नहीं था।
0: दरअसल पाकिस्तान का उद्देश्य था सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इन क्षेत्रों में अपनी सेना भेजकर श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर कब्जा करके लद्दाख को कश्मीर से अलग करना और कारगिल व सियाचिन पर कब्जा करना।
1: ये भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर सीधा प्रहार था और इसलिए भारत को बड़े पैमाने पर कारगिल में एक सैनिक अभियान प्रारंभ करना पड़ा जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस सैन्य अभियान का नाम था ऑपरेशन विजय। भारतीय सेना समझ चुकी थी कि विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में शत्रुओं से युद्ध करना एक बेहद कठिन और दुष्कर कार्य होगा। भारत सरकार द्वारा नियंत्रण रेखा को पार न करने के निर्णय ने भारतीय सेना के कई सामरिक विकल्पों पर अंकुश लगा दिया।
0: भारतीय सीमा में घुसे हुए पाकिस्तानी पूरी तरह से सुरक्षित और अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। उन्हें पहाड़ों की ऊंचाइयों पर होने का प्राकृतिक लाभ था, जबकि भारतीय सेना घाटी में खुले होने के कारण बेहद असुरक्षित थी। लेकिन युद्ध अवश्यम भावी था और भारतीय सेना ने युद्ध छेड़ दिया।
1: दिन में किए गए हमले खतरनाक हो सकते थे क्योंकि देख लिए जाने का जोखिम था, इसलिए भारतीय सेना द्वारा आक्रमण मुख्य रूप से रात को 0 डिग्री से भी कम तापमान में किए गए। सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र तल से 18,000 फीट की खड़ी चढ़ाई को चढ़ना।
6: साथियों, हमारे सामने जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो है इन पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना।
2: लेकिन सर, एक और बहुत बड़ा खतरा है और वो है दुश्मनों द्वारा देख लिए जाने का।
6: ठीक कहते हो, अगर हम चढ़ने की कोशिश भी करें तो वो बड़ी आसानी से हमें अपने निशाने पर ले सकते हैं।
3: जी सर, इसलिए दिन की रोशनी में आक्रमण करना बिल्कुल संभव नहीं है। हमारे पास मात्र रात को ही आक्रमण करने का विकल्प बचता है।
6: सही बात। सुनो, सब इधर आओ।
2: जी,
7: यस सर।
6: ये मेज के चारों ओर।
3: जी सर।
2: उधर से।
6: जी, तुम्हें याद होगा कि अभी 3 दिन पहले हमारी वायुसेना के विमान इस क्षेत्र में आक्रमण करने आए थे।
2: जी सर।
6: वायुसेना ने हमले के दौरान इस क्षेत्र के चित्र भी खींचे हैं और उन्हें हमारे पास भेजा है।
2: जी सर।
6: इन चित्रों के आधार पर मैंने ये नक्शा बनाया है।
2: जी सर।
6: इस नक्शे के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि दुश्मनों की चौकी जहां है उसकी विपरीत दिशा से हमें पर्वत पर चढ़ना होगा, यानी दाहिनी ओर से।
2: जी सर, आप ठीक कहते हैं सर। इस तरफ से सर, यहां से पहाड़ की दाहिनी ढाल भी ज्यादा कठिन है सर। दुश्मन सोच भी नहीं सकता कि हम इस तरफ से चढ़ भी सकते हैं।
6: बिल्कुल ठीक। तो साथियों,
8: यस सर।
6: अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मेरा अंदाजा है कि इस चढ़ाई में हमें कम से कम 5 घंटे तो लगेंगे, तो क्यों ना रात 11 बजे से इस अभियान को शुरू किया जाए।
2: जी जी सर।
6: चढ़ाई करने वाली हल्की रस्सियां तैयार कर ली जाएं। हथियारों में राइफल्स, हल्की मशीन गन और हथगोले होंगे।
2: सर, जी सर।
6: कोई शक?
2: नो सर।
6: बी प्रिपेयर्ड फॉर द मिशन।
8: यस सर।
2: सर, अब हम चोटी के बिल्कुल पास आ गए।
9: धीमे बोलो, धीमे।
2: जी,
9: उन्हें पता ना चल जाए।
2: जी सर।
9: चोटी पर पहुंचते ही हम सभी रेंगते हुए उनके तंबुओं की ओर बढ़ेंगे।
2: जी।
9: और हथियारों के साथ अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे।
2: ठीक है सर।
9: और फिर तुम विपरीत दिशा में एक हथगोला फेंकना।
2: जी सर। जी सर।
9: बम के फटने की आवाज सुनकर अपने तंबुओं से कुछ सैनिक बाहर जरूर निकलेंगे।

0: इस मिशन में भारतीय सेना को भारी सफलता मिली। दुश्मन के अधिकांश लोग मारे गए और कारगिल की इस चोटी पर भारतीय सेना ने अपना परचम लहरा दिया। ऑपरेशन विजय में भारतीय वायुसेना की बहुत ही अहम भूमिका रही। इस युद्ध में सामरिक महत्व के मुख्य क्षेत्र थे मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक।
1: भारतीय सेना ने एक अपूर्व गरिमामय इतिहास रच दिया था।
0: 3 मई से 26 जुलाई 1999 के बीच लड़ी गई इस लड़ाई में 25 सैनिक अधिकारियों और 436 जवानों की शहादत हुई। इसके अलावा 54 सैनिक अधिकारी और 629 जवान घायल हुए।
1: इस युद्ध में 2 सैनिक अधिकारियों और 2 जवानों को परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। ये पराक्रमी योद्धा हैं कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, राइफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव।
0: देश इन रणवीरों को उनके असीम शौर्य हेतु श्रद्धा से नमन करता है। कारगिल युद्ध की गौरवशाली विजय की स्मृति में 26 जुलाई को अब देश भर में विजय दिवस मनाया जाता है।

0: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और श्रोताओ अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने सुहाने।
4: हमारे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
5: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
6: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
5: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
6: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
5: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
6: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
4: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
7: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
8: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
7: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
8: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
7: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
8: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
7: For details, log on to www.ddindia.com।
9: बंधु, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
10: रुक जा बुद्धू।
11: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
9: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
12: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
11: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
13: कूल रहो।
3: गाने सुहाने इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए 16वां साल फिल्म का गीत, जिसे गाया है हेमंत कुमार ने। संगीत है SD बर्मन साहब का और गीतकार है मशरू सुल्तानपुरी।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना काला पानी फिल्म का गीत, एस डी बर्मन का संगीत था, गीतकार थे मशरू सुल्तानपुरी।
2: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
3: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
2: अरे वही अपना 60 रुपया।
3: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
2: तो देख दो तरीके हैं, पहला आधी दाढ़ी करा ले।
3: और दूसरा?
2: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
3: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
2: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान।
6: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
7: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
6: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
7: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।

किशोर कुमार की आवाज़ में आप ये गीत सुन रहे थे। शर्मिली फिल्म का ये गीत था। गीत को लिखा था गोपाल दास नीरज ने और संगीत दिया था एसडी बर्मन साहब ने। अगला गीत सुनते हैं, फिल्म है तेरे मेरे सपने।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म तेरे मेरे सपने से, एस डी बर्मन का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत, बोल थे नीरज के।

0: चलिए अब अगला गाना सुनते हैं, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म है सबसे बड़ा रुपया।
1: गोलमाल है भाई सब गोलमाल है,

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुगम संगीत अब से कुछ ही पलों में सुनेंगे आप।
1: नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
3: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
2: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
3: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
2: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
3: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
4: हो गया इंतजाम।
5: किसका?
4: गुड्डी की फीस का।
5: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
6: RBI कहता है,
7: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
0: सुगम संगीत में आज सुनिए ताहिरा सईद के गायनक में।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: एक बार फिर से स्वागत है आपका सुगम संगीत के कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं ताहिर सईद के गायनक में।

सुगम संगीत का कार्यक्रम सुन रहे थे आप, जिसमें आज आपने ताहिर सईद के गाए नगमे सुने। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत में ईंधन की बचत और वसाइल के बेहतर इस्तेमाल को लेकर रियासत के लोगों से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अपील से जुड़ने के साथ ही कई अहम हिदायत दी हैं। एक रिपोर्ट।
1: सरकार की तैयारियों के संबंध में कल अपने सरकारी आवास पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने स्वयं और मंत्रियों की फ्लीट में तत्काल 50% तक कटौती करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत अनावश्यक वाहनों को हटाया जाएगा। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से भी जिम्मेदारी निभाने को कहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सरकारी कार्यों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक उपयोग किया जाए और सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे मनाया जाए। साथ ही मंत्री, सांसद और विधायक भी सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। श्री योगी ने कहा कि सरकारी बैठकों, सेमिनारों और कार्यशालाओं का अधिक से अधिक आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया जाए, जिससे अनावश्यक यात्रा और ईंधन की खपत कम हो सके। इसके अलावा उन्होंने वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को भी प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से भी अपील की है कि वे मेट्रो, बस, साइकिलिंग और कार पुलिंग जैसे विकल्प अपनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए सभी को सतर्क और जिम्मेदार व्यवहार

0: अपनाने की आवश्यकता है। समाचार कक्ष से अरुण।
1: मरकजी जांच एजेंसी सीबीआई ने नीट इम्तिहान 2026 के मुबैना पेपर लीक होने के सिलसिले में एक केस दर्ज किया है। इस मामले में मुल्क भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने आला तालीम महकमे की तहरीर की बुनियाद पर मामला दर्ज किया है। मामले की जांच के लिए सीबीआई की खसूसी टीमें मुख्तलिफ मकामात पर भेजी गई हैं। इस दरमियान एनटीए ने वाजह किया है कि दोबारा इम्तिहान के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी।
2: एनटीए ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे और दोबारा होने वाली परीक्षा में उपयोग किए जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर से पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
1: मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का 38 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। उन्हें आज सुबह लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मुर्दा करार दिया गया। मौत की वजह अभी वाजह नहीं हुई है। प्रतीक यादव की अहलिया अपर्णा बिष्ट यादव इस वक्त रियासती खवातीन कमीशन की नायब सदर हैं। वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने प्रतीक यादव के इंतकाल पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर-आला मुलायम सिंह यादव के बेटे और उत्तर प्रदेश रियासती खवातीन कमीशन की नायब सदर अपर्णा यादव के शौहर प्रतीक यादव का अचानक इंतकाल इंतहाई अफसोसनाक है। भारत कल से शुरू होने वाले दो रोज़ा ब्रिक्स वज़राए खारजा इजलास की मेज़बानी करेगा। वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर मीटिंग की सदारत करेंगे। इजलास में ब्रिक्स रुकन ममालिक के वज़राए खारजा और वफूद शिरकत करेंगे। वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान ब्रिक्स रुकन ममालिक के वज़राए खारजा बाहमी मफाद के आलमी और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने मुल्क भर की अदालतों को जदीद बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए जस्टिस अरविंद कुमार की सरबराही में एक आला सतही कमेटी के क़याम का ऐलान किया है। हुकूमत से इस मकसद के लिए 40,000 से 50,000 करोड़ रुपए मख्तस करने को कहा गया है। कमेटी 31 अगस्त तक वज़ीर आज़म की इक्तसादी मशावरती काउंसिल के रुकन संजीव सान्याल को अपने तफसीली नतायज और मतलूबा फंडिंग की तफसीलात पेश करेगी। हुकूमत ने सोने और दीगर कीमती धातों पर दरामदादी ड्यूटी बढ़ा दी है, जो आज से लागू हो गई है। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि सोने और चांदी पर दरामदादी ड्यूटी 5% और प्लेटिनम पर 5.4% होगी। मजीद बरां तामील के उसूलों के तहत कीमती धातों में इस्तेमाल होने वाले कैटलिस्ट पर बरामदादी ड्यूटी 4.35% होगी। रियासत के काउंसिल और कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूलों में आज से इंडियन लैंग्वेज समर कैंप 2026 शुरू हो रहा है। ये खसूसी कैंप वजारत तालीम हुकूमत हिंद की हिदायत के मुताबिक मुनक्किद किया जा रहा है, जो आज से 19 मई 2026 तक जारी रहेगा। कैंप का अफ्तताह मरकजी वजीर तालीम करेंगे। रियासत के बुनियादी तालीम के वजीर संदीप सिंह ने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी 2020 के मुताबिक बच्चों को भारतीय जबानों, लोक रवायात और सकाफती इकदार से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि कैंप के जरिए तलबा को अपनी मादरी जबान और भारतीय जबानों को भरपूर विरसे को समझने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें ख़त्म हुईं।

मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।

0: स्वास्थ्य कार्यक्रम सेहत की बातें में आज सुनिए भेंट वार्ता। विषय है लिवर से बीमारियों और के कारण और लक्षण एवं उपाय। विशेषज्ञ है डॉक्टर आलोक सिंह, आपसे बातचीत कर रहे हैं मनोज यादव।
1: श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सेहत की बातें में। मैं हूं मनोज यादव। और श्रोताओं, आज हम बातें करेंगे पेट और लिवर की उन बीमारियों की जो आज लाखों लोगों को परेशान कर रही है। गैस्ट्राइटिस, अल्सर, फैटी लिवर, हेपेटाइटिस, ये नाम सुनते ही डर लगता है ना? लेकिन चिंता ना करें, आज हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर आलोक सिंह, जो बताएंगे फैटी लिवर के कारण, लक्षण और आसान बचाव। डॉक्टर साहब, स्टूडियो में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: और डॉक्टर साहब, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि लिवर वो शरीर का कौन सा अंग है और यह क्यों महत्वपूर्ण है?
2: जी, तो मैं श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि लिवर जो है हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है
1: जी,
2: क्योंकि ये बहुत सारे महत्वपूर्ण काम करता है जो अगर ये ना करे तो हमारे शरीर को बहुत नुकसान हो सकता है
1: जी।
2: ये हमारे शरीर में पेट के ऊपरी हिस्से में दाहिने तरफ लोकेटेड होता है और इसके कुछ प्रमुख अगर काम देखें आप तो डिटॉक्सिफिकेशन, जिससे शरीर में जो गंदगी है उसको सफाई का काम, बहुत सारे एंजाइम्स हैं इनके प्रोडक्शन का काम ये करता है, डाइजेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और बहुत सारी चीज़ों का स्टोरेज भी होता है। सो लिवर का बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है
1: जी। डॉक्टर साहब, आजकल लिवर से जुड़े रोग बढ़ते जा रहे हैं, तो ये क्यों इतनी तेजी से आजकल देखा जा रहा है?
2: जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक अगर लेटेस्ट रिसर्च की माने सो लिवर की रोगों की अगर हम बात करते हैं तो हर तीसरे या चौथे भारतीय को फैटी लिवर की समस्या है। ये हमारे इंडिया की ही रिसर्च है
1: जी।
2: सो अगर आप देखें, ये इतनी कॉमन प्रॉब्लम है कि अगर आप 100 लोगों को जानते हैं तो उसमें से 25 या 30 को फैटी लिवर होगा
1: जी।
2: सो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंटरी होती जा रही है, चलना फिरना कम हो गया है। दूसरा, जो हमारा खाना पीना है जो वो भी काफ़ी वेस्टर्नाइज हो गया है, हम लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाने लग गए हैं, जैसे बर्गर हो गया, पिज्ज़ा हो गया। सो जो वेस्टर्नाइजेशन हो गई है डाइट की अलॉन्ग विद जो लाइफस्टाइल में जो सेडेंटरी चेंजेस आ चुके हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इन सब बीमारियों का जो प्रेवलेंस है वो बढ़ता जा रहा है
1: जी। डॉक्टर साहब, अभी आप बता रहे थे फैटी लिवर होने के कारण, हम जानना चाहेंगे कि इसके प्रकार कौन कौन से हैं।
2: देखिए, फैटी लिवर को अगर हम देखें तो दो प्रमुख तरह के फैटी लिवर होते हैं। एक होता है अल्कोहलिक फैटी लिवर, जो लोग शराब का सेवन एक निश्चित अमाउंट से ज्यादा करते हैं रेगुलर बेसिस पे, उनको जो फैटी लिवर होता है उसको अल्कोहलिक लिवर डिसीज बोलते हैं, अल्कोहलिक फैटी लिवर। दूसरा होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, ये ज्यादा कॉमन है क्योंकि ये अगर आपका जो वेट है, स्पेशली अगर हम बात करें सेंट्रल ओबेसिटी की, मतलब अगर आप मान सकते हैं कि नाभि के लेवल पे अगर आप इंची टेप लेके अपने पेट का सरकमफेरेंस नापें, सो अगर वो बहुत निकला हुआ है तो उसी अनुपात में लिवर में भी फैट जमा होगी। सो हाई बीएमआई, जो बीएमआई आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, ओबेसिटी होना, डायबिटीज होना, लाइफस्टाइल आपकी सेडेंटरी है, खाना पीना आपका बहुत गड़बड़ है, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं आप, सो इन सारे कारणों को एक साथ मिला के फैटी लिवर जो होता है, अगर अल्कोहल की मात्रा आप एक निश्चित अमाउंट से बहुत कम ले रहे हैं या ना ले रहे हैं, सो उसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर बोलते हैं
1: जी। डॉक्टर साहब, आप बात करते बीएमआई, चूंकि हमारे श्रोता ग्रामीण अंचलों से भी सुन रहे होंगे, तो हम जानना चाहेंगे बीएमआई होता क्या है, उसे कैसे मापा जाता है?
2: सो देखिए, इसके लिए आजकल तो सबके पास सेलफोन है, इंटरनेट का एक्सेस है, आजकल बहुत सारे ऑनलाइन कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं, आप सीधे वेट और हाइट को डालिए, वो बीएमआई आपका बता देगा। सो एक निश्चित अमाउंट से ज्यादा, स्पेशली जैसे मोटा मोटा 30 से अगर ज्यादा है तो वो ओबेसिटी की कैटेगरी में फिट होगा
1: जी। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में हम बातें तो जारी रखेंगे लेकिन चाहेंगे शुरुआत में कि आप अपनी पसंद का कोई गीत हमारे श्रोताओं को सुनवाएं।
2: सो एक अपने फेवरेट सिंगर का मैं नाम बताता हूँ जिनका कोई भी गीत आप चला सकते हैं, अरिजीत सिंह इंडियन सिंगर हैं जिनका गाना मुझे बहुत पसंद है।

0: इस गीत के पहले डॉक्टर साहब हम बातें कर रहे थे कि फैटी लिवर के कारण क्या होते हैं। अब हम चाहेंगे कि आप बताएं कि ये रोग कितना खतरनाक होता है।
1: जी बिल्कुल। अगर आप देखेंगे तो 80 से 90% लोगों को जिनको फैटी लिवर है उनको उसके कोई लक्षण नहीं होते।
0: जी
1: अगर आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं किसी और कारण से, या तो रूटीन हेल्थ चेकअप, या आपको पेट की समस्या है, गैस की समस्या है, और रिपोर्ट आती है उसमें लिख के आ जाता है कि आपको ग्रेड 1, 2 या 3 का फैटी लिवर है,
0: जी
1: आपको कोई इसके लक्षण नहीं है, या आप सिंपल रूटीन हेल्थ चेकअप करा रहे हैं उसमें LFT एक जांच होती है, लिवर फंक्शन टेस्ट जिसको बोलते हैं,
0: जी
1: वो आप कराते हैं, उसमें 2 एंजाइम्स होते हैं SGOT और PT, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे आ जाते हैं, जो अपर लिमिट नॉर्मल है उससे ज़्यादा,
0: जी
1: फिर आपको पता चलता है कि हाँ ये तो हमको फैटी लिवर है।
0: जी
1: 90% लोगों को इसका कोई लक्षण नहीं होगा। रिमेनिंग 5 से 10% लोगों को कुछ थोड़े बहुत लक्षण हो सकते हैं, जिसमें प्रमुखता होता है पेट के दाहिने हिस्से के ऊपरी भाग में मीठा मीठा दर्द होना या भारीपन होना।
0: जी
1: ये सिंपल फैटी लिवर है। फैटी लिवर अगर देखें इतना कॉमन है, ये डिफरेंट स्टेजेस में होता है। एक तो हो गया सिंपल फैटी लिवर कि भाई आपके लिवर में आवश्यकता से अधिक चर्बी जमा है, ये
0: जी
1: सिंपल फैटी लिवर है। दूसरी स्टेज ये होती है कि ये जो फैट एक्सेस में जमा है आपके लिवर के ऊपर, उसकी वजह से लिवर में सूजन आने लग गई और आपका लिवर फंक्शन टेस्ट में SGOT PT बढ़ गया, और अगर लिवर के टुकड़े की जांच हम बायोप्सी करके माइक्रोस्कोप में देखें तो
0: जी
1: वहां पे काफी इन्फ्लेमेशन दिखेगा। ये सेकेंड स्टेज हो गई, इसको हम लोग अपनी भाषा में आजकल स्टीएटोहेपेटाइटिस बोलते हैं,
0: जी
1: कि फैटी लिवर की वजह से आपको एक हेपेटाइटिस हो गई, इन्फ्लेमेशन हो गया, सूजन हो गया।
0: जी
1: ये स्टेज सेकेंड स्टेज है, यहां से आपकी वरी स्टार्ट होनी चाहिए। जो सबसे वरीसम बात है वो ये है कि अगर आपकी ये सेकेंड वाली स्टेज बिना कंट्रोल के कई सालों तक आपकी बनी रहे, स्टेट ऑफ
0: जी जी
1: हेपेटाइटिस, लिवर आपका धीरे धीरे धीरे धीरे हीलिंग करते हुए कड़ा होता जाएगा और अल्टीमेटली उसमें इतना डैमेज हो जाएगा कि उसका फंक्शन भी कॉम्प्रोमाइज हो जाए।
0: जी
1: ऐसी इन एंड स्टेज लिवर डैमेज को सिरोसिस या लिवर एक्सट्रीम एंड ऑफ लिवर फाइब्रोसिस बोलते हैं, लिवर
0: जी
1: सिरोसिस जिसको बोलते हैं, वो है।
0: अभी आप लिवर सिरोसिस के बारे में बात कर रहे थे, तो हम जानना चाहेंगे लिवर सिरोसिस, क्योंकि ये भी बहुत आम टर्म हो गया है, लोग सुन रहे हैं, तो लिवर सिरोसिस कौन सी बीमारी होती है?
1: जी, लिवर सिरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें लिवर में बहुत काढ़ा हो गया है, लिवर में फाइब्रोसिस हो गई है, और
0: जी
1: लिवर का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर था वो डैमेज हो गया है, और इस लिवर सिरोसिस के कारण इसके आपको फिर बहुत सारे लक्षण आने लग सकते हैं,
0: जी
1: जिसमें प्रमुखता है पेट में पानी भरना, कभी कभी पीलिया हो जाना, एक सिंपल जांच होती है एंडोस्कोपी की जिसमें खाने की जो नसें हैं वो फूल सकती हैं, जिनके फटने से आपको खून की उल्टी हो सकती है, या आपके
0: जी
1: मल में खून आ सकता है, या आपके फिर जो है दिमाग पे असर पड़ सकता है, कभी कभी जो टॉक्सिन लिवर साफ करता था वो नहीं साफ कर पा रहा, तो वो गंदगी दिमाग में चढ़ जा रही है, जिससे आप गफलत, बेहोशी या कोमा में जा सकते हैं, जिसको हम लोग हेपेटिक इनकेफेलोपैथी बोलते हैं। ये सारे लक्षण आ सकते हैं। एक बार लिवर सिरोसिस एंड स्टेज में पहुंच गई तो दवाओं से उसको क्योर नहीं किया जा सकता है, फिर उसका एक ही इलाज बचता है क्योर का, लिवर ट्रांसप्लांट। ये इतनी एक्सट्रीम सिचुएशन है कि आपने एक ऐसी चीज जो कि बिल्कुल प्रिवेंटेबल थी, और प्रिवेंटेबल भी कैसे थी, आपको कोई दवाई की जरूरत नहीं, सिर्फ
0: जी
1: डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस करके, वेट रिडक्शन करके, अच्छी जीवन शैली को का पालन
0: ओके ओके
1: करके
0: जी
1: आप उसको नॉर्मल कर सकते थे, वो इग्नोरेंस के कारण से एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गई जिसके लिए लिवर ट्रांसप्लांट जैसी स्थिति बन गई, जो कि एक बहुत ही महंगी और डिफिकल्ट सिचुएशन है, और इतना आसान सर्जरी नहीं है, इतना 100% सक्सेस भी नहीं है जिसका,
0: जी
1: तो फिर ये चीज इग्नोरेंस को दर्शाता है।
0: डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि वो कौन से लक्षण होते हैं जब लोगों को सावधान हो जाना चाहिए कि उनके लिवर की परेशानी बढ़ने वाली है, हो रही है।
1: जी देखिए, एक तो ये हो गया कि अल्ट्रासाउंड पे सिंपल फैटी लिवर लिख के आ गया, या आपको कोई जांच कराई जिसमें फैटी लिवर आ गया,
0: जी
1: तो ये सिंपल फैटी लिवर है। फैटी लिवर होने का जो मुख्य इलाज है वही है कि वेट रिडक्शन, डाइट एंड लाइफस्टाइल इंटरवेंशन।
0: जी
1: अगर आप LFT की जांच कराते हैं और उसमें आपका लिवर का जो एंजाइम्स हैं SGOT PT, आई
0: जी
1: थिंक कॉमन लोगों को भी इसके बारे में पता है, वो अगर बढ़ने लग गया तो आप सतर्क हो जाएं कि अब इसको कम करना है।
0: जी
1: मतलब ये है कि ये सिंपल फैटी लिवर से एक स्टेज ऊपर की स्थिति अब बनने लग गई है, जिसको हम लोग स्टेटोहेपेटाइटिस कहते हैं, और ये स्थिति अगर लंबे समय तक बनी रही तो लिवर को परमानेंट डैमेज का नुकसान हो सकता है।
0: जी
1: तो इसके पहले उस स्थिति में पहुंचे, आप अपने आप को डाइट एंड लाइफ इंटरवेंशन से ठीक कर सकते हैं, कभी कभी स्पेशलिस्ट की भी सहायता ले सकते हैं, जो कुछ दवाएं आती हैं जो उसमें आपकी मदद कर सकती हैं, उन दवाओं का भी सेवन कर सकते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, आप हेपेटाइटिस की बात कर रहे थे, तो हेपेटाइटिस का भी हम लोगों ने सुना कि ABCDE, तो इनमें क्या अंतर होता है ये?
1: जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इनको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, ए बी सी डी एंड ई, पांच हेपेटाइटिस हैं। डी इतना कॉमन नहीं है इंडिया में, सो ए बी सी एंड ई, इसमें से जो ए और ई हैं ये यूजुअली एक्यूट हेपेटाइटिस कराते हैं
0: जी।
1: इनका जैसे आपने सुना होगा कई बार कि यंग लड़के हैं उनको ऐसा बोलते हैं कि पीलिया हो गया अचानक से, ये नॉर्मल खाने पीने की चीजों से होते हैं जो कि वायरस से इन्फेक्टेड है, मतलब कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से हो गया। उसने अपने खाया, वायरस ने जाके लिवर पे अटैक किया, लिवर पे जो अटैक हुआ उसके कारण लिवर में सूजन इन्फ्लेमेशन आई, जिसके कारण से आपके लिवर एंजाइम्स बढ़ने लग गए, पीलिया हो गया, बिलरुबिन बढ़ गया। सो ये दोनों एक्यूट हेपेटाइटिस कराते हैं। यूजुअली 99% केसेस में ये बीमारी धीरे धीरे धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाती है, बिलरुबिन और पीलिया का स्तर कम आ जाता है और देन पेशेंट का जो लिवर रिकवर कर जाता है तो पूरा नॉर्मल की तरह फंक्शन करने लग जाता है
0: जी।
1: हेपेटाइटिस बी और सी में बी एक्यूट हेपेटाइटिस भी कराता है, बट ये दोनों क्रॉनिक हेपेटाइटिस कराते हैं, मतलब अगर हेपेटाइटिस बी का क्रॉनिक हेपेटाइटिस अगर हो गया या सी का, तो यूजुअली फिर आपको ट्रीटमेंट की जरूरत कई बार पड़ती है। और लॉन्ग टर्म पॉजिटिव जो लोग हेपेटाइटिस बी और सी से रहेंगे उनको फिर लिवर सिरोसिस या एंड स्टेज लिवर डैमेज में जाने का खतरा बना रहता है। तो ये दोनों में बेसिक फर्क है। बी और सी के फैलने का तरीका थोड़ा अलग होता है, वो जैसे संक्रमित खून, जैसे हेपेटाइटिस की भी अनप्रोटेक्टेड सेक्स, नीडल शेयरिंग, इन सब चीजों से फैलने का खतरा हेपेटाइटिस बी का रहता है और सी का भी रहता है
0: जी।
1: या कोई इन्फेक्टेड मदर है उनसे उनको बेबी को भी फैल सकता है ड्यूरिंग डिलीवरी।
0: डॉक्टर साहब, हम बातें तो जारी रखेंगे लेकिन वक्त हो चला है कि हम एक और गीत अपने श्रोताओं को सुनवाएं, आपकी पसंद का।
1: जी बिल्कुल, मैं अपने पसंद का ही गीत बता देता हूँ आपको। एक सॉन्ग है जो भेजी थी दुआ, वो जाके आसमां से

0: इस गीत के बाद डॉक्टर साहब कार्यक्रम में वापस लौटते हैं। डॉक्टर साहब, हम बातें कर रहे थे इससे पहले हेपेटाइटिस के बारे में, अब हम जानना चाहेंगे कि पीलिया यानी जॉन्डिस और लिवर सिरोसिस के लक्षणों में क्या अंतर होता है।
1: जी देखिए, पीलिया अपने आप में एक लक्षण है। पीलिया बहुत सारे कारणों से हो सकता है, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे हेपेटाइटिस ए और ई के बारे में, कि अगर इन वायरस का इन्फेक्शन हुआ तो आपको पीलिया हो सकता है, आंखें पीली हो सकती हैं। बिलरुबिन एक सर्टेन लेवल से जब ज्यादा बढ़ जाता है तो आंखों में, पेशाब में पीलिया दिखने लग जाती है, शरीर पर दिखने लग जाती है। तो पीलिया एक लक्षण है जो बहुत सारे कारणों से हो सकता है, जिसमें से एक कारण तो इन्फेक्शन ही हो गया, वायरल इन्फेक्शन ए ई बी का। दूसरा, कई बार और भी रेयर कॉजेज होते हैं पीलिया के, जैसे कि कोई आपने टॉक्सिन्स या कुछ ऐसे चीजें ले ली जो उसका लिवर पे बहुत बुरा असर पड़ गया
0: जी।
1: जैसे स्पेशली बहुत सारे पे, हम एक एग्जांपल देता हूँ, बॉडी बिल्डिंग ड्रग्स और बॉडी बिल्डिंग के नाम पे बहुत सारे लोग प्रोटीन पाउडर लेते हैं, जिम एनहेंसिंग लेते हैं, जिसमें स्टेरॉइड्स वगैरह अलग अलग तरीके के रहते हैं, उनसे भी हो सकता है पीलिया। तीसरा जो कारण है, कुछ कुछ रेयर डिसीजेस होती हैं, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस जिनको बोलते हैं, उन कारण से पीलिया हो सकता है। ये एक डिफरेंट कैटेगरी का पीलिया है। एक अलग कैटेगरी का जो दूसरा पीलिया होता है वो इस वजह से होता है क्योंकि पित्त की जो थैली या पित्त की नली में कहीं से ब्लॉकेज आए तो पीलिया हो सकता है। सो ऐसे में जो प्रमुख कारण आते हैं वो आते हैं कि पित्त की नली में अगर स्टोन फंस गया, या कोई कैंसर है पित्त की नली का या पैंक्रियास का या गॉल ब्लैडर का जो पित्त की नली को दबा रहा है। सो ऐसे कंडीशन से जो पीलिया होता है उसको भी, उसमें भी पीलिया ही होगा, लेकिन उसको हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हैं
0: जी।
1: तो ये दो अलग अलग तरह के पीलिया होते हैं। लिवर सिरोसिस में पीलिया होना कोई बहुत आम लक्षण नहीं है, कि जो प्रमुख लक्षण होते हैं उसमें मुख्यतः पेट का पानी भरना होता है
0: जी। डॉक्टर साहब, अब बातें करते हैं कि इसके निदान और परीक्षण की, तो वो कौन से टेस्ट होते हैं जो हेपेटाइटिस और लिवर सिरोसिस के लिए कराए जाते हैं।
1: जी, तो अगर लिवर सिरोसिस का सस्पिशन है किसी को और आपके पेरिफेरल सेटिंग्स में, मान लीजिए कोई डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं जहां बहुत सारे बड़े बड़े फैंसी टेस्ट अवेलेबल नहीं हैं
0: जी,
1: सो एक तो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है
0: जी।
1: जैसे हिस्ट्री में मान लीजिए कि कोई ऐसे पेशेंट हैं जो बोल रहे हैं कि रेगुलर शराब का सेवन कर रहे हैं कई सालों से, तो उनको रिस्क फैक्टर हो गया। दूसरा, लक्षणों का परीक्षण कर सकते हैं, वो पेट में सूजन बता रहे हैं, पीलिया कभी हुई हो ऐसा बता रहे हैं, या कभी ऐसा बता रहे हैं कि खून की उल्टी हुई या मल में खून आने की समस्या रही हो, तो लक्षणों के बेसिस पे सस्पिशन आ सकता। अब हम टेस्ट की बात करें, दो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दो या तीन मैं इनफैक्ट बोलूंगा। एक जो नॉर्मल ब्लड टेस्ट होता है सीबीसी
0: जी,
1: जिसमें हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट और ये सब टेस्ट आते हैं, तो सिरोसिस के पेशेंट्स में प्लेटलेट लोअर साइड रहता है
0: जी,
1: वो कम होने लग जाता है। तो प्लेटलेट का कम होना, एल्बुमिन का कम होना, और एक खून कि पतला है कि गाढ़ा, उसकी जांच होती है जिसको INR बोलते हैं।
0: INR,
1: हाँ। सो INR अगर बढ़ने लग जाए किसी पेशेंट का, जिसको आप समझ लीजिए किसी को फैटी लिवर चल रहा था सालों से, डायबिटिक है वो, उसका प्लेटलेट कम होने लग जाए, एल्बुमिन कम होने लग जाए और INR बढ़ने लग जाए, तो सिंपल इन दो तीन ब्लड टेस्ट के बेसिस

0: की स्कोरिंग करके वैल्यू देता है। सो वो थोड़ा पहले ही बता देगा, इसके पहले अल्ट्रासाउंड पिक करे एडवांस सिरोसिस और उसके कॉम्प्लिकेशंस को, ये थोड़ा पहले ही आपको आगाह कर सकता है कि भाई अब सतर्क हो जाइए, क्योंकि अब ये फैटी लिवर वाली बात नहीं रही, अब लिवर में फाइब्रोसिस होना शुरू हो गई है। तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए या जो भी आपकी सलाह है उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना शुरू करिए, इसके पहले बहुत देर हो जाए।
1: जी डॉक्टर साहब, बातें करते हैं उपचार और प्रबंधन की यानी मैनेजमेंट की, क्या फैटी लिवर रिवर्स किया जा सकता है?
0: फैटी लिवर एज सच इज अ कम्प्लीटली रिवर्सिबल सिचुएशन, उसको पूरी तरह से रिवर्स किया जा सकता है
1: जी।
0: तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसको कम्प्लीटली रिवर्स करने के लिए कोई फैंसी दवाएं या महंगे इलाज की भी जरूरत नहीं है
1: जी,
0: सिंपल बेसिक डाइट एंड लाइफ स्टाइल इंटरवेंशन से इसको रिवर्स किया जा सकता है
1: जी।
0: सो बिल्कुल आप जो सवाल किया उसका जवाब 100% हाँ है।
1: तो श्रोताओं, आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी कि सिंपल लाइफ स्टाइल चेंजेस करके भी आप फैटी लिवर को रिवर्स कर सकते हैं, यानी आप अपने लिवर को नॉर्मल बना सकते हैं। डॉक्टर साहब, बातें हमारी जारी रहेंगी लेकिन वक्त हो चला है कि एक और गीत लें हमारे कार्यक्रम में।
0: सो मैं एक अपने पसंद का गीत बताता हूँ आपको, मौला मेरे आंखें तेरी कितनी हंसी।
1: जी डॉक्टर साहब, आइए सुनते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: इस गीत के पहले डॉक्टर साहब हमने बात की कि कैसे फैटी लिवर को रिवर्स किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, अब हम जानना चाहेंगे गैस्ट्राइटिस के बारे में, और ये होता क्या है, और ये लिवर से जुड़ा ही रोग है या ये अलग है?
1: देखिए, दो बड़ी कॉमन बीमारियां हैं लिवर के अलावा पेट की।
0: जी
1: एक है गैस्ट्राइटिस, दूसरी है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज,
0: जी
1: GERD, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं,
0: जी
1: और आम बोलचाल की भाषा में जिसे हम एसिडिटी बोलते हैं।
0: जी
1: मैं पहले GERD के बारे में बात कर रहा हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि पेट में तेजाब बनना एक नॉर्मल प्रक्रिया है, वो खाना पचाने के लिए बहुत ज़रूरी है।
0: जी
1: कई बार ये तेजाब जो है वो पेट से निकल के ऊपर उठ के हमारी आहार नली, जिसको हम इसोफेगस बोलते हैं, उसमें आ जाता है। ऐसा होने से कुछ लक्षण होते हैं जिसके दो कार्डिनल सिम्टम्स हैं GERD के। एक होता है हार्ट बर्न, मतलब
0: जी
1: आपके सीने के मध्य

0: भाग में या पेट के ऊपरी हिस्से में
1: जलन
0: जलन जैसा दर्द होगा, जिसको हार्ट बर्न बोलते हैं। दूसरे को बोलते हैं रीगर्जिटेशन, मतलब मुंह में कच्ची डकार, खट्टा पानी का आना। सो ये दोनों सिम्टम अगर हैं किसी को, तो हम एक मोटा मोटा मान सकते हैं कि उसको एसिडिटी की समस्या है, GERD। ऐसा होता क्यों है? बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा मोटापा है, स्पेशली सेंट्रल ओबेसिटी है, पेट बहुत निकला हुआ है, अगर आपको एक्सेसिव टी, कॉफी, अल्कोहल और स्मोकिंग का शौक है, सो ऐसे लोगों में बहुत ज्यादा स्पाइसी और फ्राइड डीप फ्राइड फूड लेने का आदत है, तो भी। अब सवाल यह है कि हम सबने कभी ना कभी महसूस किया होगा कि हम शादी पार्टी में गए, बहुत ओवर ईटिंग कर ली और हमको ये सिम्टम्स आ गए, तो उनको इसका ये मतलब नहीं कि उनको ये GERD का बीमारी हो गया। दैट इज ओकेजनल, आपने कभी महीने, दो महीने, तीन महीने में हो गया तो हो गया। कुछ प्रतिशत लोगों को ये सिम्टम्स बराबर हफ्ते में कई दिन या महीने में कई हफ्तों बने रहते हैं। सो अगर ये सिम्टम्स आपके क्रॉनिक हो गए, तब मतलब आपको GERD की सही में समस्या है
1: जी।
0: तो ऐसे लोगों को ये इस बात का बहुत ध्यान देना चाहिए कि जो इसके रिस्क फैक्टर्स हैं
1: जी,
0: उनको हटाएं, मोटापे को कम करें, चाय कॉफी का सेवन कम करें, अल्कोहल और स्मोकिंग को बंद करें, बहुत ज्यादा स्पाइसी डीप फ्राइड फूड्स को अवॉइड करें। चौथा, खाने में क्या कर सकते हैं कि ऐसे लोग जो हैवी मील्स लेते हैं, एक बार में बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, वो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स में खाना खाएं, रात का खाना कम खाएं, जल्दी खाएं, और सबसे इंपॉर्टेंट, खाना खाने के तुरंत बाद ना लेटें। एटलीस्ट 2 से 2.5 घंटे का फर्क होना चाहिए खाने और लेटने में। सो ये सिंपल बेसिक इंटरवेंशन से आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं
1: जी। डॉक्टर साहब, डाइट की बातें कर रहे थे, तो हम चाहेंगे डाइट प्लान कौन सा होना चाहिए, कौन सा ऐसा भोजन है जिनको खाना चाहिए और किसे अवॉइड करना चाहिए।
0: जी बिल्कुल, अगर आप डाइट की बात करेंगे तो डाइट में तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहला, क्या खा रहे हैं
1: जी,
0: दूसरा, कितना खा रहे हैं, और तीसरा, कब खा रहे हैं
1: जी।
0: ठीक है, क्या खा रहे हैं और क्या नहीं खा रहे हैं, ये मोटा मोटा सबको पता होता है। सबको पता है कि भाई समोसा, कचौड़ी, छोला भटूरा, बर्गर नुकसान करता है। क्या खाना चाहिए? सिंपल दाल चावल रोटी सब्जी अगर आप खा रहे हैं तो है। दूसरा, कितना खा रहे हैं, जितनी आपकी भूख है उतना खाइए, जीने के लिए खाइए, खाने के लिए मत जिए। ठीक है, तीसरा, कब खा रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जो बॉडी में नॉर्मल जो हार्मोनल प्रक्रिया है, इंसुलिन के सेक्रीशन का जो साइकिल होता है, वो इस बात को फेवर करता है कि आप सुबह ब्रेकफास्ट अच्छे से करें
1: जी,
0: लंच भी ठीक से करें, डिनर हमेशा जल्दी और कम होना चाहिए। अमूमन हम देखेंगे, स्पेशली जो हमारा नॉर्थ इंडियन सेटअप है, उसमें क्या है, हम करते उल्टा है
1: जी।
0: सुबह आपको ऑफिस जाने की जल्दी रहती है, तो नाश्ता भागते भागते कम कम करते हैं। लंच यूजुअली अगर आप वर्किंग है तो वर्क प्लेस पे करते हैं
1: जी,
0: सो वो भी शायद उतना अच्छे से नहीं हो पाता। तो इन दोनों की कमी हम लोग घर जाके रात में डिनर में पूरी करने की कोशिश करते हैं, होना उसका ठीक उल्टा चाहिए। सो रात का खाना कम होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए
1: जी,
0: ये तरीका होना चाहिए खाने का
1: जी। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात बताई आपने। डॉक्टर साहब, हम और चलते चलते चाहेंगे कि आपको एक घरेलू उपाय बताएं लिवर सिरोसिस और गैस्ट्राइटिस से बचने के लिए।
0: जी, तो देखिए, एक तो ये है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो ग्रीन लीफी चीजें हैं, उनको ज्यादा खाएं
1: जी।
0: फाइबर का इंटेक अच्छा होना चाहिए, वाटर इंटेक, अगर आपको कोई और बीमारी नहीं है, आपको मना नहीं है, तो एडिक्वेट होना चाहिए। जहां तक हो कोशिश करें कि जंक फूड या प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करें, जिसमें पैक्ड जूसेस हो गए, एक्सट्रीमली डीप फ्राइड प्रोसेस्ड फूड हो गया, इनको अवॉइड करें। अगर आप ऐसा करते हैं और अपने नॉर्मल रूटीन दिनचर्या में एटलीस्ट 30-45 मिनट्स का वॉक इंक्लूड करें
1: जी,
0: कोई जरूरी नहीं कि आप जिम जाएं, हैवी एक्सरसाइजेस करें, वेट लिफ्टिंग करें। सिंपल, अगर आप एक निश्चित थोड़ा सा तेज स्पीड से वॉक भी करेंगे 30 मिनट रोज, हफ्ते में 5 दिन में अगर आप करते हैं, सो ओवरऑल आपकी हेल्थ पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा
1: जी। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और हम गैस्ट्राइटिस और लिवर से जुड़ी इतनी जानकारियां हमारे श्रोताओं को दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: थैंक यू सो मच।
2: अभी आप सुन रहे थे सेहत की बातें। इसमें आज आप सुन रहे थे बातचीत, विषय था लिवर से बीमारियां, कारण, लक्षण एवं उपचार। विशेषज्ञ थे डॉक्टर आलोक सिंह, आपसे बातचीत कर रहे थे मनोज यादव। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
3: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details, log on to www.ddindia.com।
4: स्वच्छता का संदेश फैलाओ, हर जगह सफाई लाओ,
5: कूड़ा कचरा सही जगह डालो, स्वच्छता की आदत अपनाओ,
4: साफ सफाई से जीवन सुहाना, स्वस्थ समाज का सपना सजाना।
5: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। खेती किसानी कार्यक्रम में आइए सुनते हैं वार्ता। विषय है गर्मी में मूली की खेती। विशेषज्ञ हैं विनय कुमार।
1: किसान भाई दिन पर दिन खेत के जोत का आकार कम होखत जात बा। ओकरे पीछे कारण ये बा कि जनसंख्या बढ़त बा, खेत का बंटवारा होत बा। दूसरा तरफ देखल जा

0: तो शहर के आसपास जौन भी उपजाऊ जमीन रहा है ओकर नगरीकरण के दौर में भूमि यदि गृहत कर लिहल गई एक वजह से भी आसपास खेती का जोत कम हो गई। अब हमन के ई देखे के बा कि जौन अनाज वाली फसल है उनका तो साल में एक बार दो बार तीन बार जौना में दलहनी तिलहनी अनाज वाली फसल उनका खेती अलग अलग मौसम में कई जाला। एक चीज़ और है कि अगर हमन का सब्जी के खेती बारह मास कई जा तो जौन भी शहर के आसपास खेत हुआ या ऐसन दूर वाला जगह जहां अगर साधन बा सड़क का व्यवस्था बा तो वो अगर वहां से सब्जी का उत्पादन करके शहर तक भेज सकें तो बड़ा कम रकबा में बड़ा कम क्षेत्रफल में अब भी जितना उत्पादन अनाज वाली फसलन से होत बा या अन्य फसल से होत बा वैसे कई गुना लाभ बाटे तो उन सब्जी वाली फसलन से हो सकेला। खास तौर से सब्जी वाली फसलन में आज हम ऐसन फसल का बात करब जौन बड़ा जल्दी तैयार हो जाला। एकर उपयोग भी लोग बारह मास करेला मांग भी बारह मास रहेले और कौनो ऐसन बाजार नहीं बाटे सड़क चौराहा ऐसा नहीं बा जहाँ की एक अगर रख दिहल जा तो लोग खरीदार नहीं मिली हैं। अब देख लें कि मूली का बात कही जा तो कहल जाला कि गर्मी में मूली का अगर सेवन कही जाता तो ये पेट के अंदर ठंडाई प्रदान करेले एकर तासीर ठंडा होला कब्ज के दूर भी करेले भूख बढ़ावला का गुण भी ये में होला। एक कच्चा सलाद के रूप में अचार के रूप में और पका के सब्जी बनावला के रूप में भी एकर प्रयोग कैल जा सकेला। खास तौर से आप सभी जानत हैं कि देखे लें कि अगर कहीं गांव में केहू के पीलिया हो गई तो खोजे लें कि भैया अगर मुरई मिल जाए दो पत्ता या एक टुकड़ा मूली अगर मिल जात तो जौन लीवर से संबंधित बीमारी बा ओके बहुत जल्दी आराम मिल सकेला। एमे विटामिन सी के अलावा जौन खनिज लवण बा फास्फोरस बा पोटेशियम कैल्शियम बा तौन प्रचुर मात्रा में पावल जाला। एक चीज़ और है कि अब गर्मी में तो ना लेकिन अगर आप जाड़ा में रंगीन मूली उगावतनी जौना का रंग लाल बा बैगनी बा या सुनहरा बा तो ओ में जौन सफ़ेद रंग के मूली बा ओकरे तुलना में 15 से 20 गुना एंटीऑक्सीडेंट होला यानी कि ऐसन तत्व पावल जाला जौन आपके शरीर के रोग रोधी क्षमता के बढ़ावेला। खास तौर से जब गर्मी में मूली के खेती के बात कही जाला तो सबसे पहले यह देखल जाला कि माटी होखे तौन बलुई दोमट होखे के चाही जौना में कार्बनिक पदार्थ चाहे वो गोबर का खाद होखे कंपोस्ट होखे हरी खाद होखे एकर प्रचुर मात्रा में निवेश होखे के चाही। जहाँ तक माटी का बात बाटे कि ऐसना जगह आप खेत का चयन करी जहाँ पानी का सुविधा पर्याप्त होखे काहे कि जब भी आप मूली का खेती करब गर्मी में और 7 दिन 5 दिन गर्मी के हिसाब से अगर के पानी ना दे पाई तो माटी सख्त हो जाई आ एकरे जौन जड़ बाटे एकर विकास बढ़िया से ना होई। वैसे तो जाड़ा गर्मी बरसात हमेशा मुरई के खेती होले लेकिन अगर गर्मी में मुरई के खेती का बात कही जा तो एक बार अगर आप बो देतनी तो लगभग 45 से 55 दिन में ये उखाड़ के बाजार में बेचे लायक हो जाला। ए में दो प्रजात बढ़िया बाटे जौना के काशी मूली 40 के नाम से जानल जाला आ एक औरी मूली है जौना के पूसा चेतकी के नाम से जानल जाला। ई अब से और मई जून तक इनके रोपाई कही जा सकेला बुआई कही जा सकेला। खेत के तैयारी के बाद जैसे कहल गई है पर्याप्त मात्रा में गोबर कंपोस्ट का खाद होके के चाही साथ ही साथ जौन आप गोबर कंपोस्ट का खाद डालतनी वो मूली के बुआई कैला से 20-25 दिन पहले खेत में मिला देवे के चाही और जब बुआई आप करतनी तो बुआई कैला से पहले खेत में 50 किलोग्राम जौन नत्रजन बा ओकर आधा मात्रा यानी 25 किलोग्राम नत्रजन 25 किलोग्राम फास्फोरस और 25 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में मिला देवे के पड़ी। जौन आधा नत्रजन का मात्रा बा 25 किलोग्राम ओ बाटे तौन बुआई कैला के बाद जब 15 दिन बाद जब ओकर आप बिरलीकरण करतनी समय से पानी देतनी ओ हिसाब से ओकर टॉप ड्रेसिंग कर सकेनी पौधा के मांग के हिसाब से। यही तरह से अगर देखल जा कि गर्मी में मूली बोवे के बा तो जाड़ा में तो समतल क्यारी समतल खेत में भी हो जाला, लेकिन अगर गर्मी में मेड़ पर अगर आप बोवतनी तो ऐसे उत्पादन बहुत बढ़िया मिली। डेढ़ डेढ़ फीट की दूरी पर आप लाइन बना लें, छोट छोट समतल क्यारी रहे और उसमें डेढ़ डेढ़ फीट के दूरी पर लाइन मेड़ बना लें और वही मेड़ पर आप आधा इंची की गहराई पर 6 से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर आप दाना के बुआई कर सकेली मेड़ पर। जब आपका पौधा जम जा 3 अंगुल 4 अंगुल को हो जा वो समय जौन घना पौधा बाटे ओके आप निकाल सकेली। सिंचाई जब आपके कैला का बात होले तो ये होला कि जब आप बुआई करतनी तब भी खेत में इतना पलेवा कैले रही कि पर्याप्त नमी रहे और ओकरे बाद खेत में नमी इतना रहे कि एक बार जब आप बीज बो दिहली तो ओकर जमा होइला तक वो में अलग से फिर पानी का जरूरत न पड़े। खेत जहाँ आप लगाओ तनी वो हल्का छायादार वाला हिस्सा में होके, काहे कि जब गर्मी का लू चली तो आसपास पेड़ पौधा रही हैं या तेज लू के रोके वाला कोनो बाग बगीचा रही और ओकरे किनारे आप कहीं लगौले रह या टाटी अगर आप बांध देतनी पश्चिम दिशा में तो पानी के मांग के घटावल जा सकेला। यही तरह से जब आप सिंचाई का बात कर ली हैं तो गर्मी में 5 से 6 दिन पर आप सिंचाई कर सकेली और हमेशा ये देखें कि खेत में हल्का नमी बनल रहे और मेड़ बाटे तो पूरा डूबे ना। अगर पूरा मेड़ भर के अगर आप सिंचाई कर देतनी तो मेड़ दब जाई, ऐसे मूली के जड़ का विकास बढ़िया से ना हुई। निराई गुड़ाई कर समय यही बात का ध्यान रखे के बाद कि बोआला के 15 से 20 दिन के अंदर आप जहाँ देखा तनि कि पौधा पर माटी का कमी बा वहीजा माटी चढ़ा सकेली और वही माटी चढ़ावत समय खेत के अंदर जौन भी खर पतवार है ओके आप निकाल सकतनी। अगर जरूरत बाटे ज़्यादा गर्मी पड़त बा तो जौन मेड़ के और नाली के बीच का दूरी बा ऊपर चाही तो सीधा सूर्य का प्रकाश न पड़े ओकरे खातिर आप पलवार का भी प्रयोग कर सकेला। घास फूस सूखा होके चाही आप पतई से एक ढक सकेला। मुरई के खेती में जब आप बोअब आ जहाँ 2 पतई 3 पतई का मूली निकलल वह समय कुछ छोटवार ऐसा कीड़ा हुआ कि जहाँ 2 पतई 3 पतई बा पत्ती के निचले सतह पर वो आवेल काला रंग का भूरा रंग का और हजारों की संख्या में आवेल।
1: खेती किसानी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे वार्ता, विषय था गर्मी में मूली की खेती। विशेषज्ञ थे विनय कुमार। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में समाचार रिले होंगे।
0: जॉन माह
2: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द मिड डे न्यूज। The headlines. In Tamil Nadu, C. Joseph Vijay-led TVK government wins floor test in state assembly with comfortable majority. N. Rangaswamy sworn as chief minister of Puducherry for a record 5th term. Sentence states intensify fuel-saving measures following Prime Minister Narendra Modi's appeal amid global energy crisis triggered by West Asia conflict. CBSE declares all India senior secondary class 12th results. Gold silver prices jump over 6% after government hiked import duty to around 15%. IMD says monsoon likely to arrive early this year. And in IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru to take on Kolkata Knight Riders in Raipur this evening. The newly sworn-in government led by Chief Minister Joseph Vijay has proven majority of 144 MLAs and has won the vote of confidence today. 22 AIA DMK MLAs led by Edappadi Palaniswamy have opposed it. 5 MLAs, including the BJP MLA and PMK, remained neutral. DMK and other alliance partners did not participate in the motion and walked out of the assembly. The motion to prove majority was brought by Chief Minister in the assembly. The AIA DMK led by SP Velumani supported the government. We have a report.
3: It was a day of expectation in Tamil Nadu politics. The TVK government had to face a floor test in which the ADMK party faced a split. The former chief minister and general secretary of the party, Edappadi Palaniswami, criticized the ruling TVK government for encouraging a split in the party. He also criticized the speaker for allowing the breakaway group of AIADMK leader SP Velimani to speak on the motion of confidence. In his speech, Velimani said that they had to take a stand in support of the government to continue the ideals of MGR and Jayalalitha. In his speech, after winning the motion of confidence, Chief Minister Joseph Vijay assured that his government will definitely protect the welfare of the minorities and work for the welfare of the people. He said that the people will accept this government because the welfare schemes implemented by the earlier governments will be continued. Udayanidhi Stalin, the opposition leader, said that the Secular Progressive Alliance will continue to work for the wishes of the people. Joy, Akashwani reporting from Chennai.
2: Veteran political leader and founder of the All India NR Congress, N. Rangaswamy, today took oath as the Chief Minister of Puducherry for a record fifth term. Along with him, A. Namasivayam of the BJP and Maladi Krishna Rao of All India NR Congress were also sworn in as ministers in the NDA government. We have a report.
4: In a symbol ceremony held at Lok Nivas, Puducherry Lieutenant Governor K. Kailash Narayan administered the oath of office and secrecy to Chief Minister and the two ministers who sworn in today. Before this, Chief Secretary Sharad Chauhan read out the central government notification appointing the Chief Minister and two ministers. BJP National President Nitin Nabin, National General Secretary Organization B.L. Santosh, Puducherry in charge Nirmal Kumar Surana, State President V.P. Ramalingam, DMK convener R. Shiva, former Legislative Assembly Speaker R. Selvam, newly elected MLAs and other party functionaries came to witness the swearing-in ceremony. After the ceremony, Mr. Rangaswamy visited the Chief Minister's office at Puducherry Legislative Assembly building and took charge. Speaking to reporters, the Chief Minister said that government would work towards developing Puducherry on the lines of Singapore. The new government marks the second consecutive NDA term in the Union Territory under the leadership of Rangaswamy. The remaining ministers in the cabinet are expected to be inducted later. Mr. Rangaswamy will also tender resignation from one of the two constituencies from which he won as MLA. Discussions are underway in NDA regarding other ministers, portfolios, and the appointment of the Speaker, Deputy Speaker, and Government Whip. Bibinastan, Akashwani News, Puducherry.
2: The oath-taking ceremony for the newly elected MLAs of the 18th West Bengal Legislative Assembly is underway in Kolkata. Chief Minister Subhendu Adhikari took oath from Bhavanipur seat as MLA, and the Nondigram seat has been left vacant. Afterwards, five other cabinet ministers also took the oath. On the other hand, Humayun Kabir, the Aam Janata Unayan Party MLA, took oath for the Naoda seat. Kabir also won from the Rejinagar seat. The pro-time speaker Tapas Roy administered the oath. Prime Minister Narendra Modi has significantly reduced the size of his convoy during recent domestic visits while retaining all essential security arrangements mandated under the Special Protection Group SPG protocols. According to sources, the reduction in the number of vehicles in the Prime Minister's convoy was implemented during his recent visits to Gujarat and Assam. The move comes in line with the Prime Minister's seven appeals to citizens to contribute towards economic resilience by reducing dependence on imported fuel and adopting environmentally sustainable alternatives amidst the West Asia crisis. Sources further added that while the convoy size was reduced, all critical security components continue to remain in place to ensure the Prime Minister's safety. Following Prime Minister Narendra Modi's appeal, Union Home Minister Amit Shah downsized his convoy, reducing it to less than half. The chief ministers of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Delhi have announced measures to reduce the use of official vehicles by ministers, MLAs and public representatives. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has ordered a 50% reduction in the vehicle fleets of the CM, ministers and other officials. Chief Minister of Rajasthan Bhajan Lal Sharma has also emphasized the need to conserve petrol and diesel in the state. The Chief Minister has decided to reduce the number of vehicles in his own convoy and has directed ministers, public representatives and officials to exercise restraint in the use of vehicles. Prime Minister Narendra Modi has shared an article written by Union Minister of State for Railways Ravneet Singh Bittu, highlighting that in Punjab, modern railway stations and an improved network are paving the way for new avenues of progress. In a social media post, the Prime Minister said that this transformation is bringing many opportunities for the people of the region. He said the article illustrates how Punjab is transforming. Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions Dr. Jitendra Singh today launched the 16th Pension Adalat in New Delhi. The minister chaired the Adalat for redressal of pension-related grievances. On the occasion, pensioners from all over the country participated through a hybrid mode. These adalats aim to provide on-the-spot decisions for redressal of pension-related grievances, thus obviating the need to approach courts by the pensioners, saving both their time and money, and providing them an effective grievance redressing machinery. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. The Central Board of Secondary Education, CBSE, today announced the Class 12th Board examination results. Students can check the results on the official website DG Locker and Umang app by mentioning roll number. This year, the CBSE Class 12 exams were conducted between February 17th and April 10th, 2026, for lakhs of students across science, commerce, and humanities streams. A CBI team has arrived in Jaipur to probe the alleged leak of the NEET examination paper and questioned around 24 people, rounded up by the Special Operations Group SOG of Rajasthan Police. Meanwhile, hundreds of people have been questioned by the SOG in Sikar and nearby areas as part of the investigation. The Minister of Environment, Forest and Climate Change will organize a series of special events across the country to highlight India's achievements in big cat conservation and promote the goals of the International Big Cat Alliance, IBCA. We have more from a correspondent.
5: As precursor to the Cat Alliance Summit 2026, the program will focus on India's five major wild big cat species, tiger, Asiatic lion, leopard, snow leopard, and cheetah. The event will showcase conservation efforts, challenges, and cooperation between the central government and state governments. The thematic events will be held in different parts of the country, including Gujarat, Madhya Pradesh, Odisha, Sikkim, and Maharashtra. India will host the first Cat Alliance Summit on 1st June this year in New Delhi, with participation expected from heads of state and heads of government of member and observer countries. India is home to over 70% of the world's wild tiger population and has emerged as a global leader in tiger conservation through sustained efforts under Project Tiger and the National Tiger Conservation Authority. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
2: Today, BRICS Foreign Ministers meeting will start tomorrow in New Delhi. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today met Minister of Foreign Affairs of Chile, Francisco Perez Marquena, this morning. In a social media post, he said that both sides held discussions on strengthening bilateral cooperation to diversify markets and sourcing and to promote the export of priority items and facilitate the services economy. Indonesian Foreign Minister Sugiano also arrived in New Delhi early this morning to participate in the two-day BRICS Foreign Ministers meeting. The meeting will be chaired by External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar. BRICS of foreign ministers and heads of delegation from member and partner countries will participate in the meeting. They will also call on Prime Minister Narendra Modi. Gold and silver prices today witnessed a sharp surge of up to 6%. In the futures market at the multi-commodity exchange, gold for the June contract was trading nearly 6% higher at 1,62,597 rupees per 10 grams, while silver for the July contract was trading around 6.4% higher at 2,96,821 rupees per kilogram, according to the latest reports. However, during intraday trade, gold and silver prices touched gains of up to 8%. The government has raised the import duty, including cess, on gold and silver from 6% to 15%. The import duty on platinum has also been increased from 6.4% to 15.4%. Benchmark domestic equity indices rebounded today and were trading over 0.5% up in the afternoon session. The Sensex advanced 403 points to 74,962, while the Nifty rose 146 points to 23,526 when reports last came in. The broader market at the National Stock Exchange also jumped. The mid-cap 100 was trading 1.3% higher, and the small-cap 100 added 0.7% a short while ago. On the sectoral front, metal, telecommunication and consumer durables stocks lifted the market higher, while selling pressure was witnessed in IT and auto stocks. India can witness early arrival of the southwest monsoon this week. The India Meteorological Department, IMD, said conditions are becoming favourable for the advance of southwest monsoon, likely over parts of South Bay of Bengal, Andaman Sea and Andaman and Nicobar Islands towards the end of this week. According to the Met Department, the southwest monsoon normally sets in over Kerala around 1st of June every year. Meanwhile, several districts of Rajasthan are currently reeling under severe heat wave conditions, with border districts being most affected.
6: The Met Center has issued a red alert for severe heat wave conditions in the border districts of Barmer, Jaisalmer and Phalodi for today. In addition, an orange alert has been issued for 4 western districts, while a yellow alert has been sounded for 6 southwestern districts of the state. Not only the days, but the

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत साबित कर विश्वास मत हासिल कर लिया है। एडप्पाडी पलनीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। एक रिपोर्ट।
1: लोक निवास में आयोजित एक सादे समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने मुख्यमंत्री और आज शपथ लेने वाले दो मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले मुख्य सचिव शरद चौहान ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को पढ़कर सुनाया जिसमें मुख्यमंत्री और दो मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। समारोह के बाद श्री रंगासामी पुदुचेरी विधानसभा भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय गए और अपना कार्यभार संभाला। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पुदुचेरी को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में काम करेगी। श्री रंगासामी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी है। अन्य मंत्रियों, विभागों और विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सरकारी सचेतक की नियुक्ति को लेकर एनडीए में विचार विमर्श जारी है। बिबिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 18वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में शपथ ली जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रखी गई है। इसके बाद मंत्रिमंडल के 5 अन्य सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। वहीं नौदा सीट से विजयी आम जनता उन्नयन पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने भी शपथ ली। कबीर ने रजीनगर सीट से भी जीत हासिल की है। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस राय ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। राज्य में फालता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को पुनर्मतदान होना है। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। एक रिपोर्ट।
2: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से की गई 7 अपीलों के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
3: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री मंत्रियों अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है और सरकारी काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, अनावश्यक सोने की खरीद से बचने और घर से काम करने को बढ़ावा देने की अपील भी की। राज्य सरकार ने मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर बल दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। श्री यादव ने मंत्री परिषद के सदस्यों से राष्ट्रहित में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कारपूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो तथा बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल की बचत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जनता से वाहनों का अनावश्यक उपयोग न करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है और मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को वाहनों के उपयोग में संयम बरतने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट, डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष सीबीएसई की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकीय विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। सीबीएसई ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्री ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैककेना से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
4: श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लेख को साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशन और बेहतर रेलवे नेटवर्क से प्रगति के नए द्वार खुल रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परिवर्तन क्षेत्र के लोगों के लिए अनेक अवसर लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये लेख दर्शाता है कि पंजाब में किस प्रकार बदलाव आ रहा है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देश भर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर भी निर्णायक समाधान प्रदान करना है, जिसमें पेंशन भोगियों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता न पड़े, उनका समय और धन दोनों की बचत हो और उन्हें एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्राप्त हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रभदीत वांछित था। इस मामले में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए और कई सह आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम ने केवल नीति निर्माण के बजाय अंतर्राज्यीय समन्वय, सुगम सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों के सुदृढ़ कार्यान्वयन जैसे प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। वे प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी विषय पर आयोजित आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,821 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की वृद्धि देखने को मिली। सेंसेक्स 403 अंक बढ़कर 74,962 जबकि निफ्टी 146 अंक की वृद्धि के साथ 23,526 पर था। भारत में इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन जल्दी हो सकता है। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ जाएगा। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून आमतौर पर हर साल 1 जून के आसपास केरल में शुरू होता है। विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में भी

0: बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री फखरुद्दीन अली अहमद देश के पांचवें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक पदभार संभाला। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उधर बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग स्यू टोंग को सीधे सेट में 21-9 21-12 से सिर्फ 33 मिनट में हरा दिया। छठी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क के अमाली शुल से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन किदाम्बी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो केन यू को आसानी से 21-14 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका सामना चीनी ताइपे की सू ली योंग से होगा। हालांकि भारत के आयुष शेट्टी जापान के कोदाई नाराउका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया की सेंगमिन ली को 5-0 से हराकर लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। अन्य चार मुक्केबाजों को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने या चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे नेपाली कार्यक्रम।
2: हामी आकाशवाणीको नेपाली प्रसारण सेवाबाट बोलिरहेका छौं र प्रस्तुत छ केही लोक तथा आधुनिक गीतहरू। तौन श्रोता कार्यक्रमको पहिलो सांगीतिक प्रस्तुति स्वीकार्नुहोस् यमुना देवानको आवाजमा जहाँ शब्द अनि संगीत छ गणेश कुमार घिसिङको।

मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 4 बजे हैं। अब ये सभा यहीं समाप्त होती है। विविध भारती के कार्यक्रम जारी रहेंगे। शाम 5 बजे हम अपने सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार श्रोताओं, आज के मेहमान आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है यूनुस खान। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: राजेश रेड्डी एक जाने माने शायर जिनकी गजलों का हर शेर खरा होता है। वो लिखते हैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। राजेश रेड्डी अपने समय और समाज की आवाज भी बन जाते हैं। जुबां खामोश है डर बोलते हैं, अब इस बस्ती में खंजर बोलते हैं। राजेश रेड्डी की शायरी में जिंदगी का फलसफा छलक छलक पड़ता है। वो लिखते हैं, ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है। जिंदगी के डर, जिंदगी की उदासी और जुल्मतों को वो अपनी लेखनी में पिरो देते हैं। घर से निकले थे हौसला करके, लौट आए खुदा खुदा करके। जिंदगी की नाकामियां, उदासियां और विडंबनाएं भी राजेश रेड्डी की लेखनी में नजर आती हैं। जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। राजेश रेड्डी वो शायर हैं जिन्होंने बड़ी ही मशहूर गजल लिखी जिसे पंकज उधास ने गाया, यहां हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। कई वर्षों तक राजेश रेड्डी विविध भारती के हेड रहे। उन्होंने विविध भारती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जाने माने शायर और विविध भारती के हमारे पुराने साथी राजेश रेड्डी विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं।
2: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस और विविध भारती पूरे परिवार को। इस पूरे परिवार से बरसों बाद 13-14 साल बाद एक मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और विविध भारती के श्रोताओं से भी इस बहाने मिलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस विविध भारती परिवार को।
3: मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी वो जमाना लौट आया जब आप विविध भारती के मुखिया हुआ करते थे और ढेर सारे काम हम लोग मिलकर एक साथ किया करते थे।
2: जो वो बहुत प्यारा जमाना था और एकदम तुमसे मिलके और विविध भारती में आने के बाद वो जमाना फिर एकदम तरोताज़ा हो गया। और वो ऊर्जा, वो उत्साह, वो उमंग और श्रोताओं के साथ वो लगाव एकदम आंखों के सामने आ गया। जी खुश हुआ जी।
3: क्या बात है। अच्छा, आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की यात्रा की तरफ अग्रसर है। एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक सामाजिक योगदान रहा है, चेतना का योगदान रहा है आकाशवाणी का। तो 90 बरस की इस यात्रा के बारे में जानकर आपकी क्या कैफियत है और आप क्या कहना चाहते हैं?
2: इस यात्रा का तो कोई भारत में खास तौर से पूरे भारत को सांस्कृतिक रूप से और भाषा के तौर पर जोड़े रखने का इससे अच्छा माध्यम, क्योंकि बाकी जो संचार माध्यम है उनमें भाषा, अखबार की बात करें या किताबों की बात करें, टीवी तो खैर बहुत बाद में आया, तो ये आकाशवाणी था जो देश के कोने कोने में, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो मैदान हो, गांव हो, बसा हुआ शहर हो, सब जगह अगर पहुँचती तो आकाशवाणी की ही थी। और एक से दूसरे से जोड़ने का जो काम आकाशवाणी ने किया उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती कि कितने अच्छे ढंग से काम हुआ और हो रहा है।
3: बिल्कुल, अपने बचपन की तरफ अगर लौटें तो रेडियो को आप किस तरह से अपने बचपन में देखते हैं, किस तरह से प्लेस्ड था रेडियो और कितनी सुनहरी यादें आकाशवाणी से जुड़ी हैं?
2: यूनुस, कमाल की बात यह है कि अब सारा बचपन जो है वो उस जमाने में और आज के जमाने में तो सोशल मीडिया और जाने क्या कुछ हो गया है, हम लोगों का बचपन रेडियो सुन सुनकर ही बढ़ा। उसमें जो कुछ भी संस्कार आए, सुनने के भी, सीखने के भी, बोलने के भी, समझने के भी, ये सब संस्कार आकाशवाणी ने दिए। और जिसको सुनते सुनते कि ये आवाज़ें कानों को इतनी अच्छी लगती हैं, फिर फिल्म म्यूज़िक की तो मैं बाद में बात करूँगा, जिनको हम सुनते थे, चाहे रेडियो ड्रामा हो, अनाउंसर हो, अनाउंसर उस वक्त जो है वो पूरे शहर में एक सुपरस्टार हुआ करते थे, उनकी आवाज़ सुना, अनाउंसर, न्यूज़ रीडर्स, ये सब जो है। तो अगर किसी से कहा जाए कि आप रेडियो में काम करते, अच्छा अनाउंसर है आप, ये अनाउंसर का वो दर्जा था मतलब, और वो पॉपुलरिटी थी, तो मतलब आप स्टेशन डायरेक्टर हो तो कोई मतलब ही नहीं है, वो जानता ही नहीं आपको, लेकिन अगर अनाउंसर है आप, अच्छा, तो ये मतलब बड़ी पहचान हुआ करती थी कि आप रेडियो में अनाउंसर है। फिर रेडियो सिंगर होना
3: जी,
2: रेडियो आर्टिस्ट होना, ये बड़ी बातें थी। तो हम जब बचपन में सुना करते थे तो जयपुर में मेरा सारा बचपन बीता, तो ये सब हुआ। और फिर उसी केंद्र को सुनते सुनते युवाणी इंद्र शुरू हुआ था
3: जी जी।
2: तो जयपुर के जो पहले युवाणी वाला बैच था उसमें हमें सौभाग्य मिला कि हम पार्टिसिपेंट के तौर पर एक खेल के रूप में, एक ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में ऑडिशन दिया, क्लियर हुए और फिर उसका हिस्सा बने। तो वही युवाणी कार्यक्रम जिसकी शुरुआत ही हम कलाकार थे, पार्टिसिपेंट थे, फिर उसी को हमने एज अ प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव उसको प्रोग्राम को संभाला आकाशवाणी ज्वाइन करने के बाद। और फिर जो मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ ये कि आज मैं विविध भारती में बैठ के ये बात बड़े गर्व से कहना चाह रहा हूँ कि बचपन में फिल्म म्यूजिक और उस दरबाने का फिल्म म्यूजिक का तो कहना ही क्या
3: जी।
2: तो जिनको जिस चैनल को सुन सुन के वो संगीत सरिता, वो सारे कार्यक्रम और बड़ी बड़ी आवाजें, बड़े बड़े संगीतकार, फिल्म म्यूजिक, तो जिन जिन को सुन के हम लोग बड़े हुए विविध भारती चैनल को, मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि मैं उसी चैनल में आऊंगा
3: जी।
2: और न सिर्फ आऊंगा
3: बल्कि हेड करेंगे
2: उसका कार्यक्रम का, मतलब मुझे संचालन करने का मौका मिलेगा, उसको निर्धारित करने का मुझे मौका मिलेगा, प्लान करने का मौका मिलेगा और पूरे चैनल को मैं अपने ढंग से चला पाऊंगा, देख पाऊंगा। तो ये मेरा सौभाग्य था कि जिस चैनल को सुनते सुनते मैं बड़ा हुआ,
3: वाह वाह वाह,
2: उसी चैनल से मैं रिटायर हुआ और अच्छे ढंग से रिटायर हुआ। कि मेरी एक अच्छी टीम थी जिसमें यूनुस एक से एक टेबल, मैं क्या नाम लूँ, और पूरी अच्छी टीम, और उनकी वजह से हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम शुरू कर सके, चला सके और आज भी वो चैनल बहुत पॉपुलर है दुनिया भर का।
3: क्या बात है, मुझे याद आता है आपके साथ काम करने का वो पूरा दौर। कितनी प्यारी आपने बात कही है, युवाणी से आपकी शुरुआत हुई और जयपुर के पहले युवाणी के बैच में आप रहे हैं। न जाने कितने लोगों की यादें ताज़ा हो गई होंगी, मेरी अपनी खुद की याद इसलिए ताज़ा हो गई कि मैंने भी अपनी रेडियो की शुरुआत युवाणी से ही की है, तो वो जो जहन में युवाणी की सिग्नेचर ट्यून बजने लगी जिस तरह की वो होती थी। पर क्या ये रेडियो तक का रास्ता आसान था या वो रास्ता बहुत सारे डिबेट्स और कल्चरल एक्टिविटीज से होता हुआ पहुँचा है?
2: हाँ, नेचुरली ये आप एकदम अचानक आकाशवाणी में नहीं जा सकते, आपको एक सांस्कृतिक लिटरेरी बैकग्राउंड तो आप में होना ही पड़ेगा,
3: बिल्कुल,
2: उसके बगैर आप आकाशवाणी में एंटर नहीं कर सकते, कम से कम आर्टिस्ट के तौर पर या पार्टिसिपेंट के तौर पर। और उस वक्त तो शर्तें और भी ज़्यादा, वो आकाशवाणी का एक तरह से जयपुर का आकाशवाणी ड्रामे के मामले में नंबर वन था।
3: बिल्कुल बिल्कुल, बड़े दिग्गज,
2: बड़े दिग्गज लोग, नंदलाल शर्मा जी, फिर ओम शिवपुरी, ये सब लोग वहाँ पे,
3: गंगा प्रसाद जी,
2: हाँ हाँ, तो ये सब जो उसका मेयार था वो ऐसा था कि पूछे मत। जब हम आकाशवाणी में एंटर, उससे पहले हम लोग रंगमंच, कवि सम्मेलन, साहित्य, ये सब कर चुके थे
3: जी,
2: और
3: जी,
2: कर रहे थे, है ना। तो उसके साथ ये हम ऑडिशन देने गए, उत्तर से सेलेक्ट हुए और पार्टिसिपेंट के तौर पे उसमें हिस्सा लिया। तो ये सफ़र जो है आकाशवाणी का सफ़र, पहले मेरा अपना रचनात्मक सफ़र शुरू हुआ और वो फिर आकाशवाणी के जरिए आगे बढ़ा। ये
3: बहुत ही शानदार बात है। जयपुर में जब आप पढ़ रहे थे तो आपने कहा कि रंगमंच और बाकी कल्चरल एक्टिविटीज़ में आप शामिल थे, तो रंगमंच की अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में बताइए।
2: रंगमंच का यूँ था कि मैं थोड़ा अपना पारिवारिक पहले बैकग्राउंड बताऊँ कि मैं, हमारे परिवार में संगीत का परिवार रहा है, हमारे पिताजी बाकायदा गायक रहे और आकाशवाणी जयपुर के उस वक्त ए ग्रेड आर्टिस्ट में से वो सुगम संगीत के गीत, गज़ल, ये सब गाना उनका रहा। और न सिर्फ वो गायक थे बल्कि उन्होंने जयपुर में एक राष्ट्रीय तरुण कलाकार परिषद और श्रुति मंडल, ये दो सांस्कृतिक, मतलब कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कौशल भार्गव साहब के साथ मिलकर खड़ी की, जिसने साल भर में बड़े बड़े कंसर्ट, म्यूजिकल कंसर्ट और बड़े बड़े उस्ताद, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े गुरु, तो इन सबको हमने बचपन से उनको आमने सामने बैठ के सुना, उनके आसपास घूमे, कई लोग हमारे घर भी आए, तो वो माहौल जो था बचपन का, वो सांस्कृतिक माहौल हमें बचपन से मिला।
3: हम यहाँ एक पल के लिए रुकना चाहता हूँ कि जिस किसी को भी आपके बारे में बताएं तो लोग सोचते हैं कि आपका ताल्लुक तो कहीं आंध्रा से होना चाहिए, तो जयपुर से होते हुए लोगों को थोड़ा ताज्जुब होता है इसके बारे में।
2: बिल्कुल सही है, वो नाम से भी बिल्कुल है कि, और ये सही है कि हम लोग मूल रूप से आंध्रा के ही हैं, तेलंगाना के हैं, हमारे पिताजी माताजी सब वहीं के रहे, लेकिन मेरा ननिहाल नागपुर और मेरी पिताजी जो पोस्टल टेलीग्राफ्स में डिपार्टमेंट में काम करते थे उनकी पहली पोस्टिंग भी नागपुर में ही थी, तो मेरा जन्म भी नागपुर में हुआ। लेकिन आंध्रा में हमारा संपर्क लगातार, हम लोग नहीं रहे कभी भी, माताजी पिताजी कभी रहे थे, हम लोग बचपन में कभी शादी ब्याह में गए, साल में एक आध बार घूमने गए, तो आंध्रा उससे पहले हमारे पिताजी माताजी वहाँ से निकल चुके थे नागपुर, और नागपुर के बाद एक पूरा डिपार्टमेंट पिताजी के सेक्शन का वो जयपुर शिफ्ट हुआ तो पिताजी जयपुर शिफ्ट हुए, तो हम बहुत बचपन में ही हम बच्चे लोग जो थे वो जयपुर शिफ्ट हो गए उनके साथ, और फिर मेरी सारी परवरिश पढ़ाई लिखाई सब जयपुर हुई। तो ये है आंध्रा और जयपुर का
3: सेतु। बिल्कुल, ये मुझे लगा कि ये जरूर इस बात के बारे में बात कर लेनी चाहिए। तो गुलाबी नगरी एक तरह से आपके बनने का एक बुनियाद का शहर रहा है, और आज भी बहुत सशक्त परंपरा रंगमंच और संगीत की जयपुर में रही है। तो आपके जमाने में वो कौन से कलाकार थे जो रंगमंच में बहुत जबरदस्त तरीके से सक्रिय थे? मुझे लगता है कि ओम शिवपुरी वाला दौर था।
2: ओम शिवपुरी उस वक्त एनएसजी जा चुके थे।
3: ओके।
2: हाँ, और हम उस वक्त छोटे थे और हम लोग रंगमंच में एक्टिव हुए हुए थे, देख ही रहे थे, सुन ही रहे थे, और एक सीखने का प्रोसेस जारी था
3: जी।
2: तो जो हमारी बचपन की यादें हैं, मतलब शुरुआती दिनों की यादें हैं, उस वक्त ओम शिवपुरी और सुधा शिवपुरी का तुगलक,
3: क्या बात
2: है, इब्राहिम अलकाजी का डायरेक्ट किया हुआ, वो क्लासिक प्ले था, क्लासिक प्ले। और इन दोनों का जो रोल था, मतलब ये मैं इन्हें कह सकता हूँ कि ये ओम शिवपुरी, उनको फिल्मों में वो जगह नहीं मिली, उनको वो क्रेडिट नहीं मिला, उनको वो काम नहीं मिला जिसके हकदार थे, वो दिलीप कुमार थे। वो
3: बिल्कुल
2: रंगमंच के दिलीप कुमार थे, वो क्रेज था उनका, और वो जो अदायगी, उनका प्रेजेंटेशन, उनकी डायलॉग डिलीवरी सब कुछ। तो बचपन से ये ओम शिवपुरी, सिद्धार्थ शिवपुरी, मोहन महर्षि, ये सब लोग, और दिल्ली से प्लेस बराबर आते रहते थे, हम लोग देखते थे अंधायुग
3: जी,
2: ये सब देखे हमने, और एवं इंद्रजीत, ये सब नाटक जो बादल सरकार के सारे। तो रंगमंच की एक अच्छी खासी परंपरा जिसमें जयपुर के लोग तो करते ही थे, दिल्ली से भी बड़े बड़े थिएटर ग्रुप दिल्ली और कलकत्ता के लोग आते थे, थिएटर फेस्टिवल भी होते थे और क्लासिकल म्यूजिक कंसर्ट्स भी होते थे।
3: बिल्कुल, आज जयरंगम जैसी चीजें चल रही हैं, तो कैसा लगता है आपको?
2: बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं गया हूँ उनके एक फेस्टिवल में, और जहाँ से मकरंद देशपांडे वगैरह हर साल जाते हैं वहाँ पे टीम लेकर के और प्लेज लेके, तो वो एक तरह से थिएटर का माहौल जो है वो रिवाइव कर रहे हैं, और अच्छी ऑडियंस भी आती है वहाँ पे, और अच्छा चल रहा है मुझे
3: जी। और बातें करेंगे आपके बचपन की, हम यहीं इसी वक्त में थोड़ा ठहरना चाहेंगे। मुझे लगता है कि जिस दौर की हम बात करें, उस दौर की याद के नाम एक गाना होना चाहिए, तो हाय रे वो दिन क्यों ना आए।
2: हाँ,
3: अनुराधा,
2: बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा
3: ये गाना, सुन
2: मेरा पसंदीदा गाना है।
3: बिल्कुल।

0: हमने ये गाना सुना, हाय रे वो दिन क्यों ना आए, शैलेंद्र का लिखा, पंडित रविशंकर का स्वरबद्ध किया ये गाना, अनुराधा फिल्म का, ऋषिकेश मुखर्जी की ये फिल्म थी। उस दौर में फिल्म म्यूजिक और फिल्मों से किस तरह का ताल्लुक था? जयपुर में फिल्में देखने की और टॉकीजों की भी एक बड़ी शानदार सी परंपरा रही है।
1: जयपुर में एक से एक थिएटर थे
0: जी,
1: और उस वक्त ये राज मंदिर, कभी नाम सुना हो?
0: बिल्कुल
1: हाँ। तो वो राज मंदिर मेरे ख्याल से भारत का अकेला ऐसा थिएटर था जो बिल्कुल राज मंदिर, और उसमें राज वाला वो भी था
0: जी,
1: शाही अंदाज उसका, तो वो लोग देखने आते थे। फिल्म तो बाद में, थिएटर पहले देखते
0: हाँ,
1: थे
0: वो टूरिस्ट मैप पर था
1: वो थिएटर का अपना क्रेज था उसका
0: जी।
1: तो राज मंदिर, जैम, पोलो विक्ट्री, ये सब उस वक्त फिल्में भी, मतलब आज कहीं नहीं इतने करोड़ उतने करोड़, मतलब 100 दिन चली, ये बड़ी बात होती थी।
0: बिल्कुल
1: है ना, इसने 100 दिन पूरे किए हैं। तो उस वक्त वो जमाना था जब हम लोग फिल्में देखते थे, तो ये सब बड़े बड़े थिएटर थे। और फिल्मों का तो खैर दौर ही अलग था, हम कभी कभी स्कूल से भी भाग के देखा करते थे ये सब भी होता था
0: जी, ये तो हुआ है, लेकिन स्कूल से भाग के देखना भी हुआ
1: उपकार जैसी फिल्म हमने देखी थी,
0: वाह,
1: और कई फिल्में थी, और लंबी लंबी लाइनें
0: जी,
1: और आपको टिकट मिल जाए बड़ी बात, तो ये वो दौर देखा है हमने, जबकि थिएटर में जाकर फिल्म देखना और स्कूल से भाग के भी देखना और टिकट के लिए धक्का मुक्की होना, ये सब दौर देखा है। और फिल्म म्यूजिक का तो ये था कि सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट वही था, घर में रेडियो चल रहा है, विविध भारती चल रहा है, फिल्मी गाने कहीं लता जी हैं, कहीं आशा जी हैं, कहीं रफी जी हैं, कहीं मुकेश हैं, कहीं मन्ना डे हैं, तो ये सब चलता था। और हमारे क्योंकि संस्कार में म्यूजिक भी था और म्यूजिक ही था
0: जी,
1: मैं अपने घर में नहाने में सबसे ज्यादा टाइम लेता था।
0: अच्छा, क्योंकि गाना चलता था?
1: गाना चलता नहीं था
0: जी,
1: मैं गाता रहता था,
0: खुद गाते थे
1: तो वो घर वाले भी बार बार बोलते, तो मुझे फिल्मी गानों का शौक
0: जी,
1: गुनगुनाने का शौक वो बचपन से था। फिर वो संस्कार में ऐसा है कि फिर उस पर धुने भी बनाने लगा और बाकायदा परफॉर्म भी करने लगा, वही का अलग दौर। फिल्मी गानों का ये असर फिल्म म्यूजिक का मेरी जिंदगी बहुत पड़ा रहा।
0: क्या बात है, और तब से ही ये गायकी वाला मामला आपका?
1: हाँ, मेरे ख्याल गायकी तो हमारे परिवार में, पिताजी बड़े भाई सब आज भी गायक हैं, वो सिखाते भी हैं, तो संगीत और गायकी का एक वो जो अंग है वो हमारे संस्कार में है। लिखना पढ़ना साहित्य में मैं बाद में आया उस तरह से
0: जी। रंगमंच वाली आपकी एक्टिविटीज में वो कौन से नाटक याद आते हैं जिनका यहाँ जिक्र हो जाए?
1: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया
0: जी,
1: वो एक लड़कपन का दौर था हमारा, मतलब बीए का दौर ही था। हम उम्र लोगों ने हमने एक टीम बनाई और मैंने उसका नाम दिया ग्रुप का विकल्प
0: जी,
1: वो अभी भी चल रहा है, वो हमारे जो दोस्त है वो चला रहा है, हरि नारायण उसका नाम है। तो हम 4 लोगों ने मिलकर एक विकल्प नाम की संस्था बनाई और उसके साथ मैं लिखता था और डायरेक्ट करता था, और एक आध कभी कभी छोटा मोटा रोल जरूरत पड़ी तो कर लिया। तो उससे हमने एकांकी से शुरुआत की, और उस वक्त मैं ज़्यादातर राजनीतिक व्यंग और पॉलिटिकल सटायर और ह्यूमर यही मेरा विषय रहा, तो उस पर ज़्यादा काम हुआ और उस तरह के नाटक मैंने लिखे भी। नाम से ही समझ जाओगे कि होशियार समाजवाद आ रहा है,
0: वाह,
1: नेता कुर्सी प्रसाद सिंह,
0: क्या बात है।
1: और एक नाटक जिसको बहुत ज़्यादा, जिसके हमने शोज किए, भूमिका, जिसको उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी का ड्रामा कॉम्पिटिशन में बेस्ट ड्रामा का अवार्ड भी मिला। और एक नाटक मराठी, क्योंकि हम जिस कॉलोनी में रहते थे तो बहुभाषी कॉलोनी थी, मतलब एक छोटा भारत था वो, उसमें गुजराती, मराठी, सिंधी, पंजाबी, सिख, मुस्लिम, सब, मतलब कोई भेदभाव ही नहीं था, मतलब आज इस घर में घुस गए, कल उस घर में घुस गए, सब मिलजुल के खेल रहे हैं, होली हो, ईद हो और गणेशोत्सव हो। तो गणेशोत्सव यहाँ के बाद कई लोगों को पता लगता है गणेशोत्सव क्या है, ये हमने जयपुर में देख चुके हैं,
0: वाह वाह।
1: तो उनकी एक्टिविटीज में शामिल होना, सब कुछ करना, तो मराठी लोगों के साथ उठना बैठना बचपन से रहा, तो मराठी नाटकों का मैंने अनुवाद भी किया।
0: गजब।
1: तो एक नाटक था शाम फड़के का, कॉमेडी, काका की शाचा, जिस पर मराठी में फिल्म भी बनी, तो उसका मैंने कौआ चले हंस की चाल,
0: क्या बात है,
1: इस नाम से किया। और वो जयपुर का पहला नाटक था जो टिकटेड हाउसफुल रहा, रविंद्र मंच पर टिकटेड हाउसफुल, वो पहला नाटक था जो विकल्प ने किया, हमने किया और खूब प्रसन्न किया और उसके बहुत शोज हुए।
0: हम जब असरानी साहब के बारे में सुनते हैं तो वो भी काफी रंगमंच पर सक्रिय थे और जयपुर में थे, जयपुर की एक बड़ी शख्सियत रहे, कभी उनसे आमना सामना हुआ उस दौर?
1: नहीं, मेरा ये रहा कि वो असरानी साहब से बहुत अरसे बाद एक किसी फंक्शन में यहाँ पे मिलना हुआ, अच्छा। लेकिन उस दौर में नहीं, वो जयपुर से जा चुके थे
0: उस दौर में जब आप
1: तो वो तो हमसे काफी से तो, लेकिन उनकी एमआर रोड से पांच बत्ती के पास में ही सब बताते थे कि ये असरानी साहब के भाई की दुकान है
0: जी।
1: वो उनकी एक कपड़ों की दुकान थी
0: बिल्कुल।
1: फिर हमारे जो पिंचू कपूर, आपने नाम सुना होगा
0: जी जी बिल्कुल,
1: पिंचू कपूर, ओम शिवपुरी, ये सब ये हमारे सीनियर लोग मतलब जो निकल चुके थे हमारे जमाने से पहले ही।
0: हाँ
1: तो लेकिन इनको सुन सुन के मतलब ये हमारे लिए वो स्टार थे कि जयपुर के ये लोग हैं जिन्होंने नाम कमाया, बड़े लोग थे।
0: क्या प्यारी बात है। अच्छा, जब आप आकाशवाणी से जुड़े और युववाणी करने लगे उस समय भी तो जयपुर आकाशवाणी जो है वो एक बहुत ही बुलंद संगठन था और बहुत बड़े बड़े लोग आकाशवाणी से जुड़े थे। किन हस्तियों के सानिध्य में सीखने को मिला आपको?
1: बहुत बड़े नाम थे और बहुत जयपुर, मैंने कहा ना जब नाटक में तो नंबर वन हुआ करता था, हवा महल में मैक्सिमम उसके प्लेस हुआ करते थे और उसके अलावा वहाँ पे जो आधा आधा घंटे के या एक एक घंटे के नाटक हुआ करते थे वो कमाल थे। मतलब उसमें नंदलाल शर्मा, आपके नाम सुना होगा
0: बिल्कुल,
1: गणपत लाल डांगी,
0: हाँ,
1: जिनका हवा महल में
0: काफी आज भी हवा महल में उनके नाटक ब्रॉडकास्ट होते हैं,
1: रंजना चौधरी, तो ये एक से एक नाम थे और एक से एक आर्टिस्ट थे और जिनके प्लेज लोग बहुत पसंद करते और इंतजार करते थे ये।
0: जी, और आकाशवाणी जयपुर जो है वो जयपुर अजमेर था तब भी।
1: हाँ, क्योंकि अजमेर इंडिपेंडेंट स्टेशन नहीं था
0: जी,
1: वो सिर्फ रिले सेंटर था, तो जयपुर अजमेर ही बोला जाता था उसको।
0: अच्छा।
1: और आज भी शायद वही होगा कि अजमेर सिर्फ रिले सेंटर है, वहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग या उस तरह का इंडिपेंडेंट ब्रॉडकास्ट नहीं होता है, अजमेर को लिंक किया हुआ है यह है।
0: जी, तो आकाशवाणी में नौकरी का रास्ता किस तरह से खुला?
1: हाँ, मैं उस वक्त एक और पहलू भी था मेरा कि मैं एमए मैंने किया ही किया था
0: जी,
1: और मैं उस वक्त ये राजस्थान पत्रिका
0: बहुत ही मशहूर
1: हिंदुस्तान का, उस वक्त राजस्थान का नंबर वन अखबार था हिंदी का, और उसका एक संडे एडिशन शुरू हुआ था
0: जी,
1: वो राजस्थान में पहली बार ही हुआ था, पता नहीं दिल्ली और जगह होगा, उसका नाम ही इतवारी पत्रिका था, हर इतवार को आता था और उसका नाम रखा था इतवारी पत्रिका। कर्पूर चंद कुलेश साहब राजस्थान पत्रिका के मालिक भी थे और बड़े पत्रकार थे, तो उन्होंने शुरू किया था, उसमें उन्होंने श्री गोपाल पुरोहित उसके संपादक थे और मैं उनके साथ सहायक संपादक के तौर पर लगा। 3 साल मैंने वहाँ काम किया और वो हर इतवार उसमें कॉलम भी लिखता था, इंटरव्यू भी करता था, ये सब होता रहा। उसी दौरान ये आकाशवाणी की ये वैकेंसी निकली थी यूपीएससी की, तो मैंने भी अप्लाई कर दिया और संयोग से सेलेक्ट हुआ, यूपीएससी में इंटरव्यू दिया, सब हो गया और पहली पोस्टिंग मेरी आई जलंधर।
0: अच्छा,
1: ये 1980 की बात है।
0: क्या बात है,
1: 19 नवंबर, हाँ 1980 में, तो पहली पोस्टिंग मेरी जलंधर हुई, मैंने वहाँ ज्वाइन किया, 1 साल वहाँ काम किया।
0: तो वहां तो पता चला था कि ये वो स्टेशन है जहाँ जगजीत सिंह गाया करते थे।
1: सुदर्शन फाकिर
0: जी,
1: इन लोगों के नाम से वो
0: ऐतिहासिक स्टेशन है जलंधर,
1: और वहाँ पे पंजाबी के बड़े बड़े लोग थे, मतलब
0: बिल्कुल
1: पंजाबी राइटर्स, सोहन सिंह मीशा
0: जी,
1: और मतलब ऐसे नाम जो बाद में साहित्य अकेडमी अवार्ड जिनको मिला, सुरजीत पात्र, ये सब लोग वहाँ पे मतलब एक्टिव लोग थे, पार्टिसिपेंट के तौर पर आते थे, सुरजीत पात्र लुधियाना से, सब कुछ। तो जलंधर भी उस वक्त पंजाब का जयपुर था एक तरह से,
0: बिल्कुल
1: पंजाब का जयपुर था वो, वहाँ बड़े अच्छे नाटक, बड़े अच्छे आर्टिस्ट और बहुत एक्टिव शहर था
0: जी।
1: तो मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा और मेरे जो सीनियर थे वो सारे पंजाबी लोग थे, मतलब हिंदी वाला मैं अकेला था वहाँ पे, हिंदी का प्रोग्राम मैं ही संभालता था वहाँ पे, हिंदी का पैक्स था वहाँ पे मैं, लेकिन एक से प्रोग्राम, और पंजाबी ऐसी भाषा थी कि जो समझने में उतनी मुश्किल नहीं थी,
0: थी, थी
1: तो मेरा अच्छा वक्त गुजरा जी।
0: कितने वक्त तक आप जलंधर में रहे?
1: 1 साल
0: जी। और किन हस्तियों से आपका बहुत करीबी ताल्लुक रहा लिटरेचर की?
1: मैंने बताया ना सोहन सिंह मिश्रा
0: जी,
1: और फिर उर्दू के भी कई लोग थे वहाँ पे
0: जी,
1: जो सुरजीत पात्र, वो उस जमाने में उनसे मिलना हो गया था, जो बाद में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिले हुए, सब
0: बिल्कुल
1: मिश्रा साहब को मिला।
0: तब तक आपका लिखना शुरू हो चुका था?
1: हाँ, लिखना तो मेरा जयपुर में शुरू हो चुका था
0: जी,
1: लेकिन मैं उस वक्त मैं गीत लिखता था, शुरुआत मेरी मंच से हुई, गीत लिखता भी था, छपते भी थे सब कुछ, और एक गीतकार के तौर पर मैं राजस्थान में जगह जगह कवि सम्मेलनों में भी जाया करता था। उदयपुर में जब कवि सम्मेलन हुआ तो पहला जो मेरा बड़ा ब्रेक था या पहचान या आत्मविश्वास जिसे मिला, तो नीरज जी का तो बोलबाला था उस वक्त, गीतों के राजकुमार,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उनके नाम से पूरा क्राउड इकट्ठा होता था, हजारों लोग इकट्ठा हो जाते थे,
0: सुबह तो, तक लोग सुनते हाँ, थे और सबसे तो, लास्ट में उन्हें पढ़वाया जाता
1: जी, और मेरा वो शुरुआती दौर था
0: जी,
1: तो नीरज जी थे वहाँ पे, वो मुख्य कवि तो थे ही थे, तो मैंने जब वो गीत पढ़ा अपना, तो ये नीरज जी ने आशीर्वाद देने का उनका तरीका था, उन्होंने बहुत प्यार दिया पहचान, और अपने गले की माला मेरे गले में जब मैं पढ़ रहा हूँ तभी आके डाल दी।
0: अरे
1: तो ये एक आशीर्वाद था जो मुझे
0: बात है। क्या वो गीत याद है आपको?
1: हाँ जो वो मेरे काफी पढ़ाई दौड़दार
0: जी
1: तरन्नुम में सुनाऊं उसको?
0: जरूर सर, जरूर, बिल्कुल स्वागत है।
1: जिंदगी की बस्ती में

0: नवगीत का शुरू हुआ था, तो ये
1: जी
0: अंत देख, बात क्या करे कोई हाफती हवाओं
1: हाफती हवाओं
0: से,
1: से क्या बात है।
0: बात

0: कप्तल कटेगी जिंदगी दुआओं से, दर्द के समंदर में कामना ने ठेला है,
1: कामना ने ठेला है। क्या बात है, सुंदर।

0: क्या बात है, क्या बात है। जाहिर है कि इस रचना से नीरज जी की प्रशंसा तो मिलनी ही थी, और ये आपके लिए बहुत यादगार लम्हा रहा होगा।
1: वो बिल्कुल, और एकदम शुरुआती दौर में इतने बड़े हस्ती का आशीर्वाद मिलना और प्रोत्साहन मिलना, तो वो एकदम यादगार और बहुत आत्मविश्वास देने वाला लम्हा था, एक सफर को आगे बढ़ाने वाला।
0: जब आप घर लौटे इस कवि सम्मेलन के बाद, तो क्या पिताजी की कैफियत थी, उन्हें क्या बताया?
1: वो बहुत खुश हुए, लेकिन मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे पिताजी, मैंने कहा वो गायक थे और संस्था चलाते सब कुछ, लेकिन एक अलग तरह के पिता थे वो, बिल्कुल बहुत कम बोलना, मतलब उनसे हमारा संवाद जो है ना
0: मिनिमम।
1: हमारे नाटक भी देखते थे, आते थे देखते थे, लोग खुश हो रहे हैं तालियां बजा रहे हैं या सब कुछ, या कभी सल्लम ने भी आते थे कभी, तो वो आके देखा और चले आए घर पे। अखबार में भी कॉलम लिखता था, हर वक्त संडे आता था, पढ़ते थे सब कुछ था, लेकिन वो खुद अपनी तरफ से कभी, वो दौर था तो हो सकता है कि आज तो अगर हम अपने बच्चों से दोस्त की तरह से बात करते हैं, पिताजी का एक डिस्टेंस हमेशा रखते थे।
0: तो आपके जहन में हमेशा ये सवाल रहता होगा कि अच्छा लगा है कि नहीं, क्या चल रहा है मन में,
1: बस वो उनको सूचना जरूर हो। और हमारे संवाद माँ से होता था
0: जी,
1: उनसे खूब मतलब हंसी मजाक बोलना चलना साहब, नाराजगी या गुस्सा या सब कुछ पिताजी से घर में जो था, लेकिन वो खुश तो होते थे, बहुत खुश होते थे, लेकिन वो डायरेक्ट इस तरह से बोलते नहीं थे।
0: वो दौर भी ऐसा था कि पिताओं से संवाद बहुत कम हुआ करता था। माँ की स्मृतियां हमारे साथ बांटी है कि उनसे क्या कुछ आपने सीखा है, आपकी शख्सियत में उनका क्या योगदान है, और आपकी कामयाबी तो उन्हें कितना खुशी दी।
1: बिल्कुल, ये पारिवारिक रूप से अगर देखें तो पिता ने माहौल दिया
0: जी,
1: पिता ने माहौल दिया, मतलब अगर मैं कलाकार बना हूँ या कलाकार कला के क्षेत्र में हूँ तो वो पिता के संस्कार है, पिता ने जो माहौल दिया बचपन से। अगर आप देखें तो कुमार गंधर, भीमसेन जोशी, रविशंकर, बुद्धदेव मुखर्जी, राजन साजन मिश्र, अमजद अली खां,
0: बड़ा
1: कोई नाम लीजिए, कोई नाम लीजिए जिनको हमने बचपन में आगे बैठे
0: सामने देखा,
1: आमने सामने देखा, उनके आसपास घूमे बैठे, गिरिजा देवी, बेगम अख्तर,
0: बाप रे
1: कोई नाम लीजिए, तो वो सब हमने देखा है और उनके साथ उठे बैठे कई लोग हमारे घर आए है ना, तो ये माहौल पिताजी ने दिया। उसके बगैर हमारे संभव नहीं था कि हम उस दुनिया को देख सकते, इन बड़े लोगों को देख सकते, इन हस्तियों, तो वो उनको सुन सुन के भी संस्कार हुए। संगीत जो है वो इस तरह से भी संस्कार में आता है, एक तो बाकायदा आप गुरु से सीखते हैं और एक सुन के भी सीखते हैं, तो वो हमने उस तरह से सीखा। तो पिताजी ने माहौल दिया, संस्कार दिया, माँ ने जो है वो एक पूरा प्रोटेक्शन कहना चाहिए। मैं बात करूँ तो हमारी कॉलोनी में जो मैंने कहा ना, वो एक मिनी भारत था वो
0: जी जी,
1: लेकिन मेरा बचपन बिल्कुल विपरीत था। मैं अपनी कॉलोनी के चंद शैतान बच्चों में से एक था।
0: ये तो नया खुलासा है हमारे लिए।
1: मतलब खेलना कूदना ये तो सही है ही, सभी बच्चे करते सब कुछ, लेकिन छेड़ने की आदत जो है ना, किसी के साथ भी मजाक कर लेना, किसी को
0: तंग कर लेना,
1: तंग करना या मस्ती करना
0: जी,
1: तो कहीं ना कहीं एक या दूसरे दिन में कोई
0: शिकायत आती थी,
1: शिकायत मेरे पास आती थी कि आज इसने ये क्या, और मेरा बचपन का नाम छोटू था।
0: अच्छा, क्योंकि आप छोटे थे इसलिए।
1: हाँ, मेरे बड़े भाई साहब थे, मैं नंबर दो था
0: जी,
1: तो पहले नाम ऐसे ही रखे जा रहे घर में,
0: बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल।
1: बड़े भाई साहब श्याम और मेरा नाम छोटू
0: जी,
1: तो वो छोटू की शिकायत जो है
0: रोज आ रही है,
1: मतलब हर दूसरे दिन या हर दिन जो है वो, आज इसने ये किया, आज इसने वो किया, ये सब चलता रहता था। तो वो माँ थी
0: प्रोटेक्शन
1: संभालती थी, और कभी कभी वो पिता तक पहुंच जाती थी बात, और पिताजी जिस ढंग से पेश आते थे वो तो वो मैं
0: उसका जिक्र ना ही करें
1: तो अच्छा। तो ये एक अच्छा बचपन बीता, और माँ ने जो है वो, क्योंकि पिताजी का यही था कि दिन में नौकरी करना, आना, फ्रेश होना, चाय पीना और कपड़े वपड़े बदल के सीधा रविंद्र मंच।
0: अरे
1: घर
0: तो
1: में वो पारिवारिक रिश्ते के पिता नहीं थे वो,
0: हाँ, वो अपनी दुनिया उनकी,
1: वो अपनी दुनिया थी उनकी, बस आए सुबह ऑफिस चले गए, शाम को आए और फ्रेश हुए, चाय वाय पी और फिर सीधा रविंद्र मंच, फिर वहां से लौटे, खाना वाना खाए, सो गए।
0: हाँ।
1: तो बच्चों से भी उनका उस तरह संवाद नहीं होता था, तो वो माँ थी जिनसे मैंने कहा ना कि वो तो परिवार में पारिवारिक माहौल का जो और पारिवारिक मजबूती जो है, खुलापन भी, छूट भी, वो सब माँ से मिली।
0: क्या बात है, और क्या आपकी रचनाओं में माँ झलकती हैं?
1: उस तरह से तो डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं जैसा बचपन हमने गुजरा, तो वो एक लोअर मिडिल क्लास का जो मिडिल क्लास मतलब सरकारी कर्मचारी जो है,
0: बिल्कुल,
1: उनकी कॉलोनी थी, तो हम उसी में, तो लेकिन बहुत खुशहाल, मतलब मैं अपने आप को अगर आप देखूं तो हो सकता है आर्थिक रूप से हम लोग बहुत लोअर मिडिल क्लास ही कहना चाहिए उस वक्त, लेकिन एक बहुत ही सांस्कृतिक रूप से समृद्ध खुशहाल परिवार थे और मुझे अपने बचपन की बहुत अच्छी यादें हैं, मैं खुशहाल हूँ जी।
0: क्या बात है, इतनी सुंदर बातें हो रही हैं और इतनी जज्बाती बातें, तो मुझे लगता है कि यहाँ आशीर्वाद फिल्म का गाना सुनते हैं, एकता बचपन
1: क्योंकि
0: ये जो बचपन के जो दिन हैं उनके नाम ये गाना है।
1: जी।

0: बचपन की बातें हमने की रेड्डी साहब, और ये वो बातें हैं जो इसलिए जरूरी थी कि वो कौन से तत्व थे जिन्होंने आपको बनाया। लेखन की दुनिया में उस समय में जब आप धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे, तो आपके आदर्श कौन थे और क्या कोई था जो आपकी रचनाओं को सुधारे या जो आपको मार्गदर्शन दे वहाँ पर जयपुर में?
1: जी, जयपुर में जैसे मैंने कहा कि मैं गीत से शुरू हुआ था, तो मेरे दो बड़े लोग थे जो मेरे काव्य गुरु भी मैं जिन्हें मान सकता था और जो मुझे मार्गदर्शन भी देते थे, आशीर्वाद भी देते थे। एक तो तारा प्रकाश जोशी
0: जी,
1: और एक हरी राम आचार्य। हरी राम आचार्य फिल्मों में भी लिखा।
0: जी जी, जी।
1: मेहंदी रंग लाई,
0: डांसिंग जी के साथ उनके गाने हैं बहुत सारी फिल्मों के।
1: और तारा प्रकाश जोशी जी आईएएस ऑफिसर थे।
0: अच्छा।
1: लेकिन गीत में उनका कोई जवाब नहीं था, मतलब इतने बड़े गीतकार थे वो राजस्थान के। मतलब एक पंक्ति यूनुस में बताऊंगा उनकी, मेरे गुरु तो वह एक तरह से, मेरा वेतन ऐसे रानी, मेरा वेतन ऐसे रानी जैसे गर्म तवे पर पानी।
0: ओ हो हो हो, क्या अद्भुत है। हा? क्या अद्भुत है,
1: जैसे गर्म तवे पर पानी,
0: क्या बात है।
1: ऐसी पंक्ति मतलब मैंने नहीं सुनी।
0: क्या बात है, क्या बात
1: नहीं सुनी। तो ऐसे लोग मेरे आदर्श थे, मेरे गुरु थे, जिनके साथ बैठता था।
0: गजब, ये जीवन में कभी भूलेगा नहीं, इतनी अद्भुत है।
1: मेरा वेतन ऐसे रानी जैसे गर्म तवे पर पानी,
0: तुरंत खत्म। वाह वाह।
1: और हरी राम आचार्य जी के तो
0: बिल्कुल मेरी भी मुलाकात रही है।
1: तो ये लोग थे जिनसे सीखा। लेकिन मेरे साथ अच्छी बात रही आप संस्कारों में, जिसने मुझे आगे थोड़ा गंभीर लेखन की तरफ रखा, सिर्फ मंची ही नहीं बनाया, वो ये कि मैं बाकी विधाएं भी पढ़ता था। मेरे निर्मल वर्मा, भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, ये सब मतलब फिक्शन भी, उपन्यास भी, आलोचना भी, नवर सिंह जी भी, मतलब हिंदी में तो एम ए किया था, तो हिंदी साहित्य से बराबर जुड़ाव। और फिर बचपन से ही वो हमारे कॉलोनी में, हमारा अखबार परिवार में सिर्फ अखबार था, मतलब किताबें विताबों को वो नहीं था उतना। तो एक कॉलोनी के आगे डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी हुआ करती थी,
0: उसमें
1: तो सारे अखबार आते थे, मतलब अखबार तो थे ही थे,
0: पत्रिकाएं
1: भी, पत्रिकाएं भी, सरयू, दिनमान, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बिनी। तो ये मैं इन सबको चार्ट जाया करता था वहां जाकर के, घंटों घंटों वहीं बैठता था। तो और बाकी लोग जो आके चले गए, और मैं अपने अभी इसको पढ़ रहा हूँ, फिर उसको पढ़ रहा हूँ, फिर उसको, मतलब तीन चार टेबल पे मैं, मेरे दो तीन घंटे निकल जाते थे।
0: जी जी।
1: तो बचपन से वो पढ़ने का भी शौक था, संगीत का भी शौक था, तो ये सब चीज़ें जो है संस्कार में। और फिर जैसे होता है कि ये तो मेरे आदर्श थे ही और बड़े थे, बाकी फिर उर्दू शायरी की तरफ यूँ हुआ कि गीत करते करते फिर हम उम्र लोगों के साथ उठना बैठना है ना, सुनना सुनाना, और फिर मुशायरे भी वहाँ हुआ करते थे जयपुर में, तो बड़े बड़े मुशायरों को सुनना, तो आम उम्र लोगों की टोली में यंग शायर भी थे जिनके साथ उठते बैठते थे। तो जब मुशायरे सुने और उसमें जो शेर का जो दो मिसरों में, दो पंक्तियों में जो
0: सारी बात
1: कह देने का जो जादू वो मुशायरों में देखा, तो फिर वो उस विधा ने मुझे आकर्षित किया, मैं उस तरफ झुका और फिर गज़लें कहने लगा। आम उम्र लोगों को हमारे जो साथ में थे, अरशद अब्दुल हबीब, इनाम शरर, मजार साहब, तो ये सब सुनते थे, वो सराहते थे और कि ये अच्छा है, अच्छा है। और फिर मैंने बाकायदा गज़ल के लिए उर्दू स्क्रिप्ट सीखी, मौलवी साहब आते थे, मुझे पढ़ाते थे, सिखाते थे, और फिर मैं बाकायदा गीत से गज़ल में शामिल हो गया। गज़ल को मैंने अपनाया और शायद फिर गज़ल ने मुझे भी अपनाया।

0: लिया। मैंने कहा ना, हम उम्र लोगों के साथ उठते बैठते सुनते सुनाते, उनसे आश्वस्ति मिली। और एक हमारे बुजुर्ग होते थे, कहना चाहिए टोंक में रहते थे वो, तो वो भी आया करते थे वो, और शाम को बैठे और एक दूसरे को सुनना सुना। तो उन्होंने जब ये पहली बार सुनी गजल, तो वो भी चौंक गए, मतलब क्योंकि ये ट्रेडिशनल ढंग की गजल नहीं है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो बोले ये, और ये जो जिसको कि गजल की जबान में या उर्दू में टेक्निकली रदीफ कहते हैं, है ना, जो गजल के वक्ति के आखिर में आती है और वो रिपीट होती है हर शेर में, से डरता है। अब ये रदीफ जो है वो अनसुनी सी थी, मतलब,
1: और कभी इससे पहले मैंने सुना नहीं है।
0: तो खुद
1: मुश्किल भी है,
0: मुश्किल
1: भी
0: है, तो उसको निभा ले जाना। और उसको तो वो भी हैरान हुए कि ये यार तुम ये रदीफ ले आए और उसको तुमने शेर भी कह दिए और अच्छे शेर कह दिए सब कुछ है। और फिर वो शेर उसने तो मुझे मतलब सबसे ज्यादा प्यार दिया, पहचान दी। तो वो गजल मैं अगर कहें तो
1: जरूर सर, अरे स्वागत है, बिल्कुल।
0: जो पंकज जी ने गाई उसकी धुन अलग है,
1: आपकी धुन अलग है।
0: जो मैं सुनाता हूँ और जिसने मुझे मुशायरों में पहचान दी वो ये गजल।
1: स्वागत।
0: यहाँ हर शख्स

0: मिट्टी का फना होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है, यहाँ हर शाम। और ये खास शेर है वो
1: स्वागत है।

0: दुनिया बड़ा होने से डरता है, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का फना। यूनुस इसकी एक शेर और सुनाता हूँ।
1: जरूर सर,
0: ये
1: स्वागत
0: बच्चे वाला जो शेर है उससे सबसे ज्यादा प्यार मिला,
1: जी,
0: ये शेर भी उतना ही सच्चा है।
1: बिल्कुल
0: हम देखते हैं कि हर जिंदगी में हर इंसान की कभी न कभी वो पल आता है कि वो ऊपर वाले से पनाह मांगता है कि बहुत
1: बिल्कुल
0: बहुत हो गया, अब नहीं रहा,
1: जी
0: अब नहीं, बहुत
1: जी
0: हो गया, है
1: जी
0: ना, ये
1: जी
0: आता है। फिर
1: सबके
0: करते हैं
1: साथ, सबके साथ
0: अरबपति खरबपति भी खुदकुशी करते हैं, उनके पास क्या नहीं होता,
1: जी।
0: लेकिन वो जिंदगी ऐसे मोड़ पे ले आते कि वो बस बहुत हो गया।
1: हाँ,
0: लेकिन जब ऐसा पल आता है
1: तो आप कहते हैं अजब ये जिंदगी
0: ये, तो
1: गीत
0: फिर
1: है, अजब,
0: हमारे क्या रिएक्शन होते हैं।
1: वाह
0: और कोरोना में तो हमने देखा ही कि कैसे
1: जी,
0: जान बचाते फिर रहे थे हम
1: बिल्कुल
0: लोग। तो ये शेर है जो सबका सच है,
1: वाह
0: अमीर हो गरीब सबका, यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, अजब ये जिंदगी की कैद है दुनिया का हर इंसान, अजब ये जिंदगी की कैद है दुनिया का हर इंसान, रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है, रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता
1: क्या बात है
0: है।
1: सर, हम बहुत
0: थैंक
1: खुश नसीब हैं कि विविध भारती के स्टूडियो में आप
0: यू,
1: मौजूद हैं
0: मेरा
1: और
0: आप लोगों का
1: आपसे ये
0: प्रेम
1: सुन
0: है
1: रहे
0: और
1: हैं।
0: मेरी खुशनसीबी, थैंक यू।
1: ये अद्भुत गजल है और हजारों बार तो हमने पंकज जी की आवाज में सुनी होगी, पर जब आपके साथ काम करते थे तब तो हिम्मत नहीं होती थी ये कहने की कि आपसे ये गजल सुननी है। आज ये मौका आया है, बहुत अच्छा लगा, ये बहुत ही अनमोल पल है। रेडियो की तरफ वापस लौटते हैं, और जलंधर में 1 साल बिताने के बाद आप कहाँ गए?
0: उसके बाद मैं अपने होम

0: टाउन जयपुर
1: जी जी
0: मेरे साथ ये भी रहा और अभी भी होता है कि मैं शुरू से होम सिक रहा, मतलब
1: जी जी बिल्कुल।
0: जलंधर मुझे कोई कमी नहीं थी, बहुत
1: हाँ।
0: अच्छा शहर था, बहुत प्यारे लोग थे,
1: अच्छा खान पान था,
0: अच्छा खान पान था, अच्छा मौसम था
1: जी,
0: सब कुछ अच्छा था, बहुत
1: जी,
0: अच्छा था
1: जी,
0: केंद्र भी बहुत अच्छा था, लोग भी अच्छे थे, मैं खुश था, सब भी था। लेकिन एक होम सिकनेस होती कि वो मुझे अपने शहर जाना है वापस, है ना। तो मतलब मैंने रिक्वेस्ट की और वो सुन ली गई, मान ली गई और मैं वापस अपने शहर में आ गया जयपुर।
1: वाह वाह।
0: तो मैं वहाँ फिर वापस शायद 5 साल जयपुर रहा।
1: तो ये बहुत ही अनमोल पल रहे होंगे कि जिस स्टेशन में आप बतौर कैजुअल आया करते थे, युवाणी करते थे, वहां आपकी वापसी होती है और अब आप प्रोड्यूसर बनते हैं।
0: और ये भी कमाल थी कि जिस केंद्र में मैं कैजुअल के लिए ऑडिशन देने गया हूँ
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: वही मैं एक प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव तौर पर एंटर हो रहा हूँ और ज्वाइनिंग के लिए सब कुछ है। तो और क्या टीम थी वो वहाँ पे,
1: बिल्कुल
0: करीब बड़े लोग, अच्छे लोग, तो उनके साथ मिलना जुलना हुआ और वो एक अलग अनुभव था। और वो जो जयपुर मेरा क्रिएटिव जैसा विविध भारती मेरा बाद में हुआ
1: जी जी, जी।
0: और इसमें मैंने प्रोडक्शन कम किए लेकिन प्रोग्राम में उनकी परिकल्पना, उनको संवारना या उनको इम्प्लीमेंट करना, ये सब रहा। मेरा क्रिएटिव जो बेस्ट था
1: जी
0: वो जयपुर में था।
1: जी जी जी
0: नाटक लिखना, कंपोज करना,
1: बिल्कुल
0: प्रोड्यूस करना, इंटरव्यूज करना, वो सब जयपुर हुआ। मतलब वो मेरी जो पूरी जलंधर में मुझे आकाशवाणी की जानकारी सब हुई, सब कुछ हुआ। एक लिमिटेड काम था, हिंदी का कार्यक्रम अधिकारी था, हिंदी का लिमिटेड उसमें सब कुछ था। जयपुर मेरे लिए पूरा खुला मंच था,
1: बिल्कुल। और फिर आप उस शहर में पले बड़े थे,
0: पला
1: तो
0: बड़ा
1: सब
0: था
1: जानते थे।
0: और फिर उसने मुझे, मैंने कहा ना कि मेरे क्रिएटिविटी के सारे पहलू उसमें खुले
1: जी।
0: मेरा लेखक भी खुला, मेरा संगीतकार भी खुला, मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव भी तो था ही था। सब कुछ नाटक लिखे, निर्देशित किए, संगीतबद्ध किए, हाँ म्यूजिकल शो पूरा उसमें हुआ। अभी तो नहीं हो रहा है, उस वक्त जयपुर में और जयपुर के पूरे आकाशवाणी के एक दौर था कि वो आमंत्रित श्रोताओं के सामने कॉन्सर्ट होते थे
1: जी।
0: तो उसके लिए भी मतलब तैयार करना, उसके लिए प्लेज लिखना, तैयार करना, गाने लिखना, ये सब जयपुर में हुआ।
1: वाह क्या बात है। तो उस दौर में कौन से नाटक आपने रेडियो के लिए बनाए, उनको कुछ याद कीजिए थोड़ा सा।
0: उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण नाटक है, राजेंद्र यादव की कहानी थी टूटना।
1: जी जी।
0: उसका मैंने रेडियो नाटक रूपांतर किया।
1: वाह।
0: और उसका प्ले किया और बहुत पसंद किया गया लोगों द्वारा। और ये तो हुआ टूटना, एक ज्ञान प्रकाश विवेक की कहानी थी अंधा सूरज,
1: क्या बात है,
0: उसका किया।
1: वाह।
0: और इसके अलावा गीत गोविंद,
1: अरे गजब,
0: ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात जो उपलब्धि थी। यूनुस उसके आश्चर्य की बात यह थी कि गीत गोविंद का आपने ड्रामेटिक नाट्य रूपांतर किया। वो नाट्य रूपांतर तो हिंदी में हुआ, मतलब उसका कैरेक्टर जो राधा कृष्ण सखी ये सब कुछ है, गीत गोविंद मूल रूप से संस्कृत में है,
1: बिल्कुल
0: जयदेव जी का
1: जी।
0: हाँ उसके जो गाने हैं, उसके जो गीत हैं, वो मूल संस्कृत में, मूल संस्कृत में मैंने कंपोज किए, रिकॉर्ड किए, गाए
1: संस्कृत में,
0: संस्कृत में।
1: अरे बाप,
0: तो गाने संस्कृत में है
1: जी।
0: और उनके इंटरप्रिटेशन करते हुए उनको एक तरह से समझाने के लिए मेरे कैरेक्टराइजेशन किया कि लोग, आम लोग समझ चुके इस गाने का क्या मतलब है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कौन कैरेक्टर है, ये राधा का दुख है, ये कृष्ण की पुकार है,
1: हाँ,
0: है ये
1: तो बहुत मुश्किल काम है।
0: हम बहुत मुश्किल, तो वो एक मेरे लिए वो मील का पत्थर जैसा हुआ और लोगों को भी हैरानी हुई कि लोगों ने उसका आनंद भी लिया और समझे भी, मतलब गीत गोविंद को ओरिजिनल, क्योंकि मैं ये समझ रहा था कि उससे पहले गीत गोविंद रघुनाथ पाणिग्रही उड़ीसा में
1: जी जी
0: वो करते रहे और वो बहुत मशहूर है, बहुत पॉपुलर है, सब कुछ है, लोग गायक के रूप में वो पॉपुलर है वो वहाँ पे। लेकिन मैंने उनका सुना है और वो तो कमाल है, मतलब वो भी, लेकिन मुझे ये लगा कि उनमें वो लोक तत्व ज्यादा है, मतलब कि बंगाल या उड़िया का, उनके कंपोजिशंस में भी, उनके गाने में भी। तो मैंने उसको बाकायदा एक, क्योंकि फिल्म का तो था ही था, तो सुगम संगीत के तौर पर मैंने उसको कंपोज किया और गाने वाले भी बहुत अच्छे थे, तो उस तरह से वो एक लोगों को लगे कि ये गाना है।
1: क्या बात है, ये तो बहुत मुश्किल है,
0: क्योंकि तो गाने के तौर पर वो हुआ और लोगों ने सुना और पसंद किया।
1: वाह वाह वाह। तो ये पूरा जयपुर का दौर था,
0: अभिज्ञान शाकुंतल
1: जी
0: कालिदास का, तो वो मैंने रेडियो एडॉप्टेशन किया।
1: वाह,
0: वो किया, तो ये दो बड़ी थे कहना
1: चाहिए। क्या शानदार बातें हैं, ये तो बहुत मुश्किल वाले काम आपने वहां किए। इसके अलावा वहां विकल्प भी चलता रहा आपका, हाँ, नाट्य समूह?
0: नहीं, विकल्प ये दौर मेरा पहला था, मतलब रेडियो आने से पहले का था।
1: हाँ।
0: विकल्प अपने ढंग से चलता रहा, वो बीच बीच हम लोग करते भी रहे, लेकिन वो सक्रियता नहीं रही
1: जी, क्योंकि हाँ, रेडियो में आप पूरी हाँ, तरह से अपने हाँ, अपने अपने आप को झोंक हाँ, दिया था
0: हाँ, मतलब बीच बीच में हम करते रहे नाटक, लेकिन वो जो 10 साल लगातार जो किया वो रेडियो में आने से पहले किया
1: जी, और बाद में फिर आप पूरी तरह से रेडियो में व्यस्त हो गए।
0: हाँ, उसके बाद भी एक नाटक जो आला अफसर मुद्रा राक्षस का
1: जी जी,
0: जो गोगोल का उन्होंने
1: इंस्पेक्टर जनरल का
0: नौटंकी की शैली में उन्होंने किया, तो उसका भी मैंने कंपोजिशन भी किया, डायरेक्शन भी किया, और वो भी किया।
1: तो संगीत जो है वो एक तो घर से मिला था, लेकिन ये एक लगातार चलता रहा कि कंपोजिशंस भी करनी है आपको लगातार।
0: हाँ, इसमें करनी है वाला बात नहीं था, अंदर से होता था
1: जी जी,
0: अंदर से होता था कि ये मैं करूं, मतलब मेरी कोई मजबूरी नहीं थी कि,
1: बिल्कुल
0: हाँ, कि कोई और भी कर सकता था, लेकिन अंदर से कहीं होता था कि ये
1: मैं करता
0: हाँ, इसको जैसे लिखने का जो है वो अंदर से ही होता है।
1: बिल्कुल,
0: आप तो उसी तरह से वो चाहे वो गीत गोविंद हो, जयपुर में उस वक्त 5 बड़े संगीतकार थे
1: जी
0: जो स्टाफ में थे, म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर भी एक पोस्ट होती है,
1: बिल्कुल होती है ना,
0: जानते होंगे, विविध भारती में नहीं है वो, लेकिन मेन सेंटर्स में बॉम्बे में हो या किसी भी सेंटर में कंपोजर की भी पोस्ट होती है
1: जी जी,
0: उस वक्त 4 मौजूद थे, और वो 4 लोग भी परेशान होते थे कि हम हैं और ये आदमी कंपोज कर रहा है। तो उसमें मेरे उस वक्त स्टेशन डायरेक्टर थे गिरीश चतुर्वेदी
1: जी जी,
0: तो उन्होंने मुझे छूट दी
1: कि नहीं नहीं आप करो,
0: हाँ मतलब वरना ये होता नहीं है ये,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो 4 कंपोजर हैं स्टाफ में मौजूद हैं,
1: तो आप उनको,
0: और उस वक्त आप अपना काम खुद कर रहे हैं
1: जी जी,
0: तो उन्होंने छूट दी, और उसकी वजह से वो एज ए कंपोजर भी रेडियो पर मतलब मेरे गाने भी हुए, सब कुछ हुआ।
1: हाँ,
0: एक बार मैं बताऊं कि जो महादेव वर्मा का गीत मैं नीर भरी दुख की बदली, और ये सब मतलब ये सब हमने किए, मतलब जो एक वो जैसे यहाँ मंथन शुरू हुआ था ना
1: जी,
0: हमने 10 मिनट का प्रोग्राम होता था
1: जी,
0: एक अच्छा गीत या अच्छी कविता
1: हाँ,
0: किसी के लेके उसको कोई पढ़ता था, और गीत होता था कोई गाता था,
1: वाह
0: तो उस तरह का एक प्रोग्राम तो वो मैं करता था, तो उसमें महादेव वर्मा का और भारती जी का, फिर बाद में गालिब की गजलें कंपोज की,
1: क्या बात है,
0: कबीर को कंपोज किया,
1: इनको
0: स्टेज किया, स्टेज शो किया, तो ये सब मेरे संगीतकार के रूप में मेरे
1: ये चीजें चलती रही लगातार। ये बहुत अद्भुत बात है, ये एक अलग पूरा एक पक्ष है, हमारे सुनने वालों को ये जानकर अच्छा लगेगा कि आप मंच पर तो गाते ही हैं, लेकिन आप अपने निजी जीवन में भी कुछ फिल्मी गीतों से आपका बड़ा लगाव है जो आप गुनगुनाते हैं, तो हमारे लिए कुछ गुनगुनाइए।
0: चलिए मैं गुनगुना देता हूँ। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है,
1: वाह वाह,
0: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि

0: ये था जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। इस बातचीत का दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल, संपादन सहयोग रीमा जोशी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: आज के मेहमान।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर।

0: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। शाम के 5 बजने वाले हैं। प्रारंभ होती है हमारी आज की सायंकालीन प्रसारण सभा। सभा के प्रारंभ में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपये प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपये प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। ग्रेड ए के धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,461 रुपये प्रति क्विंटल, हाइब्रिड ज्वार के लिए 4,023 रुपये प्रति क्विंटल, बाजरा के लिए 2,900 रुपये प्रति क्विंटल और अरहर दाल के लिए 8,450 रुपये प्रति क्विंटल होगा। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
2: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने 144 विधायकों के समर्थन के साथ विधानसभा में विश्वासमत हासिल कर लिया है। SP वेलुमणि के नेतृत्व वाली AIADMK ने सरकार का समर्थन किया। एडापड्डी के पन्नी सामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना DMK के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। भाजपा विधायक और PMK समेत 5 विधायक तटस्थ रहे। DMK और अन्य गठबंधन सहयोगी दल मतदान में शामिल नहीं हुए। पुदुचेरी में ऑल इंडिया NR कांग्रेस नेता N रंगास्वामी ने आज रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया NR कांग्रेस के मल्लाड़ी कृष्णा राव और भाजपा के N नमसी वयम ने भी मंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या में कमी गुजरात और असम की यात्राओं के दौरान लागू की गई। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने के प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देशभर के पेंशनभोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर ही निर्णायक समाधान प्रदान करना है। महाराष्ट्र में पुणे पुलिस ने नीट पेपर लीक मामले में एक महिला को हिरासत में लिया है। बिबवेवाड़ी इलाके से गिरफ्तार इस महिला को प्रारंभिक पूछताछ के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंप दिया गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस वर्ष कुल 85.20% छात्र उत्तीर्ण हुए। छात्राओं का प्रतिशत 88.86 और छात्रों का प्रतिशत 82.13 है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ। निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 23,413 पर बंद हुआ। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में PV सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाद, लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इधर IPL क्रिकेट में रायपुर में आज शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अंक तालिका में आठवें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मुकाबला प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं बेंगलोर जीत दर्ज कर शीर्ष पर आना चाहेगी। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल रात तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युवा वाणी।

0: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: युवा दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युवानी में। मैं हूं मनोज यादव और श्रोताओं कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह करते हैं एक सुविचार से। असफलता आपको गलती सुधारने और दुगनी ताकत से सफल होने के लिए प्रेरित करती है। जी हां दोस्तों, असफलता से आप घबराएं नहीं, असफल होने के बाद ही आपको अपनी गलती सुधारने का मौका मिलता है और आप दुगनी मेहनत से अपनी परीक्षा की तैयारी करते हैं और सफलता आपको प्राप्त होती है। इस विचार के बाद दोस्तों बारी है एक प्यारे से गीत की।

इस गीत के बाद दोस्तों आज हम बात करेंगे खाद्य प्रौद्योगिकी की। खाद्य प्रौद्योगिकी एक ऐसा क्षेत्र है जहां विज्ञान और भोजन का अनोखा संगम होता है जो सुरक्षित और पौष्टिक उत्पाद बनाता है। दोस्तों खाद्य प्रौद्योगिकी विज्ञान को इस्तेमाल कर कच्चे माल को स्वादिष्ट सुरक्षित उत्पादों में बदली जाती है। नए रेसिपी विकसित करना, शेल्फ लाइफ बढ़ाना या प्लांट बेस्ड फूड बनाना, ये सब इसमें शामिल है। जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, इंजीनियरिंग और पोषण का मिश्रण। भारत में विशाल खाद्य उद्योग में मिलेट प्रोसेसिंग से लेकर रेडी टू ईट मील्स तक का काम होता है। दोस्तों अगर आप फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंसेस में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो बीटेक या बीएससी इन फूड टेक्नोलॉजी से शुरू करें। 4 साल का प्रैक्टिकल कोर्स जिसमें प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और सेफ्टी सिखाई जाती है। आईटी खड़गपुर या एनआईएफटीएम जैसे टॉप कॉलेजेस में ये कोर्स उपलब्ध है। इसके अलावा भी देश के कई राज्य और केंद्र के विश्वविद्यालयों में भी फूड टेक्नोलॉजी जैसे कोर्सेज को पढ़ाया जाता है। फीस भी काफी किफायती होती है। इसके बाद चाहे तो आप एमटेक या एमएससी प्रोग्राम भी कर सकते हैं फूड साइंसेस में। दोस्तों इस विषय को पढ़ने के लिए

जरूरी जो स्किल्स होते हैं वो है विश्लेषणात्मक क्षमता, लैब वर्क और क्रिएटिविटी। बात करें सैलरी की तो शुरुआती सैलरी सालाना 4 से 8 लाख हो सकता है और आपके अनुभव के साथ ये सैलरी बढ़ती ही जाती है। दोस्तों इसके अलावा R&D स्पेशलिस्ट, ग्लूटेन फ्री स्नैक्स जैसे नए प्रोडक्ट बनाए, क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट भी बन सकते हैं जिसमें आपको कंटेमिनेशन चेक करना होता है और FSSAI कंप्लायंस को देखना होता है। फूड सेफ्टी ऑफिसर का भी रोल आप पा सकते हैं, फैक्ट्री में ऑडिट, आउटब्रेक रोकना, ये सब काम भी आप इस कोर्स को करने के बाद पा सकते हैं। पैकेजिंग इंजीनियर के रूप में भी आप एक अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। इको फ्रेंडली पैक तैयार करना, प्रोसेस इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन लाइन एम्प्लॉयज के रूप में भी आप मैन्युफैक्चरिंग या रिसर्च या अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। अगर बात करेंगे संभावनाओं की तो दोस्तों आपको बता दें भारत का फूड टेक मार्केट $500 बिलियन से अधिक का है जो सालाना 10% के ग्रोथ दे रहा है। एक्सपर्ट और हेल्थ ट्रेंड्स में बूम है। प्राइवेट, सरकारी और विदेशी जॉब्स आपको इस कोर्स को करने के बाद मिल सकते हैं। चैलेंजेस हैं सस्टेनेबिलिटी और रेगुलेशंस की। आप चाहें तो अपने कोर्सेज के बाद इंटर्नशिप्स भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था खाद्य प्रौद्योगिकी यानी फूड टेक्नोलॉजी के बारे में विस्तार में आपके लिए जानकारी। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप भी इस क्षेत्र में करियर अपना बना सकते हैं। दोस्तों कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले लीजिए सुनिए एक प्यारा सा गीत।

इस गीत के बाद दोस्तों कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों अब हम बातें करेंगे सड़क सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। सड़कें हमारी जान है लेकिन लापरवाही से दुर्घटनाओं का कारण भी बन जाती हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं हर साल भारत में लाखों सड़क हादसे होते हैं जिनमें हजारों जिंदगियां खो जाती हैं। आज हम बातें करेंगे सड़क सुरक्षा के महत्वपूर्ण नियमों की, तो चलिए शुरू करते हैं ये चर्चा। दोस्तों सबसे पहले हेलमेट और सीट बेल्ट लगाएं। दोस्तों बाइक पर हेलमेट ना पहनना मतलब मौत को न्योता देना। सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार हेलमेट 40% तक सिर की चोटों से बचाता है। कार में सीट बेल्ट बांधना भूलिए मत, ये आपकी पहली ढाल है। याद रखिए सुरक्षा नियम तोड़ना सिर्फ आपकी जान का सौदा नहीं बल्कि अपनों का भी दर्द है। दोस्तों आपकी एक छोटी सी लापरवाही बड़ी त्रासदी बन जाती है। जब बात स्पीड की तो स्पीड लिमिट का पालन करें, ओवरटेकिंग करते समय इंडिकेटर ऑन करें और कभी नशा करके वाहन ना चलाएं। नशा से कंट्रोल खो जाता है और ये हकीकत है, मजाक नहीं। दोस्तों फुटपाथ पर पैदल चलें, जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें, बच्चों को साइकिल पर हेलमेट लगाना सिखाएं, ट्रक और बस ड्राइवर सावधान रहें, भारी वाहन भारी जिम्मेदारी, और हाँ मोबाइल फोन हाथ में मत लीजिए, एक सेकंड की चूक जिंदगी भर का गम ला सकती है। दोस्तों सड़क सुरक्षा सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। आज से संकल्प लें, हेलमेट पहनूंगा, बेल्ट बांधूंगा, नियम मानूंगा, अपने मोहल्ले में जागरूकता फैलाएं। दोस्तों इस चर्चा के बाद लीजिए सुनिए एक प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, अब हम बातें करेंगे कुछ आसान स्वास्थ्य टिप्स की, यानी हेल्थ टिप्स की, जो आपको आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को स्वस्थ और ऊर्जावान बना देंगी। और आज हम सरल उपायों पर चर्चा करेंगे जो बीमारियों से दूर रखेंगे। रोजाना प्रोटीन युक्त भोजन लें, जैसे दाल, अंडा या दही। यह इम्यूनिटी बढ़ाता है और बीमारियों को दूर भगाता है। दिन में कम से कम 1 घंटा पैदल चलें या व्यायाम करें, इससे हृदय स्वस्थ रहता है और तनाव कम होता है। पर्याप्त पानी, कम से कम 8 गिलास, ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहे और टॉक्सिन्स बाहर निकलें। संतुलित आहार लें, जिसमें फल सब्जियों को शामिल करें। जंक फूड से बचें। दोस्तों, आपको पर्याप्त आराम लेना चाहिए। शरीर को जितनी नींद चाहिए उतनी ही लें, न ज्यादा न कम। आशा है दोस्तों आप इन टिप्स का पालन करेंगे और अपने सेहत को स्वस्थ रखेंगे।
1: चकरक चीचा चो चकलो रम गंडो वंडो लकरक टम अक्को टक्को इडिगिडिगिडिगो इडिपाय विडिपाय चिकि चक चो गिलिगिली मल सुलु सुलु मल मकनक हुकु बुकुरे टुकु बुकुरे चकलक बिक्को चिक्को सिली सिली सिली गो बगड़दुम जगड़दुम चिकि चक चो।

अभी वह सती सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी, आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: पार्टी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
4: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
3: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
4: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
3: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
4: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल ID है csumumbai@gmail.com।
5: पंचो जय हिंद। हाँ, पंच भाई यही नारक साथे अपन बैठकी शुरू भइल अपने कार्यक्रम में। आप पंच भाई, आप सबका स्वागत बा। पंच भाई, देखी आज जौन है कि अपने देश के पांचवे राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के जन्मदिवस है। हाँ। और आज ही के दिन यानी कि आज 13 मई 1905 में इनकर जन्म दिल्ली में भइल रहल। वैसे तो इनके मतलब परिवार जौन बा
6: असम
5: के रहे वाला रहल है, लेकिन इनके भाई जन्म उस समय दिल्ली में भइल रहल। और ई एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ वकील भी रहने और गांधी जी से प्रेरित होकर देश के सेवा में लग गए न। और 1974 से 1977 तक देश के ही राष्ट्रपति के कार्यभार संभालने। और 1975 में आपातकाल के घोषणा पर हस्ताक्षर कैने। लेकिन भाई समय के हर चीज़ के ऊ होला, तो इनके मृत्यु अपने पद पर रहते ही 11 फरवरी 1977 में हो गई रहा। वह दिन पूरा देश जौन बा शोक में डूब गए। तो अपन बैठकी के आगे बढ़ावल जाए और आही सुनल जाए एगो लोकगीत।

0: पंच भाई खूब निम्न मनमन साइन भाई अंजनी कुमार और साथिन की आवाज़ में। और देखिए आज के डेट में हर आदमी के दवा के ज़रूरत बा, चाहे वो छोट मोट बीमारी हो खे या चाहे बड़ा बीमारी हो खे, लेकिन दवा कई प्रकार से भी होला। तो यही में एगो आई बातचीत सुनल जा कि मिट्टी और पानी से प्राकृतिक चिकित्सा, ये पर जानकारी देते हैं डॉक्टर विमल कुमार मोदी और इनसे बतियावत हैं भैया विनय कुमार। तो अपन पंच भाई जानकारी लें।
1: पंच भाई, जीव जंतु का प्रकृति से बड़ा गहरा नाता है। कहीं कभी प्राकृतिक वातावरण अपने अनुसार वहाँ जीव जंतु के उत्पन्न करेला। पूरा पृथ्वी पर अगर मनुष्य के बारे में सोचल जा तो जैसे अन्य जीवधारी हों जंतु हों वही तरह से मनुष्य भी हों, अगर प्रकृति के साथ चलत हों तब। लेकिन विकास के दौर में या समय के परिवर्तन के साथ साथ मनुष्य समाज, मानव समाज पूरा तरीके से रोग, तरह तरह के शारीरिक जौन उनके क्रियाकलाप में उतार चढ़ाव आइल बा, एकर सामना करत हुआ। जब बात कइल जाला अलग अलग पैथी के बारे में, अलग अलग चिकित्सा पद्धत के बारे में, तो सब यह मिला जुला स्वर से कहेला कि ए बाबू, जे जितने प्रकृति से दूर रही ओके

0: तने रोग बियाध सताई, आज अपने कार्यक्रम में आयल हैं। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धत से चिकित्सा करे वाला वरिष्ठ डॉक्टर विमल कुमार मोदी जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका हमारे यह कार्यक्रम में स्वागत बा। डॉक्टर साहब, ही बताई कि जब आदमी पैदा होला तब से और अंत तक पूरा क्रियाकलाप पंच महाभूत के ही इर्द गिर्द घूमत रहेला। आज हमन का वह पंच महाभूत में से खाली दो चीज पर बात कर चाहे के, एक तो माटी और दूसरा पानी। प्राकृतिक चिकित्सा में माटी और पानी एकर का योगदान बा? पानी पिए वाला, नहाए वाला, शरीर के अंदर कितना एकर संतुलन रहे के चाही, पानी का सेवन कब कब करे के चाही, यही तरह से माटी का कितना हिस्सा, यही तरह शरीर का कितना हिस्सा माटी के संपर्क में रहे। हाँ, इतना जरूर कोशिश करे कि वह माटी बहुत संक्रमित न होके।
1: हमारे शरीर में 60% पानी है, इसलिए पानी की आवश्यकता हमेशा होती रहती है। पानी शुद्ध होना चाहिए, पानी शुद्ध मिलना चाहिए, पानी से नहाना चाहिए। तो पानी पीने का ढंग ये होना चाहिए कि सुबह उठकर 1-2 गिलास पानी पिया जाए, खाने के आधी घंटे पहले पानी पिया जाए, जिससे भोजन करते समय प्यास न लगे। क्योंकि भोजन के साथ जब आप पानी पीते हैं तो पाचक रस पतला हो जाता है, भोजन मुश्किल से पचता है। इसलिए अगर आधी घंटे पहले पानी पी लेंगे तो भोजन के समय पानी पीना नहीं पड़ेगा। फिर भोजन के 2 घंटे बाद पानी पिएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रात को भी 2 घंटे पहले पानी पी लें। इस तरह दिन भर में 2.5 से 3 लीटर पानी रोज पीना चाहिए।
0: कम से कम
1: 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर आप मजदूरी करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, पसीना बहुत निकलता है, तो उससे फिर 3 से 3.5 लीटर भी पानी पीना आवश्यक होता है।
0: डॉक्टर साहब, जैसे आप बतौली हैं कि खाना खैला के पहले पानी पी लेवे के चाही, लेकिन समाज में तो ठीक एक उल्टा होला। लोग कहला कि पानी जब पी लेब खैला के पहले तो फिर खाना का खाई, आ जब खाना खैला के बाद पानी पियला का बात आवेला तो लोग कहला कि देखा भाई पूरा खाना खा ले बानी, थोड़ा बहुत पानी पियल जरूरी बा, आ बाद में फिर पानी पियल भूला जाला। ऐसे पाचन प्रणाली पर का फर्क पड़ेला?
1: नहीं, पानिया पहले पी लेब तो कम खाई, कम बीमार पड़ब, तली बुनी चीजें कम खाई जाएंगी। खाने के बाद पानी पीने से जो पाचक रस उस भोजन को पचाने के लिए शरीर निकालता है, पानी पीने से वो पतला हो जाएगा, भोजन मुश्किल से पचेगा। इसलिए भोजन करने के 2 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। लेकिन ये तब आप कर पाएंगे जब भोजन में मिर्च मसाला नहीं होगा, क्योंकि मिर्च मसाला पानी की मांग करता है, क्योंकि हमारा शरीर उस मिर्च मसाले को बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए पानी पी के उस मिर्च मसाले को हल्का करता है। अब आप एक बात देखें, जब आप मिठाई खाई ली तो आपके पानी पीने की जरूरत पड़ाला। ये इलिए हवे कहे कि जब पानी पियल जाला तब वो मिठास हमारा शरीर स्वीकार नहीं कर पाता है, इसलिए पानी पी के उसको पतला करता है उस मिठास को, तब शरीर रुक पाता है। इसीलिए पानी पीने की आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
0: कहला का मतलब कि मिर्च, मिठाई, खटाई, तीखा कोनो ऐसन चीज बा, अगर ओकर सांद्रता ज्यादे बा तो जब तक ओके पानी से पतला न कैल जाए तब तक शरीर के पाचन रस ऊपर काम ना करी हैं। जितना गाढ़ रही उतना बार बार पानी पियला का जरूरत पड़ी। अगर एकर मात्रा घटा दिया जा, मिठाई का, खटाई का, तेल का या तेज तीखापन मिर्च मसाला का, तो पानी के मात्रा के भी घटावल जा सकेला और पाचन के बढ़ावल जा सकेला।
1: आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन 2 से 2.5 लीटर पानी पियल बहुत जरूरी बा।
0: अच्छा,
1: और ये बताई, पानी तो दुइये समय पियल जाला, जब मिर्च मसाला लगा ला तो होकर हाय हाय शांत करे खातिन पानी पियल पड़ाला।
0: अच्छा, जब मीठ लगे तब
1: पानी पिए जरूरत पड़ाला, नहीं तो प्यासे कहाँ लगाला। पानी की जरूरत है, इसलिए शरीर को 2.5 से 3 लीटर पानी पीना ही चाहिए, चाहे प्यास लगे चाहे नहीं लगे।
0: अच्छा, जब गर्मी का महीना आ गई, जब ज्यादे आप मेहनत का काम करतनी, शारीरिक श्रम ज्यादे करतनी, तो ओकरे मांग के हिसाब से पानी का मात्रा बढ़ाओ करे के चाहिए। डॉक्टर साहब, एक चीज और बा कि पानी से नहाइल, पानी बहुत लोग कहला कि तमाम हमारे यहाँ धार्मिक आधार पर अगर देखल जा, प्राकृतिक आधार पर देखल जा, तो ठेहुना भर, कमर भर, छाती के बराबर अलग अलग प्रक्रिया है स्नान कैला का, सरोवर में, बहत पानी में और सर पर पानी गिरा के स्नान कैला का पैर धोला के बाद बड़ा पतली धार से सर के ऊपर जौन चाँद होला जेके तालू कहल जाला बाद में भर जाला बचपना में जौन धक धक चलत रहला ऊपर भी लोग दोनों हाथ ऊपर करके और लोटा के पतले धार से पानी गिरा के स्नान कैला का बहुत लोगन के हम देखले हैं। का एकर भी कोनो स्वास्थ्य से संबंध है?
1: नहीं नहीं, खूब खूब संबंध है। जैसे हम बताएं, अगर शावर से पानी नहा रहे हैं तो कोशिश ये करना चाहिए कि रीढ़ की हड्डी पे तेज धार से पानी हो। अगर तेज धार से पूरी रीढ़ की हड्डी पे गुजरेगा तो वहाँ का खून का दौरान बढ़िया होगा और सारा खेल रीढ़ की हड्डी से ही स्वास्थ्य का है, क्योंकि दिमाग से सारा नर्व्स रीढ़ की हड्डी से होता हुआ पूरे शरीर के अंग प्रत्यंग पे जाता है। तो अगर रीढ़ की हड्डी हमारी स्वस्थ होगी तो पूरा शरीर स्वस्थ होगा। वैसे ये नियम है कि जब नदी में जाएं तो पहले पैर पे पानी पड़ेगा, जब बाथरूम में नहाएं शावर से नहाएंगे तो पहले सर पे पानी पड़ेगा। लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये है कि हमेशा ठंडे पानी से ज़रूर नहाना चाहिए। कुछ लोग डरते हैं जाड़े में कि गर्म पानी से नहीं नहाएंगे तो ठंडक लग जाएगी, हमको गठिया हो गया है ठंडे पानी से नहाएंगे तो दर्द हो जाएगा, पूरे शरीर में दर्द है ठंडे पानी से नहाएंगे तो दर्द बढ़ जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप ठंडे पानी से ही नहाइए, आप खूब गर्म पानी से नहाइए, लेकिन आखिरी बार एक लोटा सर पे ठंडा पानी ज़रूर डालिए कि पूरा शरीर ठंडा हो जाए, तो आपको दिन भर तरोताज़ा एहसास होगा।
0: डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है कि नहैला का प्रक्रिया कुआँ बनला के बाद, हैंडपम्प लगला के बाद, या जैसे आजकल टंकी बा आप शावर का तनि बाथरूम का बात कैली हैं, तो ये तो बड़ा कम दिन का हमन का आकलन है या ये जो सुविधा उपलब्ध बा एकर हमन का सेवन कैल जाला। लेकिन एकरे पहले नदी तालाब झील झरना एमे नहैला का प्रक्रिया रहला, तो खुला में जौन नहैला का बात रहला ओकर स्वास्थ्य पर का प्रभाव रहला? जबकि बहुत बड़े बड़े लोग जेकरे पास पैसा बा सुविधा संपन्न बना अब वो तालाब खुदवावतना या बड़े बड़े होटल में खुला पानी में नहैला का परंपरा अभी वही तरह से जारी बा, फर्क का बा?
1: नहीं, फर्क की बा पहले नदी में नहात रह ली और शुद्ध हवा मिलत रहे, डुबकी लगवली, डुबकी लगवले के बाहर आई ली शुद्ध हवा मिल और वो शुद्ध हवा खुद को तरोताज़ा करता है। अब बाथरूम में नहा रहे हैं तो वो हवा तो रहा नहीं, तो वो स्वास्थ्य तो नहीं मिल सकता जो नदी में नहाने में मिलता था। लेकिन अब उसकी प्रक्रिया लोग स्विमिंग पूल में कर रहे हैं कि स्विमिंग पूल में नहा लीजिए, लेकिन स्विमिंग पूल भी कमरे बंद बनने लगे, खुले में बनना मुश्किल हो गया, तो नदी का नहाने का तो स्वास्थ्य का कोई जवाब ही नहीं है।
0: डॉक्टर साहब, आप लोग दो चीज़ पर विशेष बल दे ला कि एक तो पानी और दूसर का माटी। माटी आप प्राकृतिक चिकित्सा में कैसे उपयोग करेला, कौन कौन तरीका अपनाएला?
1: हम लोग मिट्टी फोड़े पे मिट्टी लगाया जाए तो फोड़ा पक के आसानी से फूट जाएगा। पेट पे मिट्टी लगाया जाए तो पेट से कब्ज की मुक्ति मिल जाएगी,
0: कोष्ठबद्धता
1: से छुट्टी मिल जाएगी। पूरे शरीर में कहीं खुजली हो, कहीं दाद हो, पूरे सर से लेकर पैर तक आधा सेंटीमीटर मोटा मिट्टी लगा लीजिए, आधी घंटे धूप में बैठ लीजिए, फिर नहा लीजिए, सारी खुजली चली जाएगी, त्वचा चमकदार हो जाएगी, त्वचा में चमक आ जाएगी।
0: डॉक्टर साहब देखें, अब हम फिर एगो बात पूछल चाहब, असही में मन तो करते बाई बात पूछे के। देखें, माटी कई तरह का बा, जैसे हम जब बहुत छोट रही स्कूल से छुट्टी होके तो जाइल जा एकदम छोट रहल गई तब लाज के तब मने कोनो बाते न रहे तो जंघिया आ बंडी दोनों निकाल के आ रेही में रगड़ के धूप में फैला दिया जा, एकरे बाद नहर में तालाब में कूद के नहाइल जा, आ फिर वो जब कपड़ा पहरल जा या वो कपड़ा से देह पोछल जा तो चमड़ी जौन बा ना एकदम रबड़ की तरह दिखे, इतना हाथ फेरला पर साफ सुथरा रहे और बड़ा अच्छा लगे अपना आपके। दूसर का कि जब गांव का बूढ़ पुरनिया महतारी लोग जब अपन बाल धोवें तो कहें एकदम काली मिट्टी जौन की धूप पड़ला पर एकदम चिटक जात होके आ तन को बारिश होइला पर घुल के आपस में एकदम मिल जात, ओके कहें कि करैली माटी से बाल धोवला का बात करें। आप पूरा देह बा तौन पियर माटी से लेप करके अनहिला का बात करें, का चिकित्सा में भी अलग अलग तरह के माटी का उपयोग कैल जाला?
1: में यही ध्यान रखे के चाहिए कि उमें बालू कम हो, चिकनी मिट्टी हो, पूरे बदन में लगाएं तो चिपकी रहे थोड़ी देर, गिर ना जाए, बालू होगा तो सब गिर जाएगा मिट्टी, इतना ही ध्यान रखने की बात है। और एक तो पूरी कोशिश करनी चाहिए कि नंगे पैर जमीन पर कुछ समय तो चला जाए, अब तो हो गया चप्पल पहन के हम लोग बेडरूम में चले जाते हैं, जब बिस्तर से उठते हैं तो पहला चप्पल ही ढूंढते हैं। हम नंगे पैर चलने की आदत ही भूल गए हैं। हमें अपने बच्चों को भी नंगे पैर चलाना चाहिए और खुद भी नंगे पैर चलना चाहिए कि हम प्रकृति के संपर्क में रहें। प्रकृति के संपर्क में हम रहेंगे तो प्रकृति हमें आत्मसात करेगी, हमारे रोगों का हरण करेगी और हमें धीरे धीरे स्वस्थ करेगी।
0: डॉक्टर साहब देखिए माटी के बात होत रहा ना तो सब कहत बा एकदम एक स्वर से कहता कि जौन माटी बा हवा बा पानी बा ये कुल प्रदूषित हो गई बा। प्रदूषित माटी में कहाँ से आप बढ़िया माटी निकाल के ले आए ला जौना का उपयोग या प्रयोग चिकित्सा के रूप में कई जा सकेले।
1: मिट्टी बड़ी आसान है, खाली 1.5 फुट नीचे की ज़मीन की मिट्टी ली जाए, क्योंकि जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो 1 फुट नीचे तक ही होते हैं। अगर 1.5 फुट से नीचे से जो भी मिट्टी लेंगे वो पूरी अच्छी तरह स्वास्थ्यपूर्वक होगी। उस मिट्टी को निकालें और धूप में सुखा लें, सूखने के बाद उसका फिर से प्रयोग करें गीला करके, वो मिट्टी बिल्कुल स्वस्थ है। जिस मिट्टी को आप लगा लें उसको फिर से प्रयोग कर सकते हैं, उसको सुखाने के बाद फिर से प्रयोग किया जा सकता है, गीले को फिर से गीला करके नहीं प्रयोग करते हैं।
0: डॉक्टर साहब यह तरह से माटी पानी दोनों का अगर प्रयोग कई जा तो स्वास्थ्य पर का फर्क पड़ सकेला, कितना तरह के बीमारी से बचल जा सकेला?
1: स्वास्थ्य का क्या, सभी रोग जाएगा, कोई भी रोग का आप नाम ले लीजिए, स्वस्थ मिट्टी रहेगी, मिट्टी के संपर्क में आप रहेंगे, नंगे पैर चलेंगे और साफ पानी पियेंगे, 2.5 से 3 लीटर पानी रोज पियेंगे, ठंडे पानी से नहाएंगे, तो धीरे धीरे सारा रोग चला जाएगा।
0: डॉक्टर साहब एकदम सही बात कहल गई है कि माई ई धरती माँ इसे जितना आप अपेक्षा करेली वो सब कुछ मिल सकेला, चाहे स्वास्थ्य का बात होके या भरपेट भोजन कैला का। जरूरत यह बात का बा कि बड़े सावधानी से चयन करी आ माटी पानी का प्रयोग करके अपने स्वास्थ्य के निरंतर बढ़िया रखे का उपयोग करी या यह तरह का बर्ताव करी या यह तरह का कामना करी। आज अपने कार्यक्रम में डॉक्टर विमल मोदी जी इतना अच्छा जानकारी दिली कि पानी या माटी का प्रयोग करके स्वास्थ्य के कैसे अच्छा रखल जा सकेला, एकरे खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: पंच भाई अभी आप सुनल गेल बातचीत पानी व मिट्टी से प्राकृतिक चिकित्सा जे पर जानकारी देत रहना डॉक्टर विमल कुमार मोदी, इतना निमन जानकारी देवे खातिर
3: इनके धन्यवाद।
2: और सही बात बा, अगर जितना अगर हम जा अपने
3: मतलब प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के उपयोग कइल जा तो शरीर फिट रही और आदमी स्वस्थ रही।
2: हाँ, काहे कि पहले के लोग जौन भी उपयोग करत रहना सब उन्हें प्राकृतिक चीज का ही प्रयोग करत रहना।
3: हाँ।
2: लेकिन जैसे जैसे समय परिवर्तित हो रहा है तो हमन प्राकृतिक चीज छोड़ करके केवल कृत्रिमता पर जौन जीवन आधारित हो
3: गेल बा। बिल्कुल,
2: आदमी प्राकृतिक जीवन छोड़ के केवल जौन कृत्रिमता पर निर्भर।
3: हाँ देखी बातचीत आगे हुई लेकिन हर चीज के समय होला, हमन के भी समय से बदल ते एक साथे भ्रमण के दें अनुमत। पंचो जय हिंद।
4: अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत, आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में समाचार हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे।
5: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
6: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो।
7: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचार के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में आर्थिक मामलन का मंत्रिमंडल समिति आज विपणन वर्ष 2026-27 बदे 14 खरीफ फसलिन के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में बढ़ोतरी के मंजूरी दे दिलस। एक तहत सरकार सामान्य धान का MSP 2441 रुपया, ग्रेड ए धान का

0: एमएसपी 2461 रुपया, मकई का एमएसपी 2410 रुपया आ रहर का एमएसपी 8485 रुपया प्रति क्विंटल कह दिले हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्र सरकार के एमएसपी बढ़ोले के फैसला का स्वागत कैले हमें। एगो सोशल मीडिया पोस्ट में वहां के कहने की फैसला अन्नदाता किसानन का आय बढ़ावे आ कृषि विविधीकरण के प्रोत्साहन दिले के साथे साथे समृद्ध किसान सशक्त भारत के संकल्प के नया मजबूती दे। पश्चिम एशिया संघर्ष से भइल वैश्विक ऊर्जा संकट के देखत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील के बादे केंद्र और राज्य सरकार ईंधन बचत का उपाय तेज कर दिले हैं। वैश्विक ईंधन के दाम में बढ़ोतरी के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालिया में घरेलू दौरा बदे अपने काफिला का आकार ढेर कम कर दिले हैं। एगो रिपोर्ट।
1: सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीशा।
0: प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो मंत्रियन विधायकन और जनप्रतिनिधियन से सरकारी गाड़ियन का उपयोग के कम करे के कहले हमें। एगो रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने स्वयं और मंत्रियों की फ्लीट में तत्काल 50% तक कटौती करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सरकारी कार्यों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक उपयोग किया जाए और सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे मनाया जाए। साथ ही मंत्री सांसद और विधायक भी सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। श्री योगी ने कहा कि सरकारी बैठकों सेमिनारों और कार्यशालाओं का अधिक से अधिक आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया जाए जिससे अनावश्यक यात्रा और ईंधन की खपत कम हो सके। इसके अलावा उन्होंने वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को भी प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से भी अपील की है कि वे मेट्रो बस साइकिलिंग और कार पुलिंग जैसे विकल्प अपनाएं। समाचार कक्ष से अरुण।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 16 मई के गोरखपुर में प्रदेश के चौथा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन कई के नई धरी है। एगो रिपोर्ट।
3: गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग स्थित ताल नदौर में बनने वाला यह इंटरनेशनल स्टेडियम 392.94 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। निर्माण के लिए यह पहली किस्त के रूप में 63.39 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं। स्टेडियम बनाने के लिए अलाइनमेंट, मिट्टी भराई, लेवलिंग और बड़े निर्माण उपकरणों को लगाने का काम भी शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर आज जिलाधिकारी दीपक मीणा ने संबंधित अधिकारियों के साथ आयोजन स्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लगभग 50 एकड़ में बनने वाले इस स्टेडियम में 30,000 दर्शक के बैठने की क्षमता होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12वीं के परीक्षा का नतीजा आज घोषित कर दिलस। विद्यार्थी रोल नंबर डाल के बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर आ उमंग ऐप पर अपन नतीजा देख सकेले। मौसम विभाग प्रदेश में अजू कहीं कहीं बरखा आ गरज चमक के साथे बौछार पड़े का क्रम जारी रहले का संभावना जतौले हो। ए बीचे कानपुर के सतही प्रदेश के कुछ औरियो जिलों से बरखा के साथे साथे ओलो गिरले का समाचार मिलल बा। मौसम विभाग का वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश आवे वाला दिनन में तापमान में बढ़ोतरी का संभावना जतौले हमें।
4: आने वाले दिनों में अगर लखनऊ की बात करें तो मौसम साफ रहेगा और दिन में धूप खिलेगी, लेकिन तापमान ऐसा कोई एक्सट्रीम लेवल तक का नहीं पहुंचेगा। हालांकि तापमान में यहां धीरे धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम आने वाले दिनों के लिए पूरी तरीके से साफ है। अब यहां से धीरे धीरे तापमान में हल्की हल्की आने वाले दिनों में बढ़ोतरी होने की संभावना है।
0: गोरखपुर के सतही प्रदेश के कई पूर्वी जिलन में आज दिन भर तेज घाम रहल, वहीं संझा से आसमान में बादल छा गईल आ तेज आंधी के साथे बरखा शुरू हो गईल। ई समाचार बुलेटिन हमनी के यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी मौजूद हो। एक रेसत हैं भोजपुरी समाचारन कई बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार। आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आज विपणन वर्ष 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी दे दी। इसके तहत सरकार ने सामान्य धान की MSP 2441 रुपये, ग्रेड ए धान की MSP 2461 रुपये, मक्के की MSP 2410 रुपये और अरहर की MSP 8450 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार के MSP बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह निर्णय अन्नदाता किसानों की आय बढ़ाने व कृषि विविधीकरण को प्रोत्साहन देने के साथ साथ समृद्ध किसान सशक्त भारत के संकल्प को नई मजबूती प्रदान करेगा। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
1: सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
0: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने स्वयं और मंत्रियों की फ्लीट में तत्काल 50% तक कटौती करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सरकारी कार्यों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक उपयोग किया जाए और सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे मनाया जाए। साथ ही मंत्री, सांसद और विधायक भी सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। श्री योगी ने कहा कि सरकारी बैठकों, सेमिनारों और कार्यशालाओं का अधिक से अधिक आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया जाए, जिससे अनावश्यक यात्रा और ईंधन की खपत कम हो सके। इसके अलावा उन्होंने वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को भी प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से भी अपील की है कि वे मेट्रो, बस, साइकिलिंग और कार पुलिंग जैसे विकल्प अपनाएं। समाचार कक्ष से अरुण।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 16 मई को गोरखपुर में प्रदेश के चौथे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन व शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग स्थित ताल नदौर में बनने वाला यह इंटरनेशनल स्टेडियम 392.94 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। निर्माण के लिए यह पहली किस्त के रूप में 63.39 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं। स्टेडियम बनाने के लिए अलाइनमेंट, मिट्टी भराई, लेवलिंग और बड़े निर्माण उपकरणों को लगाने का काम भी शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर आज जिलाधिकारी दीपक मीणा ने संबंधित अधिकारियों के साथ आयोजन स्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लगभग 50 एकड़ में बनने वाले इस स्टेडियम में 30,000 दर्शक के बैठने की क्षमता होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं की परीक्षाओं का परिणाम आज घोषित कर दिया। विद्यार्थी रोल नंबर डालकर बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट DigiLocker और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का 38 वर्ष की आयु में आज निधन हो गया। उनकी पत्नी अपर्णा विष्ट यादव भाजपा की सदस्य हैं और वर्तमान में राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित कई विशिष्ट जनों ने प्रतीक यादव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने प्रदेश में आज भी कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का क्रम जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। इस बीच कानपुर सहित प्रदेश के कुछ अन्य जिलों से बारिश के साथ साथ ओले गिरने के भी समाचार मिले हैं। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने आगामी दिनों में तापमान में बढ़ोतरी की संभावना भी व्यक्त की है।
4: आने वाले दिनों में अगर लखनऊ की बात करें तो मौसम साफ रहेगा और दिन में धूप खिलेगी, लेकिन तापमान ऐसा कोई एक्सट्रीम लेवल तक का नहीं पहुंचेगा। हालांकि तापमान में यहां धीरे धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम आने वाले दिनों के लिए पूरी तरीके से साफ है। अब यहां से धीरे धीरे तापमान में हल्की हल्की आने वाले दिनों में बढ़ोतरी होने की संभावना है।
0: गोरखपुर सहित प्रदेश के कई पूर्वी जिलों में आज दिन भर तेज धूप रही। हालांकि शाम से ही आसमान में बादल छा गए और तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: पंचो जय जवान जय किसान। हाँ किसान भाई, यही नारा के साथे अपन बैठकी शुरू भइल अपने कार्यक्रम में। आप सबके स्वागत बा। देखिए किसान भाई, अपने यहाँ गवई में सब केहू खेती बाड़ी के काम खूब बढ़िया से करेला और ओकर भरपूर लाभ भी उठावेला। लेकिन अगर बात कइल जा जौन बाकी जैविक खेती के, तो बहुत ऐसा किसान लोग हवें जौन जैविक खेती कह के और ओकर लाभ उठावेने। और सबसे बड़ी बात यह कि जौन जैविक खेती होला ओकर मुख्य बात यह कि मिट्टी के उपजाऊ के क्षमता में बढ़ोतरी देखे मिलेला, लागत भी कम होला, एकर साथे साथे स्वास्थ्यवर्धक और पौष्टिक जौन उत्पाद होला, पर्यावरण के संरक्षण और बाजार में ओकर अधिक मूल्य भी मिलने के संभावना होला।
1: कहले का मतलब ये बा कि पंच भाई लोग जितना हम जे आजकल कृत्रिम खाद का प्रयोग, यूरिया, पोटाश सब कर रहल बाटी, तो ऐसे उपजाऊ पैदावार तो भले ज्यादा होता लेकिन उस स्वास्थ्य खातिर जो ना
0: नुकसान
1: बा। पहले के समय में जितना गोबर का खाद और ये सब प्रयोग होत रहला तो कोनो तरीके का बीमारी भी कम
0: पावल जात रहला।
1: लेकिन आज देखल जाए युवा वर्ग में ही हार्ट से संबंधित बीमारी,
0: बहुत तरह
1: शुगर के बीमारी जो हो गए, ये आम बात हो गए। आजकल कैंसर भी देखल जाता, हर गाँव में 2-4-10 आदमी मिल जाता बीमारी। और ये विकराल रूप जोने का कोनो इलाज ना, पर हमेशा ओके दवा पर ही चले के ओकरे बाद भी जान का मचले का संभावना।
0: और एक मुख्य जोन कारण बा कि जोन मिलावटी आवता बाजार में ओकर भी कहीं न कहीं बहुत ज्यादा नुकसान बा।
1: सबसे बड़ी चीज ये कि हमन जो हर चीज के जोन हर डिब्बा बंद खाना का प्रयोग कर बाटी जोन केमिकल से संरक्षित हो रहा बाट। दूसरी चीज ये कि जोन भी हमन जा सब्जी और फल का प्रयोग ये कि फल खाए जाए स्वास्थ्य बहुत अच्छा रही, तो कोनो भी ऐसा फल आजकल ना रह गया जेके नेचुरल तरीके से
0: पकावल होके
1: उनमें कार्बाइड का प्रयोग हो रहा बा। तो ये सारा जो तत्व है वो कोनो ना कोनो रूप में हम सेवन भी कर रहा बा।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: समय से पहले ही हर फल मिले लगा था, समय से पहले सब्जी भी मिले लगा थी,
0: और मतलब हर सीजन ही मिला था। पहले सभी का भैया सीजनी फल आयल बा, सीजनी सब्जी आयल बा, लेकिन अब बाकी हर समय ये मिला था।
1: जेकर दुष्परिणाम सबसे बड़ा जोन देखल जाता पर्यावरण पर तो पड़ते है, और दूसरा चीज हमने की स्वास्थ्य भी पड़ता,
0: स्वास्थ्य पर भी।
1: और जोन हम जो उर्वरक का प्रयोग कर रहल बाटी वो उर्वरक से मिट्टी और जल कहल रहा, जब मिट्टी भी प्रदूषित होती है, जल भी प्रदूषित होता है, वायु भी प्रदूषित होती है।
0: जब भैया तीनों ही प्रदूषित हो तो स्वास्थ्य के लिए नुकसान बटले बा।
1: हाँ, तो अब जन ज्यादा से ज्यादा जैसे लोग बीमारियन से ग्रसित हो रहा बाट ना, तो आज सब बच्चे खातिर अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा खातिर सोचा था कि ऐसन हम जा आयुर्वेद प्रयोग करी ऐसन सब्जी का। अब आजकल मार्केट में सबसे ज्यादा जो हो गए ऑर्गेनिक सब्जी का कि हम ये जो ना ओकर रेट जो ना सीधे दोगुना दाम
0: मतलब लागत भी अधिक लगाता।
1: हाँ, तो अगर जो पंच भाई अगर जो जैविक खेती करा और उसे उत्पादन करत हम, तो वो प्रोडक्ट का जो है जो आप ज्यादा से ज्यादा मतलब दोगुने दाम पर बेच सकत हम। जवन रागी मोटा अनाज का सब प्रयोग पहले ना करे कल चाहत रहला, ना खाल चाहत बा,
0: आज के समय में वह डॉक्टर बतावत हो जेके दिक्कत हो।
1: और आजकल का सब जो ना जौ का रागी का मिक्स रोटी खाइले का खात बा, ताकि हम स्वस्थ रहें। तब एक तो साथ साथ ही जैविक खेती अगर जो में हम जा करत हैं, जहां हम जा कृत्रिम खाद का प्रयोग करत हैं, ओकरी जगह पे हरी खाद का प्रयोग करें।
0: हाँ, मतलब गोबर के खाद और बर्मी कंपोस्ट और जोन बा प्राकृतिक कीटनाशक के अगर प्रयोग कर जाए।
1: हाँ,
0: तो उससे बहुत ज्यादा तक फायदा मिली।
1: इसे पहले के समय में कीटनाशक की जगह सबसे ज्यादा यदि प्रयोग कर जात रहा है तो नीम का तेल का प्रयोग कर जात रहा, ओकर स्प्रे लोग कर देते,
0: पत्ती और छाल दोनों।
1: हाँ, कहीं अगर जो फोड़ा फुंसी होत रहा तो ओकर छाल का प्रयोग कर जात रहा है। तो हर चीज का जो आयुर्वेदिक तरीके से ओकर प्राकृतिक उपाय होत रहा है। लेकिन जो है कि बढ़ते परिवर्तन के साथ साथ हम जा ज्यादातर निर्भरता जो है हम जा बाजारी दुकानों पे हो गए हैं।
0: बिल्कुल, और बिल्कुल। जो मतलब केहू मेहनत कर नहीं चाहता, सब सोचा था कि भाई खरीद के ओकर उपयोग कर ली। तो देखिए अब अपने बैठकी के आगे बढ़ जाओ, अगर बातचीत होता जौन बाकी जैविक खेती के, तो यही पर एगो आई सुनल जा हरी खाद की फसलें, ये पर जानकारी देते हैं डॉक्टर राहुल कुमार सिंह, इनसे बनिया बतियावत हमें भैया विनय कुमार।
2: किसान भाइयों, गर्मी का समय चल रहा है, हम अपनी परंपरा को धीरे धीरे भूलते गए, यही कारण है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। सारा बोझ रासायनिक खादों के ऊपर पड़ रहा है, जिससे कृषि की लागत कई गुना बढ़ गई है और हमें अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं डॉक्टर राहुल कुमार सिंह, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक, गुरु गोरक्षनाथ कृषि विज्ञान केंद्र, चौक माफी, पीपीगंज, जनपद गोरखपुर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका इस कार्यक्रम में फोन लाइन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय कौन कौन ऐसी फसलें हैं कि जिनकी अगर बुआई करके हरी खाद के रूप में उनका इस्तेमाल किया जाए तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी, मिट्टी की बनावट में भी सुधार होगा, साथ ही साथ किसान भाइयों की जो लागत है वो भी कम की जा सकती है।
3: धन्यवाद। गेहूं के बाद और धान के पहले खाली न छोड़े खेत बनाए सुनहरे, हरी खाद करे तैयार जिससे हो मिट्टी का उद्धार। जी हाँ, आज ऐसा समय आ गया है। हमारे किसान बंधुओं ने इतना ज्यादा अंधाधुंध जो रासायनिक खाद थे, रासायनिक खरपतवार नाशी थे और रासायनिक कीटनाशक थे, उनका इतना अंधाधुंध प्रयोग कर लिया है कि आज जो मिट्टी की सेहत है वो बहुत हद तक बहुत ही ज्यादा दयनीय हो चुकी है। और ऐसी दशा में आने वाले समय में हम निरंतर अपनी मिट्टी से अच्छी उपज नहीं ले पाएंगे। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज ये आवश्यकता है कि हम अपनी खेती में कुछ ऐसे बदलाव करें कि अपनी जो मिट्टी की सेहत है उसको हम बड़े और व्यापक तौर पे उसमें सुधार लाया जा सके, तभी हम खेती से निरंतर अच्छी उपज ले पाएंगे। ऐसी दलहनी फसलें जिनको खेत में उगाकर और बीज या फसल तैयार होने से पहले ही जब वो हरेपन की अवस्था में रहती है तभी उसको खेत में पलटाई कर दिया जाता है या फिर कल्टीवेटर या फिर रोटावेटर के माध्यम से उसे खेत में ही दबा दिया जाता है, तो ये जो प्रक्रिया है इसको हम ग्रीन मैन्योरिंग कहते हैं। या हरी खाद के लिए बहुत सी हमारी ऐसी दलहनी फसलें हैं जैसे ढैंचा है, सनई है, ग्वार है, उर्द है, मूंग है और लोबिया है, और न जाने बहुत सारी ऐसी हमारी दलहनी किस्में हैं जिनको हम हरी खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और पहले ही मैंने बताया कि गेहूं के बाद और धान के पहले बुआई की जाने वाली फसल है, यानी कि अप्रैल का जो अंतिम सप्ताह है उससे लेकर और करीब जून और मध्य जुलाई तक आप जो है इसकी बुआई धान की फसल की बुआई से पहले कर सकते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम ये जानना जरूरी होता है कि किस प्रकार की मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है। जैसे मैंने बताया कि ढैंचा है, ढैंचा एक ऐसी हरी खाद की फसल है जिसे आप लगभग हर तरह के जलवायु में और हर प्रकार की मिट्टी में आप उसको जो है उगा सकते हैं, और इसमें जो है बहुत ज्यादा जो है लागत भी नहीं आती है, और कम लागत में हम अगर चाहें तो अपनी जो है मिट्टी की दशा और दिशा उसको सुधार सकते हैं। इसके अलावा जो है अब बात आती है भूमि की तैयारी की। इसमें जो है आप बीज की जो है बुआई से पहले खेत में जो है नमी का होना अत्यंत आवश्यक है। इस समय जो गर्मी का मौसम चल रहा है, अगर इसमें मई महीने में अक्सर जो है बूंदाबांदी होती है तो उसके बाद हम इस कल्टीवेटर से जुताई करने के बाद इसकी बिजाई हम आसानी से कर सकते हैं। अगर बारिश नहीं होती है तो ऐसे क्षेत्रों में अगर हम चाहें तो सिंचाई करने के बाद भी हम मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई कर दें और फिर इसकी बिजाई करके इसमें जो है कल्टीवेटर चला दें ताकि ये खेत में अच्छी तरह से मिल जाए और फिर पाटा लगा दें, तो बहुत ही अच्छे तरह से उसमें जर्मिनेशन होगा। बिजाई का एक तरीका और है, जैसे ये तो एक सामान्य जो छोटा किसान बड़ा किसान हर किसान करता है छिड़कवा विधि से, इसके अलावा अगर इसको आप चाहें तो ड्रिल के माध्यम से भी आप लाइन से भी बो सकते हैं। और मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आपके पास संसाधन है तो आप इसको जो है लाइन से बोएं। जब लाइन से आप बोएंगे तो इसमें जो है पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी आपको 20 से 25 सेंटीमीटर आपको रखना है। तो अगर आप ऐसे इसकी बुआई करते हैं तो निश्चित तौर पे पौधे का जो विकास है वो बहुत ही बढ़िया होगा, और जब पौधे का वृद्धि विकास बढ़िया होगा तो जब आप उसको खेत में पलटाई करेंगे तो निश्चित तौर पे उसमें से जीवांश पदार्थ की मात्रा अच्छी मिलेगी, नाइट्रोजन की अच्छी पूर्ति होगी, फास्फोरस की अच्छी मात्रा मिलेगी और अन्य बहुत सारे ऐसे जीवांश हैं जो उसमें पोषक तत्व हैं जो आपको खेत में जिसकी मात्रा बढ़ जाएगी। इसके लिए बीज दर की अगर मैं बात करूं तो अगर आप ढैंचे की बुआई कर रहे हैं तो ढैंचे के लिए करीब 60 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से पर्याप्त है। अगर आप सनई की बुआई करते हैं तो सनई में करीब 80 से 90 किलोग्राम अगर आप बीज की बुआई करते हैं तो वो एक हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होगा। अगर आप इसे ड्रिल से या मशीन से लाइन से बोते हैं तो निश्चित तौर पे बीज की मात्रा में आपकी बचत होगी और करीब 35 किलोग्राम से 40 किलोग्राम बीज आपका ढैंचे में लगेगा। इसमें जो और जो ध्यान देने वाली बात है, जैसे सिंचाई एक बहुत ही अहम मुद्दा हो जाता है खेती में, लेकिन अगर हरी खाद की मैं बात करूं तो इसकी जो बुआई का समय है वो कुछ ऐसा है कि इसमें बहुत ज्यादा सिंचाई पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर समय समय पे बारिश हो जाए तब, अगर बारिश नहीं होती है तो कम से कम 2 से 3 सिंचाई आपको करना पड़ेगा और करीब हर 15 दिन के अंतराल पे अगर आप सिंचाई कर दें तो निश्चित तौर पे ढैंचे या सनई की फसल में अच्छी वृद्धि और विकास होगी। इसके लिए चूंकि ये खुद एक खाद का कार्य फसल आपको खेत के लिए कर रहा है तो इसमें उर्वरक देने की कोई विशेष ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन अगर आपकी मिट्टी की उर्वरक क्षमता बहुत ही कमजोर है, उसमें नाइट्रोजन का लेवल बहुत ही ज्यादा कम है, फास्फोरस का लेवल बहुत ज्यादा कम है, उसी दशा में आपको उर्वरक देने की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा आपको उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं होती। अगर उर्वरक देने की आवश्यकता है खेत में, मिट्टी आपकी मिट्टी में जो है नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा कम है, तो आप 10 से 20 किलोग्राम तक नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से आप दे सकते हैं बुआई से पहले ही, बुआई खेत की तैयारी के समय।
2: इतना मेहनत करने के बाद जो हरी खाद की फसलें हैं उससे किसान भाई को अलग अलग पोषक तत्वों के रूप में या कुल जो हरा पदार्थ है खेत में, कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो या अन्य भी जो उसके लिए जरूरी पोषक तत्व मिट्टी को उपलब्ध कराने हैं, कितना मिल जाता है और कितने खाद की बचत होती है, कितना लाभदायी है ये हरी खाद?
3: जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। ये जो फसल है, जैसा पहले ही मैंने आपको बताया कि एक इसे जो है खाद के लिए, हरी खाद के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है खेत में, तो उसके लिए अगर आप एक हेक्टेयर में अगर आप हरी खाद की बिजाई करते हैं, बुआई करते हैं, तो उसकी जब आप 45 से 50 दिन बाद या 45 से 60 दिन बाद जब आप उसकी पलटाई करेंगे,
2: फूल आने से पहले जब
3: जी
2: पौधा हरा भरा हो,
3: बिल्कुल फूल आने से पहले पौधा हरा भरा हो, उसके बाद आपको उसकी पलटाई करनी है और पलटाई के समय ध्यान देना है कि अगर उसमें 4 से 5 सेंटीमीटर पानी अगर रहे, फसल को अपघटित होने में और ज्यादा आसानी रहेगी। फसल जब सड़ जाएगा तो प्रति हेक्टेयर से जो हरा पदार्थ है वो ढैंचे में करीब 20 से 30 टन हरा पदार्थ उससे खेत को आपको प्राप्त होता है और लगभग इतना ही 20 से 25 टन सनई से भी आपको हरा पदार्थ प्राप्त होता है। इस प्राप्त हरे पदार्थ से करीब 80 से 105 किलोग्राम तक नाइट्रोजन की पूर्ति आपके खेत में हो जाती है। हरा खाद खेत में लगाते हैं धान की बुआई से पहले तो करीब 80 से 105 किलोग्राम तक आपको जो है नाइट्रोजन की पूर्ति आपके खेत में हो जाएगी। फास्फोरस की भी 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पूर्ति होती है इसे, और पोटास की अगर मैं बात करूं तो 8 से 10 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से आपके खेत में जो है ये अवेलेबल हो जाता है हरी खाद के माध्यम से।
2: मिट्टी की जो दशा है, संरचना है, उसमें जीवाणुओं के रहने की क्षमता है, जो लाभदायक जीवाणु है उसमें कितना वृद्धि होती है?
3: जी, ये तो मैंने खाली एक पक्ष रखा था, बिल्कुल आपका प्रश्न जायज है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। दूसरा इसका जो पहलू है वो ये है कि आपकी जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है? जैसे ये दलहनी फसल है और दलहनी फसल के आप जानते होंगे कि इसकी जड़ों में जो है ऐसे जीवाणु होते हैं जो वायुमंडल से नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, तो ये जो जीवाणु होते हैं वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं जिससे आपको ये मात्रा प्राप्त होती है। साथ ही साथ इन जीवाणुओं की और खेत में जो और सूक्ष्म तत्व हैं इनके मिलने से जो है खेत की जो सूक्ष्म जीव है उनकी संख्या में बहुत ही ज्यादा वृद्धि होती है और ये अब जो फसल अब घटित होते हैं खेतों में मिलते हैं तो आपकी खेत की जो है नमी शोषित करने की क्षमता में वृद्धि विकास होता है, उसकी जो भौतिक संरचना है वो सुधरती है और आपके चूंकि ये ढैंची की जो फसल है या हरी खाद की और जो अन्य फसलें हैं ये खेतों में अंदर तक जाती हैं और पूरी मिट्टी में फैल जाती हैं इसकी जड़ें, तो पूरी तरह से एक अच्छी तरीके से वायु का संचार आपकी मिट्टी में होता है, तो मिट्टी की ओवरऑल जो दशा है वो उसमें बहुत ज्यादा सुधार आती है, उसकी उर्वरक शक्ति बढ़ती है और उसकी उपज देने की शक्ति आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि वो बढ़ जाती है।
2: डॉक्टर राहुल सिंह, आप फोन लाइन से जुड़ के हरी खाद की फसलों के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दिए और हम समझते हैं कि किसान भाई सुन रहे हैं अगर ये बात, तो इस साल अवश्य इस समय खेत में अपने हरी खाद की फसलों को उगाएंगे और मिट्टी की दशा संरचना और उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाएंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: खूब निम्न ही जानकारी रहे हरी खाद की फसलें पर जानकारी देते रहे डॉक्टर राहुल कुमार सिंह, इनसे बतियाओ तरन भैया बिना कुमार, तो इनके दिए जाए धन्यवाद। और लगल हाथ आई सुनल जाए एगो लोकगीत।

0: पंच भाई खूब निम्न ही मनमन शायन भइल। अंजनी कुमार और साथी के आवाज में आयल हरियाली और देखिए बैठकी के और आगे बढ़ावल जाए और सुनल जाए एगो वार्ता, पशुओं के नवजात बच्चों की देखभाल। ये पर जानकारी देते हैं डॉक्टर सतीश कुमार सिंह, तो अपन किसान भाई जानकारी लें।
1: नवजात बच्चों का देखभाल के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमको कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहले हमको क्या करना है कि पशुशाला में गाय को जब आप बांधते हैं, सबको पता चलता है कि जब गाय बच्चा देने होती है तो काफी उछल कूद करती है, तकलीफ होती है, तो उसको पशुशाला के बीचों बीच बांधते हैं। कभी कभी आप क्या करते हैं कि उसको किनारे बांध देते हैं तो वो दीवारों से उसका सिर लड़ जा सकता है, तो आप उसको बीचों बीच बांधिए। अब जब गाय बच्चा देती है तो उसमें आप देखेंगे कभी कभी क्या होता है कि उसको एक साक लगता है और उसकी श्वास नहीं चलती है, तो उस समय हम लोग क्या करें कि तुरंत, चूंकि चिकित्सक नहीं उपलब्ध होता है, तो पसलियों को बार बार प्रेशर करते हैं। पसलियों को बार बार प्रेशर करने से उसका जो श्वास है वो चलने लगता है। इसके पहले हमको ये करना चाहिए कि जब भी देखिए तो जैसे बच्चा जमीन पे आ जाए तो उसको उसके नाक को अच्छे तरीके से, चूंकि उसमें म्यूकस भरा होता है, तो नाक को साफ कर लीजिए, कान को साफ कर लीजिए, मुंह को साफ कर लीजिए। इस जब साफ कर लेंगे तो उसकी श्वास अपने से चलने लगती है, और कभी कभी जब नहीं चलती है तो उस केस में आपको पसलियों पे थोड़ा प्रेशर देना पड़ता है, तो फिर वो बच्चा श्वास लेने लगता है। अब बात आती है, कभी कभी ये देखा जाता है हमारे किसान भाई, पशुपालक भाई भ्रम में रहते हैं कि उनको खीस कब पिलाया जाए, कैसे पिलाया जाए। तो सबसे पहले जब वो बच्चे को साफ सफाई आप कर देते हैं अच्छे तरीके से, तो उसको कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी वो जितना जल्दी हो सके खीस पी ले, क्योंकि खीस में एक ऐसा तत्व होता है इम्यूनोग्लोबिन जो कि उसको जीवन भर के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। तो ये खीस, जिसको आप गांव में फेनुस भी बोलते हैं, इसको पिलाना नितांत आवश्यक है। अब पशुपालक भाई ये प्रश्न करेंगे कि हमको खीस कितना पिलाना चाहिए, इसमें पिलाने में ये जितना वो पेट भर पी सके, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि उसको रुक रुक के थोड़ा थोड़ा करके पिलाए, क्योंकि और इसको 12 घंटा, बच्चा देने के 12 घंटा के पहले ही कोशिश करिए कि वो खीस पी ले। कभी कभी खेरी, जिसको आप प्लेसेंटा है, खेरी उसको बोलते हैं, खेरी नहीं गिरी रहती है, तो आप लोग बच्चे को 24 घंटे तक 36 घंटे तक फेनुस नहीं पिलाते हैं। तो ऐसी दशा में क्या होता है कि वो जो प्राकृतिक तत्व है इम्यूनोग्लोबिन, उसका जो सदुपयोग उसके शरीर में होता रोग प्रतिरोधक क्षमता के रूप में, तो वो नहीं हो पाएगा। तो ऐसी दशा में आप उसको तत्काल जितना जल्दी हो सके उसको जितनी इच्छा हो थोड़ी थोड़ी करके उसको पिलाते रहें। अब जो बच्चा है, नवजात बच्चा है, उसका आप देखते होंगे जो नाभि होती है वो लटकी रहती है, क्योंकि प्लेसेंटा उसी से जुड़ा होता है, टूट जाता है। तो इसको सबसे पहले हमको एक निर्जमित चाकू ले लेना चाहिए, चाहे ब्लेड ले लेना चाहिए, उसको हम निर्जमीकृत कर लेते हैं। एक धागा ले लीजिए, वो भी निर्जमीकृत होना चाहिए। इसको ऊपर से 2 इंच छोड़ करके खूब टाइट बांध देना चाहिए, और बांधने के बाद उसके नीचे से काट देना चाहिए। अब काटने के बाद हर मेडिकल स्टोर पे टिंक्चर आयोडीन मिलता है, टिंक्चर आयोडीन का पेंट उसको नाभि पे लगा देना चाहिए। ऐसे लगा देने से भविष्य में चल के आप देखते होंगे कि बहुत सारे चिड़िया हैं, चाहे कोई जानवर है, उसके नाभि को खींच लेता है और वहां पे फोड़ा हो जाता है, जिसको नावेल इल कहते हैं। तो ऐसी बीमारी से बचाने के लिए, जिसको नाभि का फोड़ा कहते हैं, तो बचने के लिए आप इसको काट देना चाहिए जैसा हमने बताया। कभी कभी लोग धागे से नहीं बांध, उसे काट देते हैं, तो उसमें पूरे शरीर की ब्लीडिंग होने की संभावना रहेगी। तो ऐसी दशा में आप कदापि इस तरह की बातें न करें, धागे से बांध करके ही करें। साथ ही जब बच्चा पीने लायक हो तो उसको आप ये देखिए कि उसके शरीर भार का 1/10 हिस्सा प्रतिदिन उसको दूध मिलना चाहिए, जो भी उसका वजन है उसका 1/10 हिस्सा। तो इस तरह से आप उसको प्रतिदिन पिलाते जाएंगे और आगे चल करके 2 से 3 सप्ताह पे धीरे धीरे दूध की मात्रा को कम करते हैं, और इसकी मिल्क या करते हैं वसा निकाल करके, छाछ हो, जिसको आप मंठा बोलते हैं, दही का घोल, इस सबको आप पिला सकते हैं रोटी डाल करके। और जब 3-4 महीने का बच्चा हो जाता है तो उसके मुलायम जो घासें होती हैं, हरी घासें होती हैं, इसको 100-200 ग्राम उसको देने का प्रयास करें, क्योंकि 6 महीने तक उसका धीरे धीरे जाते जाते र्यूमन का डेवलप हो जाता है, र्यूमन विकसित हो जाता है, फिर वो चारों का पाचन करने लगेगा। तो इस तरह से आप इसको आहार में बदलाव ले आकर के चारों पे उसको शिफ्ट करेंगे, और दाने की मात्रा भी 100 ग्राम से शुरू करके 200, 300, 400, 500 ग्राम तक दाने इसको, और दाने पचनी होना चाहिए। साथ ही यहाँ की जहां के रख रखाव की बात है, तो बच्चों को देखिए बाह्य परजीवी भी काफी प्रभावित करते हैं, तो ऐसी दशा में आपको पशुशाला को काफी सफाई रखना चाहिए, खासतौर से उसके दीवारों को आप चूना और गेरू फिनाइल इसका घोल बना करके उसको पुताई करते रहें, जिससे कि जो किलनियां हैं उनके अंडे बच्चे मक्खियां ये सब उसके पास नहीं आएंगी। और साथ ही छोटे बच्चों में एक परेशानी आती है, आप उसको व्हाइट स्कॉट बीमारी कहते हैं, तो कभी कभी लोग कहते हैं कि ज्यादा फेनुस पी लेने से, ज्यादा दूध पी लेने से वो बच्चा सफेद दस्त करता है, तो वो एक बीमारी होती है, एक बैक्टीरियल बीमारी होती है जीवाणुओं द्वारा, तो ऐसा नहीं है कि वो दूध पीने से होता है, उसके जो गोबर होते हैं वो काफी सफेद कलर के हो जाते हैं, तो इसमें

0: उनके टीकाकरण की भी जैसा जो रिकमेंडेड होगा, जिस तरह के टीके होते हैं उनकी सलाह।
1: खूब निम्न जानकारी रहल है पशुओं के नवजात बच्चों की देखभाल पर जानकारी देते रहिए डॉक्टर सतीश कुमार सिंह, तो इनके दिए जाए धन्यवाद। और एक साथ ही अपने बैठकी के भी समय होगा तो हम उनके दें अनुमत। पंचो जय जवान जय किसान।

0: अभी कृषक भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम खेती बाड़ी आकाशवाणी का, ये गोरखपुर केंद्र है। गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में सूचना सुनिए। गुमशुदा व्यक्ति का नाम विशाल कुमार राम, पिता का नाम रामलाल राम। विशाल कुमार की उम्र 16 वर्ष है, लंबाई करीब 5 फीट 2 इंच है। विशाल कुमार दिनांक 27 मार्च से हल्दी बलिया से लापता है। विशाल कुमार के बारे में यदि आपको कोई सूचना मिले तो आप सीओ बैरिया जनपद बलिया से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। एक और गुमशुदा व्यक्ति के संबंध में सूचना प्राप्त हुई है। नाजनी परवीन की उम्र करीब 16 वर्ष है, लंबाई करीब 5 फीट है, रंग गोरा है। ये दिनांक 17 मार्च 2026 से दोपहर बलिया से लापता है। नाजनी परवीन के बारे में यदि आपको कोई सूचना मिले तो आप क्षेत्राधिकारी बलिया से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। एक और गुमशुदा व्यक्ति के संबंध में सूचना प्राप्त हुई है। काजल, पिता का नाम मतलू उर्फ झूलन। काजल की उम्र करीब 17 वर्ष है, लंबाई करीब 5 फीट है। ये दिनांक 13 मार्च 2026 से रसड़ा बलिया से लापता है। काजल के बारे में यदि आपको कोई सूचना मिले तो आप क्षेत्राधिकारी रसड़ा जनपद बलिया से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में सूचना संपन्न हुई। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details, log on to www.ddindia.com।
4: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
5: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
4: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
5: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
4: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
5: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
6: स्वच्छता से बदले अपना परिवेश, स्वच्छ जीवन की ओर एक कदम बढ़ाएं।
7: स्वच्छता अपनाएं, स्वास्थ्य का आनंद उठाएं।
6: गंदगी हटाओ, स्वच्छता लाओ, स्वस्थ जीवन जीने का सपना साकार करो।
7: स्वच्छता की आदत, स्वस्थ जीवन की शुरुआत।
0: आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं छेदी प्रसाद यादव के गाए लोकगीत।

सियास भूली गई ले सुधिया हमारे हो विदेशिया, भूली गई ले सुधिया हमारे हो विदेशिया, भूली गई ले सुधिया हमारे हो विदेशिया।

0: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
1: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
0: अरे वही अपना 60 रुपया।
1: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
0: तो देख दो तरीके हैं, पहला आधी दाढ़ी करा ले।
1: और दूसरा?
0: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
1: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
0: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।

0: स्वच्छता से बदले अपना परिवेश, स्वच्छ जीवन की ओर एक कदम बढ़ाएं।
1: स्वच्छता अपनाएं, स्वास्थ्य का आनंद उठाएं।
0: गंदगी हटाओ, स्वच्छता लाओ, स्वस्थ जीवन जीने का सपना साकार करो।
1: स्वच्छता की आदत, स्वस्थ जीवन की शुरुआत।

0: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
1: हाय यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
0: अरे वही अपना 60 रुपया।
1: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
0: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
1: और दूसरा?
0: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
1: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
0: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: अच्छा।

0: अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। आज के कलाकार थे छेदी यादव। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं भोजपुरी कार्यक्रम देसमार। देसमार में आज आप सुनेंगे भोजपुरी काव्य पाठ। आज के कवि हैं त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी चंचरीक।
1: अब पश्चिमी सभ्यता के तरफ अपने गांवन के बढ़त देख के हमारे मन में कुछ मतलब अजीब भाव उत्पन्न होता हो के बयान करता नहीं। का हो गईली ताल तलैया का भय पीपर छाँव रे अभिन सहरे जत सारी गुजे जहाँ कहाँ गईल मोर गाँव रे। नदी किनारे पपिया बोले कोइलर घन बसवारी ताक ताक घर पाहुन अल कौआ नीमिक डारी। अतिथि देवता के सेवा सब ठाड़ रहत एक पाँव रे। का हो गईली ताल तलैया का भय पीपर छाँव रे। गौरैयन के बनल घोतौना घर भीतर चौबारा अपट्टू सीता राम कहें नित पिजड़ा टंगल वो सारा। मेघा मरले पाप परे जहाँ चिटियो दबे न पाँव रे। का हो गईली ताल तलैया का भय पीपर छाँव रे। जहाँ मुर्गन के बोलले से जानल जात बिहान मंदिर में जहाँ घंटा गूंजत मस्जिद होत अजान। चाय के चुस्की रहलन जहाँ रस भूजा गदराँव रे। का हो गईली ताल तलैया का भय पीपर छाँव रे। होली ईद दिवाली क्रिसमस लहड़ी मिल के मनावे अखा पकवान व सेवई घर घर सबके घरे लगावे। कीर्तन होरी झारी गावे संगर शंकर अजमत खाँव रे। का हो गईली ताल तलैया का भय पीपर छाँव रे। मैयत गाने चिता जरावे हिंदू मुस्लिम संग में पढ़े मरसिया पच लकड़ी दे दफन फरक न कौनो ढंग में। करें त्योहारम ब्रह्म भोज मिल खात रहल सब गाँव रे। का हो गईली ताल तलैया का भय पीपर छाँव रे। कान्हे पर हर लिहल कान्हे पर हर लिहल बैल के जोड़ी हकत किसान बोझा बीड़ा कहाँ गईल का भैल भरल खरिहान। हाय मशीनरी करण मेटौलस ई सगरिन के नाव रे। का हो गईली ताल तलैया का भय पीपर छाँव रे। दूध दही के नदी बहे जहाँ लहरे बाग बगीचा छोड़का बड़का एकठंग बैसे लागत घास गलैचा। अदबली हाजर हल सबके मन नाहिन किच किच काँव रे। का हो गईली ताल तलैया का भय पीपर छाँव रे। गुल्ली डंटा चिका कबड्डी कुश्ती आ तैराकी खेले लैके नावन जाने क्रिकेट गेम व हॉकी। बीच खेल में भागत जे भी मांगत अपन दाँव रे। का हो गईली ताल तलैया का भय पीपर छाँव रे। ढोलक झाली मृदंग भैल का भय मसूरी डफला अहुरुका चंग फरौधी का भय सरंगी तबला। रेडियो और सिनेमा कैलस सगरिन पर पथराँव रे। का हो गईली ताल तलैया का भय पीपर छाँव रे। कहाँ गईल सोहरया कजरी कहवा होरी उलारा लोरकाइन बिरहा धोबियउआ कहवा गईल धमारा। संझा और पराती का भय लोरी लुभाँव रे। कहाँ हो गईली।

0: कहाँ बहन बहनोइया, मम्मी डैडी ब्रदरवा अंकल आंटी मन भटकाओ रे, का हो गईली ताल तलैया, का भय पी पर छाओ रे। गूंजत मस्जिद होत अजान, चाय के चुस्की रहलन जहाँ रस भूजा गदराओ रे, का हो गईली ताल तलैया, का भय पी पर छाओ रे। होली ईद दिवाली क्रिसमस लहड़ी मिल के मनावे, अखा पकवान व सेवई घर घर सबके घरे लगावे, कीर्तन होरी झारी गावे संगर शंकर अजमत खाओ रे, का हो गईली ताल तलैया, का भय पी पर छाओ रे। मैयत गाने चिता जरावे हिसन हिंदू मुस्लिम संग में, पढ़े मरसिया पच लकड़ी दे दफन फरक न कोनो ढंग में, करें चहारम ब्रह्म रोज ब्रह्म भोज मिल खात रहल सब गाँव रे, का हो गईली ताल तलैया, का भय पी पर छाँव रे।
1: अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी कार्यक्रम देश हमार। देश हमार में भोजपुरी काव्य पाठ प्रस्तुत कर रहे थे त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी चंचरीक। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आइए तो सुनते हैं प्रादेशिक संगीत का कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसमें आज आप कश्मीरी लोकगीत सुनेंगे।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक संगीत का कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसमें आज आप कश्मीरी लोकगीत सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। शाम के 7:18 हुए हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से रिले होंगे।

स्वामी विवेकानंद के अनुसार तुम ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं कर सकते जब तक स्वयं में विश्वास न कर लो। जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा। ग्रेड ए धान के लिए 2,461 रुपए और अरहर दाल के लिए 8,450 रुपए प्रति क्विंटल होगी एमएसपी। वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटाया सुरक्षा काफिले का आकार। प्रदेश में भी ईंधन बचाने के विभिन्न उपायों पर जारी हुए दिशा निर्देश। सीबीएसई के 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित। 85% से ज्यादा विद्यार्थी पास, छात्राएं रही अव्वल। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। सीतापुर और कानपुर देहात में गिरे ओले। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन के लिए किसानों को अनुमानित 2,60,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल की अधिकतम बढ़ोतरी सूर्यमुखी बीजों के लिए की गई है। ग्रेड ए धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,461 रुपए प्रति क्विंटल, सामान्य के लिए 2,441 रुपए प्रति क्विंटल, हाइब्रिड ज्वार के लिए 4,023 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरे के लिए 2,900 प्रति क्विंटल, मक्का के लिए 2,410 रुपए प्रति क्विंटल और अरहर दाल के लिए 8,450 रुपए प्रति क्विंटल, मूंग के लिए 8,780 रुपए प्रति क्विंटल होगा। मंत्रिमंडल के फैसलों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आभार जताया है। खरीफ फसलों की एमएसपी वृद्धि पर प्रदेश के किसानों ने खुशी जताई है। वाराणसी के किसान दुर्गेश ने बताया कि इससे किसानों को फायदा होगा।
2: जो केंद्र सरकार ने हम जैसे किसानों के लिए जो समर्थन मूल्य बढ़ाया है, ये एक तरह से अगर कहा जाए तो ये बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि जिस तरह से समर्थन मूल्य जो घट रहा था, हम किसानों को बड़ा ही घाटा हो रहा था, लेकिन एमएसपी बढ़ने के साथ साथ हम लोगों की आय में भी दुगुना होगी और इस सरकार के फैसले को हम बहुत ही सराहना पूर्वक उन्हें धन्यवाद देते हैं।
0: पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी हैं। एक रिपोर्ट।
3: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेशवासियों से प्रधानमंत्री के आह्वान से जुड़ने की अपील की। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से कहा कि ईंधन की खपत कम करें और अनावश्यक सोने की खरीद न करें। उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री व मंत्रियों आदि की फ्लीट में तत्काल 50% की कमी की जाए। पेश है एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इसी क्रम में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने विधानसभा की संसदीय समितियों के पूर्व निर्धारित अध्ययन भ्रमण के समस्त कार्यक्रमों को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का 38 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी पत्नी अपर्णा यादव भाजपा की सदस्य हैं और वर्तमान में राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपर्णा यादव के घर जाकर प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी घर जाकर शोक संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 16 मई को गोरखपुर में अंचल के पहले और प्रदेश के चौथे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम को देखते हुए जिलाधिकारी दीपक मीणा ने संबंधित अधिकारियों के साथ आज परियोजना स्थल का निरीक्षण किया। एक रिपोर्ट।
5: निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य की प्रगति, गुणवत्ता और व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कार्य में तेजी लाने और सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने पर जोर दिया। गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग पर स्थित ताल नदौर में यह इंटरनेशनल स्टेडियम 392.94 करोड़ रुपए की लागत से आकार लेगा। निर्माण के लिए पहली किस्त के रूप में 63.39 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष CBSE की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थीं। CBSE ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। मुख्य सचिव SP गोयल ने आज जनगणना 2027 के तहत प्रदेश में चल रही स्वगणना प्रक्रिया की समीक्षा कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को अभियान में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि आम जनों के बीच व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए। दुग्ध उत्पादक कंपनी अमूल ने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जो कल से पूरे देश में लागू हो जाएंगी। राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में बारिश और तेज आंधी की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। सीतापुर जिले में कई स्थानों पर ओले गिरे, कई जगहों पर पेड़ गिरने से विद्युत आपूर्ति बाधित हुई। वहीं कानपुर देहात के रसूलाबाद थाना क्षेत्र में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। अमरोहा में भी दिन में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। कई स्थानों पर पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित हुआ। हालांकि मौसम विभाग ने कल से प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। विभाग के मुताबिक प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में 16 और 17 मई को लू चलने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा। ग्रेड ए धान के लिए 2,461 रुपए और अरहर दाल के लिए 8,450 रुपए प्रति क्विंटल होगी MSP। वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटाया सुरक्षा काफिले का आकार। प्रदेश में भी ईंधन बचाने के विभिन्न उपायों पर जारी हुए दिशा निर्देश। CBSE के 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित। 85% से ज्यादा विद्यार्थी पास, छात्राएं रहीं अव्वल। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। सीतापुर और कानपुर देहात में गिरे ओले। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

0: गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार नहीं जा सकते।
1: आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। आज का कलाकार, श्रोताओं आज के कलाकार हैं कृष्ण कुमार, जिन्हें हम प्यार से के कहते हैं। तो आइए सुनते हैं के की आवाज़ में कुछ फिल्मी गीत। पहला गीत हमने लिया है, फिल्म का नाम है पल।

0: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।

0: हो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: अभी आप सुन रहे थे केके के आवाज में फिल्म तुम मिले का गीत। आइए सुनते हैं केके के आवाज में एक और गीत, फिल्म का नाम क्रुक।

शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: अभी आप केके की आवाज में सुन रहे थे फिल्म हम सफर का गीत। आइए सुनते हैं केके की आवाज में एक और गीत, फिल्म का नाम है जन्नत 2।

फिल्म जन्नत दो के गाय के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं हिंदी कार्यक्रम। हिंदी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे डॉक्टर ज्ञानेंद्र द्विवेदी का काव्य पाठ।

एक मुक्तक से बात शुरू करता हूं। अक्षर थे पास जिनके अक्षर वही मिले, अक्षर थे पास जिनके अक्षर वही मिले, यूं तो मिले हजारों खुलकर वही मिले, यूं तो मिले हजारों खुलकर वही मिले, और दिन भर जो बनाते रहे मंजिल पे मंजिलें, दिन भर जो बनाते रहे मंजिल पे मंजिलें, जब शाम हुई अक्सर बेघर वही मिले। वो बाजार में जिंदगी बेचता है, वो बाजार में जिंदगी बेचता है खुश तो नहीं पर खुशी बेचता है, वो बजाता है सरगम की धुन पर कहरवा, है 10 वर्ष का बांसुरी बेचता है 10 वर्ष का बांसुरी बेचता है। और एक मुक्तक भारत बोल रहा है, देश बोल रहा है हमारा, वो और लोग होंगे यारो जो तूफानों से डरते हैं, वो और लोग होंगे यारो जो तूफानों से डरते हैं, हम खोकर पाते हैं सब कुछ वो पाकर खोया करते हैं, ऐ अब्र हमें तू बार बार सैलाब की धमकी देता है, ऐ अब्र हमें तू बार बार सैलाब की धमकी देता है, हम तो दरिया की छाती पर तरबूज की खेती करते हैं, हम तो दरिया की छाती पर तरबूज की खेती करते हैं। और एक मुक्तक श्रृंगार का प्रस्तुत करके मैं कुछ छंद पढ़ना चाहूंगा कि दूर हूं पर बहुत पास मैं, दूर हूं पर बहुत पास मैं, तुम हो श्रद्धा तो विश्वास मैं, और एक सच रूप की राश तुम, एक सच रूप का दास मैं। अब मैं एक बसंती छंद पढ़ करके अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि

देख ल जाई गई, अब देखत देखत बीत गई, सलिया होरिया फिर आई गई, अब देखत देखत बीत गई, सलिया होरिया फिर आई गई, पियवा पियवा पपिहा जुरटे अर कोइली बैन सुनाई गई, पियवा पियवा पपिहा जुरटे अर को

भीमा ने की। और अगला दृश्य देखें कि मण राई रहे विरही, सोचती है मण राई रहे फूलवा भंवरा, मण राई रहे फूलवा भंवरा, निज अंगन देख ल जाई गई। अब गेनवा

क्या गदराई गई और संग कै सखिया सब फूले फले देहिया उनके पियराई गई। संग कै सखिया सब फूले फले देहिया उनके पियराई गई। और अंत भला तो सब भला, रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आ जाती है और अंतिम क्षण प्रस्तुत करता हूँ कि जब विरही सोचती है कि मैं अब आत्महत्या कर लूंगी तो बात बन जाती है कि नीचे जी

तो भाई गई, तो ट्रेन से आवाज आती है, सीटी बजती है कि बिरही अब काहे तू सोच करे, बिरही अब काहे तू सोच करे, अखिया बदला बरसाई गई, मैं बसंत में ले गई तोर पिया, मैं बसंत में ले गई तोर पिया, फिर लेके बसंत में आई गई, मैं बसंत में ले गई तोर पिया, फिर लेके बसंत में आई गई। और भगवान राम के ऊपर एक गजल प्रस्तुत करना चाहता हूँ, और हमारा देश बोलता है, क्या कहता है सुनिएगा, कि हमारी राह में आए तो पर्वत तोड़ देते हैं, हमारी राह में आए तो पर्वत तोड़ देते हैं, जरूरी हो तो दरिया के भी रुख को मोड़ देते हैं, और भरत हैं राम लक्ष्मण हम, हमारा इम्तहा मत लो, भरत हैं राम लक्ष्मण हम, हमारा इम्तहा मत लो, पिता के इशारे पर अयोध्या छोड़ देते हैं, पिता के इशारे पर अयोध्या छोड़ देते हैं, और करे सम्मान नारी का बिठाते हैं उसे सर पर, बिठाते हैं उसे सर पर, करे सम्मान नारी का, बुरी नजरों से देखे आंख उसकी फोड़ देते हैं, बुरी नजरों से देखे आंख उसकी फोड़ देते हैं, बुरी नजरों से देखे आंख उसकी फोड़ देते हैं।

जाने दो। अंतिम बंद है, बहुत विवश है दीपक तेरा, संकेतों में जीता निश दिन। बहुत विवश है दीपक तेरा, संकेतों में जीता निश

अभी आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हिंदी कार्यक्रम में काव्य पाठ प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर ज्ञानेंद्र द्विवेदी। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम अनुगूज। आज के कलाकार हैं अदनान सामी।

0: स्वच्छता से ही मिलेगी खुशहाल और सुरक्षित जिंदगी।
1: स्वच्छता का संकल्प लाओ, गंदगी को दूर भगाओ,
0: कूड़ेदान में कूड़ा डालो, साफ सफाई का ध्येय अपनाओ,
1: हर गली हर मोहल्ला हो साफ, स्वच्छता से ही मिलेगी खुशियों की सौगात।
0: स्वच्छता का ये संकल्प लें, गंदगी को दूर भगाएं,
1: हर जगह स्वच्छता का दीप जलाएं, स्वस्थ और सुंदर जीवन को अपनाएं।

0: स्वच्छता का संदेश फैलाओ, हर जगह सफाई लाओ,
1: कूड़ा कचरा सही जगह डालो, स्वच्छता की आदत अपनाओ,
0: साफ सफाई से जीवन सुहाना, स्वस्थ समाज का सपना सजाना,
1: गली मोहल्ला शहर हर क्षेत्र हो चमकदार, स्वच्छता का नियम सबको समझाओ बिरयार।

शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।

सुगम संगीत का कार्यक्रम अनगोज इस समय आप आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से सुन रहे हैं। आज के कलाकार हैं अदनान सामी। तो आइए सुनते हैं अदनान सामी की आवाज़ में कुछ और गीत।

0: कृपया ध्यान दें, रेलगाड़ी पर रंग, गुब्बारे, पत्थर, गोबर, कीचड़ आदि ना फेंकें, इससे यात्री घायल हो सकते हैं।
1: रेल यात्रा के दौरान ट्रेन व प्लेटफॉर्म पर स्वच्छता का ध्यान रखें। नशे की हालत में रेल यात्रा ना करें।
2: इसके अलावा अपरिचित व्यक्ति से खाने पीने की वस्तु स्वीकार ना करें। रेलवे से संबंधित किसी भी सहायता या सुझाव के लिए 139 डायल करें।
1: ये जानकारी पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

0: रेलवे ट्रैक के किनारे झाड़ियों, सूखी घास और खेतों की पराली में आग ना जलाएं। इससे ट्रेनों का परिचालन बाधित होता है एवं दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है।
1: रेल यात्रा के दौरान ट्रेन में पटाखे या कोई भी ज्वलनशील वस्तु लाना सख्त रूप से प्रतिबंधित और दंडनीय अपराध है। ट्रैक पार करने के लिए केवल अधिकृत फुट ओवर ब्रिज, रोड ओवर ब्रिज या अंडर पास का ही प्रयोग करें। सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें।
0: पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, माफ कीजिएगा, सुगम संगीत का कार्यक्रम अनुगूज। आज के कलाकार थे अदनान सामी। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके

0: उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से, और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी, इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: आशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। सीबीआई इस मामले में शुरुआती जांच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल तथा डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वाहनों के बेड़े में तत्काल कमी करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की हवाई यात्राओं में 50% की कटौती का आदेश दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों विधायकों के सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6

0: की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों, ऊर्जा सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
1: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
2: People to people connect.
0: श्री जॉर्ज ने बताया कि चार यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान श्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
2: The visit to the four European countries.
1: चार यूरोपीय देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। भारत इन देशों को मेक इन इंडिया अभियान के अहम साझेदार के रूप में देखता है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप और आपसी जनसंपर्क को मजबूत करने का रहेगा।
2: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
0: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से तीन भारतीय प्राचीन वस्तुओं की वापसी का उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था अब वापस लाई जा रही है।
3: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतरराज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। असम सरकार 26 मई को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद ये घोषणा की। डॉ. सरमा ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रचलन इस विधेयक के दायरे से बाहर रहेंगे।
4: इसे असम की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही राज्य के लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली सभी रस्मों, परंपराओं और रीति रिवाजों को भी इससे बाहर रखा गया है।
5: आउटसाइड द स्कोप ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड।
0: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने पांचवी बार पद ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, शिक्षा, खेल और औद्योगिक विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसमें गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्ड धारकों को 3 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना, इंदिरा गांधी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और मॉडल विद्यालय स्थापित करना शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी से जारी की। उन्होंने 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत पर लोगों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि जनता ने भाजपा एनडीए सरकार की विकास और सुशासन नीतियों पर अटूट विश्वास व्यक्त किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
5: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 23,413 पर स्थिर हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 7 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 95 रुपए और 70 पैसे पर बंद हुआ। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक ब्रेंट क्रूड $107.62 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।
0: गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। महाराष्ट्र में आज नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के लोगों का अनावरण किया गया। इसमें त्रिशूल दर्शाया गया है और गोदावरी नदी को शिवलिंग के रूप में चित्रित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये लोगो भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश देता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet increases minimum support prices MSP of 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Cabinet also gives nod for promotion of surface coal and lignite gasification projects worth 37,500 crore rupees. CBI arrests 5 persons in connection with NEET UG 2026 paper leak case. Raids continue in several states. Prime Minister Narendra Modi reduces his convoy size, prompting BJP chief ministers and other leaders to adopt austerity measures. West Bengal government decides to hand over recruitment scam probes to CBI, lifts all interstate restrictions on the movement of essential products. And in weightlifting, India's Ganeshwari Yadav bags a silver and bronze at Asian Senior Championships in Gandhinagar. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support price, MSP, of 14 kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the government has increased the MSP of kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce. He said for the kharif season, the estimated payout to the farmers will be 2,60,000 crore rupees. He said an estimated over 824 lakh metric tons of crops will be procured during the season.
7: किसानों के लिए आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया.
8: टुडे अ मेजर डिसीजन वाज टेकन फॉर फार्मर्स फॉर ऑल खरीफ क्रॉप. द एमएसपी हैज बीन फिक्स्ड एट कॉस्ट प्लस 50% और इवन हायर. विद दिस डिसीजन फार्मर्स विल रिसीव अ टोटल पे आउट ऑफ 2,60,000 करोड़ रुपीज. द एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट फॉर दिस ईयर विल बी 824 लाख मेट्रिक टन.
7: खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन.
6: Mr. Vaishnav said the highest increase of 622 rupees per quintal in MSP has been recommended for sunflower seed, followed by 557 per quintal for cotton and 500 rupees per quintal for sesame. He said for grade A paddy, the MSP will be 2,461 rupees per quintal. For Jowar hybrid, it will be 4,023 rupees per quintal. For Bajra, the MSP will be 2,900 rupees. And for Tur, it will be 8,450 rupees per quintal. The Union Cabinet has also approved a scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. Addressing media, Union Minister Ashwini Vaishnav said the scheme marks a major step towards accelerating India's coal and lignite gasification program.
7: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के रिजर्व है.
8: इंडिया हैज नियरली 400 बिलियन टन ऑफ कोल रिजर्व. बाय मेकिंग मैक्सिमम यूज ऑफ दिस कोल, वी कैन कन्वर्ट इट इनटू गैस एंड देन यूज दैट गैस इन फर्टिलाइजर्स एंड अदर सेक्टर्स. दिस विल हेल्प टू रिड्यूस द एलएनजी इंपोर्ट्स रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजर प्रोडक्शन. एन आउटले ऑफ 37,500 करोड़ रुपीज हैज बीन एलोकेटेड फॉर दिस स्कीम. द टोटल इन्वेस्टमेंट इन दिस प्रोजेक्ट विल बी अराउंड 3 लाख करोड़ रुपीज एंड projects will be set up to gasify 75 million tons of coal.
7: Coal ko isme gasify karne ke liye projects lagenge.
6: The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved Ahmedabad Sarkhej Dholera semi high speed double line project with a total cost of nearly 20,667 crore rupees. The Union Minister said as India's first semi high speed rail project, the project will serve as a pioneer project, acting as a reference model for the phased expansion of semi-high-speed rail across the country. The project will be completed by 2030-31. The Union Cabinet has also approved upgradation and modernization of Nagpur International Airport through long-term license involving private partner and a public-private partnership. GMR Nagpur International Airport Limited will take up the transformation of Nagpur's Dr. Babasaheb Ambedkar International Airport into a world-class facility. The phased development is envisaged to reach the ultimate capacity of handling 30 million passengers annually, positioning it as a key airport in central India. Prime Minister Narendra Modi has said the Union Cabinet's decision of approving an increase in the minimum support price MSP for kharif crops for the marketing season 2026-27 will ensure that crores of food providers in the country receive fair and profitable prices for their produce. In a social media post, Mr. Modi said this decision will bring greater prosperity to the lives of the farmers of the country. The Central Bureau of Investigation, CBI, has arrested 5 accused persons in connection with the alleged irregularities and paper leak related to the NEET UG 2026 examination. The 5 accused persons in the case, 3 from Jaipur, 1 from Gurugram and 1 from Nasik, and several other suspects are currently being examined. The agency has also carried out searches today at multiple locations across the country based on emerging leads. During the searches and arrests, several incriminating materials and electronic devices, including mobile phones, have been seized. The agency is also coordinating with the Special Operations Group, Rajasthan, which had conducted a preliminary inquiry in the case. Prime Minister Narendra Modi's appeal to reduce the consumption of fuel has made a profound influence, resulting in curtailing the use of petrol and diesel. Setting an example, the Prime Minister himself significantly reduced his convoy size, prompting several BJP chief ministers and other leaders to adopt similar measures. In keeping with the Prime Minister's appeal, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has directed an immediate 50% reduction in the fleet of vehicles. Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav has also announced that he will use a minimum number of vehicles for his convoy and asked his ministerial colleagues to do the same. He also encouraged people to use public transport. Delhi Chief Minister Rekha Gupta has announced limits on official representatives. She has urged Delhi residents to adopt carpooling and make greater use of buses and metro services instead of private vehicles. Rajasthan Chief Minister Bhajan Lal Sharma also announced to reduce his convoy size. Gujarat Governor Acharya Devvrat announced that he will travel within Gujarat using trains, state transport, buses and public transport. Bihar Deputy Chief Minister Vijay Kumar Chaudhary has announced that he will undertake official travel only when necessary. Amid the ongoing conflict in West Asia, the Prime Minister on Sunday urged people to reduce petrol and diesel consumption and use public transport to conserve foreign exchange. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You are with us on the news at 9. The government of West Bengal has lifted all restrictions on the interstate movement of potato, onion, fruits, vegetables, oil seeds, food grains, animal products and other essential products. Earlier, restrictions were placed by the erstwhile TMC government. It is learnt that huge losses were incurred by the potato farmers and other entities by this restriction. Before coming to power, the BJP had assured the farmers on lifting of the restriction. On the other hand, in a significant development, the government of West Bengal decided to hand over the cases related to teachers' recruitment, municipal recruitment and cooperative services recruitment scams to the Central Bureau of Investigation. Today, Chief Minister Shubhendu Adhikari alleged that the former TMC government had not taken any step in these cases to safeguard corrupt officers. He informed the media that the current government of West Bengal would adopt zero tolerance to institutional corruption. The Assam government will introduce the Uniform Civil Code UCC bill in the State Legislative Assembly on the 26th of this month. Chief Minister Hemanta Biswa Sarma made the announcement while addressing the media after chairing the first cabinet meeting of the new term. Dr. Sarma took oath as the Assam Chief Minister for his second consecutive term yesterday. Chief Minister Sarma said a special session of the Assam Assembly will be held from the 21st to the 26th of May, during which the newly elected MLAs will take oath. He added that the UCC bill would be tabled on the concluding day of the session.
9: Today, Assam Cabinet should pass Uniform Civil Code. We customize that to the requirement of Assam. We have completely exempted tribal population from the purview of Uniform Civil Code. We have also kept all rituals, traditions, customs practiced by the people of Assam outside the scope of Uniform Civil Code. The UCC bill will be laid before the Assembly on 26th of May.
6: Prime Minister Narendra Modi will embark on a six-day visit to the United Arab Emirates UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy on Friday. Briefing media in New Delhi this evening, Secretary West in the Ministry of External Affairs, Sibi George, informed that on the first leg of his five-nation visit, Mr. Modi will reach the UAE on Friday, where he will meet President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. He said the two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest.
10: Prime Minister will begin his visit from the UAE on 15 May, where he will meet the President of the UAE, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, and exchange views on bilateral relations, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. During the visit, both the leaders will discuss avenues to further deepen our bilateral ties in areas including trade, investment, energy, technology, culture, and people-to-people connect.
6: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met his Maldivian counterpart Irithisha Madam in New Delhi today on her first official visit to India. In a social media post, Dr. Jaishankar said during their meeting they underlined the neighbourhood first policy and reviewed bilateral cooperation. Dr. Jaishankar reiterated India's commitment to the Maldives' progress and development. Dr. Jaishankar also met his Brazilian counterpart Mauro Vieira and exchanged views on bilateral, regional and global issues. The External Affairs Minister said India values Brazil's support and perspectives on India-BRICS chairship. Senior officials from Iran, Kazakhstan, Nigeria and Uzbekistan have arrived in New Delhi to attend the two-day BRICS foreign ministers' meeting beginning tomorrow. U.S. President Donald Trump arrived in Beijing today for a high-stakes summit with his Chinese counterpart Xi Jinping. During their two-day talks beginning tomorrow, the two leaders are expected to discuss a range of critical issues, including the war involving Iran, U.S. arms sales to Taiwan, trade and artificial intelligence, and tariff amid growing economic and technological rivalry between the world's two largest economies. The U.S. president has brought along several top business and technology executives on his visit to China, underscoring the importance of economic and technological issues in bilateral relations. In weightlifting, India's Gyaneshwari Yadav bagged two medals, a silver and a bronze, at the Asian Senior Championships in Gandhinagar today. Gyaneshwari won a silver in the snatch section in the 53-kilogram category and then an overall bronze medal in the event with a combined lift of 194 kilograms. In Thailand Open Badminton, star shuttlers PV Sindhu, Lakshya Sen and Kidambi Srikanth progressed to the pre-quarterfinals of singles events in Bangkok. In women's singles, a two-time Olympic medalist PV Sindhu defeated Tung Siu Tong of Chinese Taipei 21-9, 21-12. She will take on Amalie Schultz of Denmark in the round of 16 tomorrow. Young Devika Sehag outclassed world number 26, Natsuki Nedera of Japan. She will meet Thai player Pichamon Opatniput. In another match, Malvika Bansod beat Wen Yu Chang of Canada. She will meet Chan Yufei of China. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heat wave to severe heat wave conditions over West Madhya Pradesh and West Rajasthan for the next 2 days. East Rajasthan, Gujarat and Maharashtra are expected to reel under heat wave conditions tomorrow. The weather agency also predicted heavy to very heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Assam and Meghalaya tomorrow. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Union Cabinet increases minimum support prices, MSP of 14 kharif crops for marketing season 2026-27. Cabinet also gives nod for promotion of surface coal and lignite gasification projects worth 37,500 crore rupees. CBI arrests 5 persons in connection with NETUG 2026 paper leak case. Raids continue in several states. Prime Minister Narendra Modi reduces his convoy size, prompting BJP chief ministers and other leaders to adopt austerity measures. West Bengal government decides to hand over recruitment scam probes to CBI, lifts all interstate restrictions on the movement of essential products. And in weightlifting, India's Gyaneshwari Yadav bagged silver and bronze at Asian Senior Championships in Gandhinagar. That is all in the news at 9. Good night.
11: Spotlight.
12: Good evening, listeners. Welcome to our program Spotlight. I am Nishit Kumar, and today we'll be discussing about key union cabinet decisions. And today we have with us economic analyst Shubhmoy Bhattacharjee to discuss about it. Shubhmoy, welcome to the show.
13: Happy to be here.
12: Shubhmoy, we all know that today there was this cabinet meeting which happened and a slew of decisions were taken. And we'll be discussing all of them one by one. But let's take up the first one, which is the union cabinet having approved a scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. Now, this is very significant, Shubhmoy, if we look at the current situation through which we are going through, especially when we talk about the West Asian crisis and also the energy crisis the world is facing all over. So this decision of the gasification thing makes it all the more important for the current times. How do you see it? And before you answer that, let's listen into the minister what he had to say about it.
14: भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है. करीब करीब अगर देखें तो आगे के 200 साल के लिए जितना कोयला चाहिए उतना भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है. तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था. उसका आज फैसला लिया गया है और बहुत ही सामूहिक फैसला है, कोल गैसिफिकेशन की स्कीम। बेसिकली ट्रांसपेरेंट बिडिंग के थ्रू सिलेक्शन होगा, 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट विल बी गिवन एज कैपेक्स इंसेंटिव और 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा। प्रोजेक्ट के प्रॉपरली डिफाइंड माइलस्टोन्स होंगे, हर प्रोजेक्ट पे 5,000 करोड़ रुपए का कैप लगेगा, मतलब इंसेंटिव देने के मामले में, जिससे कि ज्यादा प्रोजेक्ट्स हो पाए। 5,000 रुपीज का कैप, एक कैटेगरी के लिए 9,000 कैप और पर एंटिटी 12,000 रुपीज का कैप। जहां पर भी कोल और लिग्नाइट के लिंकेजेस दिए हुए हैं प्रोजेक्ट के लिए, वहां पर अगर कोल और लिग्नाइट का गैसिफिकेशन का प्रोजेक्ट आता है तो उसका लिंकेज का टेन्योर 30 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा।
12: Yashub, I just heard the minister speak about it. It really underlines the underpinning of his message was that we need to be self-sufficient more as we kind of brace, you know, the challenges that we are seeing in the current times. And of course, he was also talking about the coming times. So how do you see this statement of the Honorable Minister?
11: Well, it's quite significant because, you know, the India government aims for about 100 million tons of coal gasification by 2030. And the investments that we are looking out is about 4 lakh crore. That's 4 trillion. Now, to make that sort of a thing happen, as you know, the government had already about a few years ago had set up the task force in order the steering committee under Niti Aayog to look at coal gasification. And there's already a lot of backhaul work that has already been done to make this project take off. Essentially, what the government is providing is viability of funding and infrastructure status. So what the government has done today is given the financial incentives to support the very high capex that is required in gasification projects to make these projects viable. And there are also other things that will be provided. There will be cess on duties on coal feedstock. Those will be exempted. And there's a scheme already for blending methanol with gasoline and LPG. Well, essentially, what the reason why we want coal gasification is that if you do that gasification, you get a product which is something like an equivalent to the LNG, the natural gas, which, as we know, we have to import in huge amount. And that is creating tremendous problem for us. So if you can get the natural gas from our domestic sources, then that gets a tremendous support to us. In 21st century, we are talking about the fact that energy security is the underpinning of any country's self-sufficiency, economic progress, along with digital technology or security of digital structure. So both of these form a very strong areas of concern for the government. And that is why this is something that is very, very high top of the order, which is why you can see that despite lots of challenges and demand on government money, the government has still put in a considerable amount. It's almost, it's 37,500 crore, which is a very substantial amount of money. It's about, works out about closer to $4 billion that the government is now saying that it will make available to projects which can come up with good ideas of how to do coal gasification. The technology is known. The technology is there. What is only needed is for the companies to be able to create their own capex plan so that India can get a ready supply and a steady supply of coal gas. And this can be a very big changer. Our neighbors, like other countries, not just China, but even Japan, have started very major projects for coal gasification. And we should be able to scale up in a very short time the capacity of our projects.
12: Of course, another very important decision, rather, which the Cabinet Committee on Economic Affairs chaired by the Prime Minister Narendra Modi took was the approval of the increase in the minimum support price, that is MSP, for 14 Kharif crops for the marketing season 2026-27. Now, we'll discuss more about it, but before that, let's listen to the Minister, what he had to say about it.
14: किसानों के लिए आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया. तो आज के खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया, उसमें करीब जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं, उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से. और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन.
12: Shubma, as we just heard the minister speak about it, we all know that the government, with the increment of the MSP for Kharif crops of the marketing season, of course, 26-27, ensures rather the remunerative prices for the growers for their produce. The highest absolute increase in MSP over the previous year has been recommended for sunflower seed, as we are given to understand, at ₹622 per quintal, followed by cotton at ₹557 per quintal, and then Niger seed at ₹515 per quintal, and sesame at ₹5 500 per quintal. But Shubhmai, besides all these things, we know that how dependent our farmers, our producers are on the rain, and given the vagaries of the environment, as we have all been seeing, not just in India, but all over, this becomes that much more important. Now, this increment of MSP, how significant do you see, especially coming at this time? I mean, current year and the challenges that we are facing at the moment.
11: First of all, this minimum support price

0: चर्चा का विषय है।
1: दुनिया की नब्ज पश्चिम एशिया के तेल कुओं की धड़कनों से जुड़ी है। जब इन धड़कनों में युद्ध का शोर सुनाई देने लगे तो वैश्विक बाजार की सांसें फूलने लगती हैं। लाल सागर की लहरों से लेकर तेल के टैंकरों के बदलते रास्तों तक, आज एक बार फिर दुनिया ब्लैक गोल्ड यानी कच्चे तेल की अस्थिरता के मुहाने पर खड़ी है। जब हॉर्मूज की जलधारा में हलचल होती है तो दिल्ली, मुंबई और हर भारतीय शहर की सड़कों पर उसकी गूंज सुनाई देती है। लेकिन 2026 का भारत कल की तुलना में कहीं अधिक सजग है। आज हम केवल तेल के दाम गिरने का इंतजार नहीं करते, बल्कि ऊर्जा के नए विकल्पों और सामरिक भंडारों से अपनी सुरक्षा की दीवार ऊंची कर रहे हैं। नमस्कार, चर्चा का विषय है कार्यक्रम के आज के अंक के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। आज हम चर्चा करेंगे पश्चिम एशिया संकट और ऊर्जा बाजार, उभरती चुनौतियों के बीच भारत की तैयारियों पर। आज के कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत पश्चिम एशिया के इस झटके को सहने के लिए तैयार है और कैसे हमारी एनर्जी डिप्लोमेसी वैश्विक राजनीति के नए समीकरण लिख रही है। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व सीएमडी ओएनजीसी के सुभाष कुमार और ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू।
3: थैंक्स आनंद।
1: सुभाष जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। और हम सब जानते हैं कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 85% आयात करता है। जो इस समय हॉर्मूज की मौजूदा स्थिति है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि भारत की जो सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन की रणनीति है, जिसमें रूस, इराक और अमेरिका के बीच जो संतुलन भी है, कितना प्रभावी सिद्ध हो रही है?
3: आनंद जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। एक्चुअली आज के दिन में भारत जो है अपनी सप्लाई के लिए हॉर्मूज पे ओवरली डिपेंडेंट है। इनफैक्ट यदि हम तेल का देखें तो लगभग 80% से ऊपर वो हॉर्मूज से आता है और 40-50% तो गल्फ स्टेट से आता है। एलपीजी का भी इसी हिसाब से देखें तो लगभग सारी एलपीजी इस प्रॉब्लम से पहले गल्फ स्टेट से ही आती थी। तो अब इस हालात में एक्चुअली जो एनर्जी एक का चीज है, एक और एक एस्पेक्ट है कि इस क्षेत्र में, खाड़ी क्षेत्र में, ना केवल एनर्जी के लिए इम्पोर्टेंट है बट यहाँ पे लगभग 1 करोड़ इंडियंस भी रहते हैं और जो कि इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉरेन एक्सचेंज रिमिट करते थे। तो आज की डेट में गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिए हैं उसमें उन्होंने जो क्रूड जो सोर्सिंग है वो डाइवर्सिफाई की है और इस डिफिकल्ट सिचुएशन में किसी तरह मॉलिक्यूल्स पे की सप्लाई को कंटिन्यू करने के लिए अमेरिका, लैटिन अमेरिका, रशिया और अफ्रीका से भी तेल जो है इंपोर्ट किया है। तो ये जो सारा एक्शन है ये अभी तक काफी सक्सेसफुल रहा है क्योंकि यदि पूरा इफेक्ट इस डिसरप्शन का पड़ता तो शायद सिर्फ इसके भरोसे एक्चुअली इंडिया में तेल और तेल के प्रोडक्ट्स की किल्लत हो सकती थी।
1: पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि रोजमर्रा के जीवन में वो कैसे बदलाव लाकर इस संकट के समय देश और सरकार को बेहतर करने में मदद कर सकते हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या अपील की है।
4: मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें, जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आएं। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। साथियों, सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा।
1: नरेंद्र जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी बात ऊर्जा की होती है और भविष्य की तरफ हम देखते हैं तो स्ट्रैटेजिक रिजर्व यानी एसपीआर की भी चर्चा होती है और कई सारे मंत्रालय की तरफ से ये बयान दिया गया कि भारत के पास 74 दिन 80 दिन 60 दिन के आसपास का रिजर्व है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा हम विश्लेषण के नजरिए से देखें तो विशाखापत्तनम, मैंगलोर और पादूर में भारत ने जो अपने नए रिजर्व की खोज की है, क्या आपको लगता है कि अगर युद्ध लंबा चला तो भारत के लिए ये तीन सेंटर्स या कुछ और सेंटर्स एनर्जी शॉक से बचाने के लिए पर्याप्त हैं?
0: देखिए, हमको देखना होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था का साइज क्या है। आज हम दुनिया की अगर जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जो लार्ज इकोनॉमी, उनमें फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और किसी भी अर्थव्यवस्था का, खासतौर से अगर आप विकासशील अर्थव्यवस्था है जो भारत है, उसकी जो बैकबोन होती है, उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो ऊर्जा होती है। बिना ऊर्जा के अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ती है। और जब विकासशील अर्थव्यवस्था जैसी होगी, खासतौर से भारत जैसी, वहां ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा होती है। हमारे देश में तेल की खपत जो है वो लगभग 3.5% से 4% प्रति वर्ष बढ़ रही है, क्योंकि देश का विकास हो रहा है, क्योंकि प्रगति हो रही है, क्योंकि ज्यादा लोग जो है वो जो गरीबी से बाहर आ रहे हैं, मिडिल क्लास के अंदर आ रहे हैं, तो इसलिए उसकी खपत बढ़ रही है। हम आज की तारीख में लगभग 57 और 58 लाख बैरल तेल प्रतिदिन उसकी हमारे यहाँ खपत है, 5.8 मिलियन रफली बैरल्स पर डे। और उसका भारी मात्रा में लगभग 53 लाख बैरल हम आयात करते हैं लगभग 42 अलग अलग देशों से। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे सामने जो है दुविधा ये होती है, क्या हम जो विकास की गति है उसको रोकें, या वो लोग जिनको अभी भी और ऊर्जा की आवश्यकता है क्या उनको हम रोक सकते हैं, या किस हिसाब से हम ऊर्जा का इस तरह का प्रयोग करें जिससे कि हमारे को दिक्कत ना हो। जहां तक अब युद्ध जो है, ये भारत ने तो शुरू नहीं किया, जैसे जो कोविड था, कोविड की शुरुआत चाइना से हुई थी, ये युद्ध तो फारस की खाड़ी से शुरू हुआ है, खासतौर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो है सबसे बड़ी दिक्कत वहां से आ रही है। तो ऐसे में भारत जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का उपभोक्ता है, ऊर्जा का उपभोक्ता है, दूसरा सबसे बड़ा आयातक है, और भारी तेजी से जो आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, तो हमारे सामने चुनौती ये हो जाती है हम इसको कैसे देखें। जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की आपकी बात करी गई, स्ट्रेटेजिक रिजर्व इसलिए बनाए जाते हैं कभी कोई ऐसे हालात पैदा हो जाए कि देश के अंदर जो तेल लाने में जो है डिस्ट्रप्शन हो जाए, मतलब विदेशों से तेल लाने में दिक्कत हो, तो हम उसका प्रयोग कर सकें। लेकिन हमारा इतना विशाल देश है और इतनी तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है कि हमारी जो जरूरत है वो बहुत ज्यादा है। हालांकि हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व जिनको SPRs बोलते हैं वो हैं, लगभग 25 से 28 दिन के रिजर्व हमारे पास वो हैं। इसके अलावा जो तमाम रिफाइनरीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके जो है ऑयल टैंक फार्म्स होते हैं, उनके अंदर भी हमेशा क्रूड ऑयल जो है और प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर हम उन दोनों को जोड़ लें तो हमारे पास 50 से लेकर के 55 दिन के रिजर्व तो होते हैं। और दूसरा ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी पूरी दुनिया के अंदर ऐसे अच्छे रिलेशंस हैं, खासतौर से जो तेल के निर्यातक हैं, ऊर्जा के निर्यातक हैं, कि हमने जो है कहीं ना कहीं से हम तेल का इंतजाम हो रहा है। और आज भी भारत उन गिने चुने देशों के अंदर है जहां पे पेट्रोल या डीजल की कहीं कोई किल्लत नहीं है, उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है। और दाम भी भारत में अगर आप देखें अन्य देशों के मुकाबले तो काफी हुए। तो चूंकि हमारे अच्छे रिलेशनशिप हैं, और दूसरी बात एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा, चूंकि हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल के उपभोक्ता हैं और दूसरे सबसे बड़े आयातक, हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी होती है टू सिक्योर सप्लाई। लेकिन जो तेल के बड़े निर्यातक हैं, सऊदी अरब हो गया, अमेरिका हो गया, कुवैत हो गया, ईरान, इनके लिए आवश्यक होता है भारत से अच्छे संबंध रखें, क्योंकि उनकी एनर्जी सिक्योरिटी डिमांड से ताल्लुक रखती है। और डिमांड कहां सबसे ज्यादा पैदा हो रही है, वो भारत में। पूरी दुनिया में ऑयल की डिमांड का लीडर आज कौन है, वो भारत है। तो वो भी भारत से अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, इसलिए ये भी हमको सिक्योरिटी देता है। आपने जिक्र किया एनर्जी डिप्लोमेसी का, साथ में मैंने आपको ये बताया कि हिसाब से उनके लिए भारत एक हम बाजार है, इसलिए आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हमारा अभी तक जो देखा जाए, अब बहुत लंबा युद्ध चलता है, डिस्ट्रप्शन बहुत बड़ा हो जाता है, वो तो भविष्य के गर्भ में है, उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। लेकिन आज के धरातल पे जब मैं देखता हूं, ठीक है, तैयारी हमको चाहिए, कंजर्वेशन हमको करना है, तेल को हमको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन पैनिक बटन दबाने की कोई जरूरत नहीं है।
1: जी बिल्कुल, आपने जिस तरफ चर्चा को आगे बढ़ाया कि भारत के पास अभी पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि भारत के पास आने वाले कुछ महीनों के लिए रिजर्व मौजूद है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: Our LPG, the cylinder gas which you use in kitchens, about 60% used to come from the Strait of Hormuz. Now we had to make arrangements. I am amazed at what we were able to do. Our domestic production of LPG prior to the crisis was 35,000 or 36,000 metric tons per day. We ramped up our domestic production from 36,000 to 54,000 metric tons. This by itself is a mind-boggling thing.
1: सुभाष जी, भारत सरकार लगातार कुछ नए प्रयोग कर रही है और इसी दिशा में आज कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया कि जो कोल गैसीकरण परियोजना है उसको बढ़ावा देने के लिए 37,500 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत स्वच्छ कोयला उपयोग, ऊर्जा सुरक्षा और आयात पर निर्भरता कम होगी। हम सब जानते हैं कि आज के समय में जब तेल बिल्कुल अस्थिर हो गया है, उसकी कीमतें और रिसोर्सेस कम होते जा रहे हैं, तो ऐसे में दूसरे विकल्पों पर हम ध्यान दे रहे हैं। कैसे देखते हैं इस पहल को जो आज कोल गैसीकरण योजना को मंजूरी दी गई है?
3: जैसे कि तनेजा जी ने पहले ही बताया था कि भारत एक तेजी से विकसित होती हुई इकोनॉमी है और लगभग थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑयल और गैस का, तो इंडिया का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो एक बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी का है, और इकोनॉमी को यदि ग्रो करना है तो उसके लिए एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, वो है एनर्जी। और लकीली इंडिया में कोयले के काफी विशाल भंडार हैं, तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी पहल है कि हम कोल गैसिफिकेशन अपने इंटरनल जो रिसोर्सेज हैं उसको किसी तरह इकोनॉमिकली सस्टेनेबल मैनर में यूज कर पाए, बिकॉज कोल के साथ जनरली ये कहा जाता है कि उससे एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन जो है वो बहुत ज्यादा होती है, एमिशन रेट इज वेरी हाई, बट यदि कोल गैसिफिकेशन होता है इंस्टीट्यूट तो आपको ना तो बड़ी बड़ी खदानें खोदनी पड़ेंगी और ना ही उसका जो एमिशन है वो एक पॉइंट के बियॉन्ड जाएगा। इनफैक्ट उससे ये होगा आपको दोनों, एक टाइमली एनर्जी भी मिल जाएगी और एमिशन लेवल जो है ग्रोथ के लिए जो इंडिया

0: डोमेस्टिक है तो ये सोने पे सुहागे की तरह है।
1: हम अपने श्रोताओं को बता दें कि कोयला गैसीकरण आपके लिए अगर नई चीज है तो ये होता क्या है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें कोयले को उच्च तापमान और दबाव पर ऑक्सीजन और पानी के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है। इससे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से युक्त सिनी गैस प्राप्त होती है जिसे औद्योगिक उपयोग के लिए संसाधित किया जा सकता है। ये पहल भारत की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत प्राकृतिक गैस, उर्वरक और रसायनों के आयात पर निर्भरता को कम कर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाना है। इस योजना के तहत प्रोजेक्ट का चयन एक पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना है। और इसी पर और जानकारी दी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: आज हम सब जानते हैं कि गैस का जितना रिक्वायरमेंट है और दुनिया भर में जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उस हिसाब से हम आत्मनिर्भर कैसे बने। भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है, करीब करीब अगर देखें तो आगे के 200 साल के लिए जितना कोयला चाहिए उतना भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है। तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था, उसका आज फैसला लिया गया है और बहुत ही सामूहिक फैसला है, बहुत ही टाइमली फैसला है। कोल गैसिफिकेशन की स्कीम, इस गैस से आगे उस गैस को जला के पावर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस गैस से एलपीजी का इक्विवेलेंट फॉर्म भी बना सकते हैं और उस गैस से हम फर्टिलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग हो, कई सारे जो पेट्रोकेमिकल्स के माने जो एक रिफाइनरी में बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उसी तरह के बाय प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी निकाले जा सकते हैं। तो एक तरीके से कोयले से गैस, गैस से फर्टिलाइजर, कोयले से गैस, गैस से पावर, कोयले से गैस, गैस से कई तरह के केमिकल्स, ये बनाने की ये प्रोसेस है और ये बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि इस युग में हमें जितना आत्मनिर्भर बने उतना अच्छा है और उतना ही देश के लिए भविष्य का बड़ा इंश्योरेंस बनता है।
1: नरेंद्र जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत सरकार ने हाल ही में इथेनॉल ब्लेंडिंग और ग्रीन हाइड्रोजन पर जोर दिया है। क्या ये ग्रीन फ्यूल्स आने वाले समय में, चाहे शॉर्ट टर्म की ही हम बात करें, कच्चे तेल की कीमतों के झटके को सहने में हमारी मदद कर सकते हैं?
3: कि हम बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है जैसे मैंने पहले कहा, और हमारी अर्थव्यवस्था जो है कुल मिलाकर के फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है। फॉसिल फ्यूल का मतलब हुआ तेल, गैस और कोयला, कोयला भी फॉसिल फ्यूल होता है। पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था 80% आज की तारीख में भी वो फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है, लेकिन क्योंकि हमारी निर्भरता तेल पे, गैस पे बहुत ज्यादा है अन्य देशों के मुकाबले अगर आप देखें तो, इसलिए हमारी कोशिश ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे रिसोर्सेज को ढूंढें जिससे हमारी आयात पर निर्भरता कम हो सके। हालांकि ये अलग बात है कि हमारी आयात पर निर्भरता एकदम कम होने वाली नहीं है, इसलिए क्योंकि हम बहुत तेजी से हमारा विकास हो रहा है, हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत तेजी से उसका विस्तार हो रहा है, इसलिए आने वाले समय में हमारे देश में तेल की जो जरूरत है वो भी बढ़ने वाली है, गैस की भी बढ़ने वाली है और कोयले की भी बढ़ने वाली है। लेकिन साथ में जो है हमने इथेनॉल जो ब्लेंडिंग करके उसमें जो लगभग 20% पेट्रोल में भी वो किया जाता है, डीजल में नहीं किया जाता, पर उससे हमने आयात में थोड़ी सी निर्भरता जो है कम करी है। ठीक उसी तरीके से जो देश होता है वो भविष्य की तरफ भी देखता है और जिसमें हाइड्रोजन को एक ऐसी ऊर्जा माना जाना है कि आने वाले समय के अंदर जो हमारा मिशन है कि एनर्जी इंडिपेंडेंस मतलब ऊर्जा की स्वतंत्रता हमको चाहिए 2047 तक, 2047 तक, उसमें हाइड्रोजन जो है एक फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी जो है और उसमें बड़ी भूमिका वो निभाएगा। लेकिन ये दोनों चीजें जिसका भी मैंने जिक्र किया, इसका जो ये भविष्य के बारे में ज्यादा है, भविष्य का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 100 साल बाद, लेकिन अभी इनको थोड़ा समय लगने वाला है, हाइड्रोजन का को भी समय लगने वाला है, लेकिन ये है कि देश उस तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जो सबसे जरूरत चीज ये है वो है कि इस समय हमारी सरकार की कोशिश कि जो ऊर्जा की गरीबी के नीचे के लोग हैं उनको कैसे ऊर्जा उपलब्ध कराया जाए, उसके तहत एलपीजी हर एक को दी गई उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत, साथ में भी ये कोशिश है कि जो चाहे वो डोमेस्टिक कंज्यूमर हो या वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो या जो हमारी ऊर्जा एनर्जी की आवश्यकता है उसके लिए हमको क्या करना है, क्योंकि युद्ध जो है कब खत्म होगा ये कोई नहीं जानता, और खत्म भी हो जाएगा फिर भी उसका जो असर है हमारी अर्थव्यवस्था पर, विश्व की अर्थव्यवस्था पर, वो एक लंबे समय तक रह पाएगा। तो एक तरफ तो सरकार जो है इस बात की तैयारी कर रही है, फ्यूचर के लिए तैयारी हो रही है, भविष्य की तैयारी हो रही है, लेकिन साथ में जो वर्तमान है, वर्तमान में भी पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां से जो है तेल लेके आया जा सकता है, प्राकृतिक गैस लेके आया जा सकती है, उसको लाया जा रहा है। उसके लिए दो चीजों का प्रयोग करा जा रहा है, एक तो ये कि हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, जो हमारी गुडविल है, जो G20 में हमारा दबदबा है, और इसके अलावा विकसित देशों में भी जो हमारा अच्छे संबंध जैसे क्वाड के अंदर है उसको, साथ में इसके अलावा ब्रिक्स के अंदर है, आपको पता है ब्रिक्स की मीटिंग विदेश मंत्री की जा रही है, जहां भी एक विषय रही रहने वाला है, वो सबका यूज करा जा रहा है जिससे कि जो तेल की जो सप्लाई है उसमें किसी तरह की बाधा ना आए, जो

0: में सरकार का सबसे बड़ा फोकस है कि सप्लाई डिसरप्शन नहीं होना चाहिए, और भारत तो उन गिने चुने देशों में है, खासतौर से विकासशील दुनिया में या ग्लोबल साउथ में, जहां अभी तक सप्लाई का डिसरप्शन आपने नहीं देखा है, खासतौर से तेल को लेकर के। एलपीजी में थोड़ी चुनौतियां आई हैं, लेकिन उसको भी काफी हद तक एड्रेस कर दिया गया है, काफी हद तक। तो मेरा ये मानना है कि हमको दो चीजें, एक तो प्रेजेंट और एक साथ में मीडियम टू लॉन्ग टर्म, और दूसरा फ्यूचर, ये तमाम चीजें जिसमें हमने जो कोल गैसिफिकेशन की बात करी, ये जो है मीडियम टारगेट्स में ज्यादा आती हैं और लॉन्ग टर्म की तैयारी में आती है कि आज से अगर 15 साल बाद, 10 साल बाद वो हालात पैदा जो आज हैं, तो हम जो है काफी हद तक उसमें बिना किसी घबराहट के उसका जो है जो सोल्यूशन है वो हम देश के अंदर ही ढूंढ पाए। देखिए, हमको ध्यान रखना पड़ेगा जो ऊर्जा सुरक्षा है, एनर्जी सिक्योरिटी, वो आर्थिक सुरक्षा या इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बुनियाद होती है, और इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी की बुनियाद होती है। अगर आप तीनों सिक्योरिटीज को देखते हैं, सबके बॉटम में या बुनियाद में वो एनर्जी सिक्योरिटी होती है। एनर्जी के बिना कुछ नहीं मूव करता, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वो परिवार हो या समाज, वो मोहल्ला हो, शहर हो, देश हो, बिना एनर्जी के कुछ नहीं चलता। और इसलिए सरकार की पूरी कोशिश है कि दुनिया में चुनौतियां आती रहती हैं, ये तो सुनामी जैसी चुनौती है। तमाम अर्थशास्त्री इसको जो है एनर्जी कोविड के नाम से बुला रहे हैं, यूरोप में कुछ अर्थशास्त्री इसको जो है इकोनॉमिक कोविड के नाम से बुला रहे हैं, लेकिन भारत ने जिस जिम्मेदारी और मुस्तैदी से इसका जवाब दिया है, देश को तैयार किया है। और अब अगर प्रधानमंत्री की स्पीच को देखें तो प्रधानमंत्री ने आम जनता से संवाद किया है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करी है खुले प्लेटफॉर्म पर। प्रधानमंत्री की ब्रेन स्टॉर्मिंग और संवाद ये है, दुनिया में ऐसा ऐसा हो रहा है और हमको उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। हो सकता है इतनी जरूरत ना पड़े, लेकिन प्रधानमंत्री वो देश से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं खुल के, जैसे डेमोक्रेसी में होना चाहिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं कि दुनिया के हालात क्या है और हम जो है कैसे कैसे हमने जो है इसकी तैयारी करनी चाहिए। उनके विचार जो है वो आम आदमी से साझा कर रहे हैं, इसी को लोकतंत्र कहते हैं।
1: जी हाँ, बिल्कुल। और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत ने काफी प्रगति की है और आने वाले वर्षों में हमें इसमें और सफलता मिलने की उम्मीद है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: ग्रीन हाइड्रोजन इज द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। ग्रीन हाइड्रोजन विल अल्टीमेटली सक्सीड वेयर देयर इज लोकल डिमांड, देयर इज लोकल प्रोडक्शन एंड देयर इज लोकल कंजम्पशन, एंड देयर आर नॉट मेनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड एज यूनिकली क्वालिफाइड as India is to make that happen. We set ourselves a target of producing 5 million tons of green hydrogen annually by 2030, supported by strong policy frameworks and a significant financial outlay.
1: सुभाष जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, जब पश्चिम एशिया का संकट है और दुनिया के कई देश प्रभावित हो रहे हैं और भारत भी इससे अलग नहीं है, ऐसे में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर आने वाले समय में आप और किस तरह की पहल की उम्मीद कर रहे हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से हो या निजी कंपनियों की तरफ से?
3: जी, ये आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया। एक्चुअली जहां तक ऊर्जा सुरक्षा की बात है और जिस तरह का ये क्राइसिस है, उसमें सबको आगे आना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो अपने स्तर पे इमीडिएट बेसिस पे कर सकती थी वो कर रही है और आगे भी करती रहेगी। अभी क्योंकि देश को आगे बढ़ना है और उसके लिए बड़ी क्लैरिटी है कि अगले 25 साल में कहाँ जाना है और 2070 तक कहाँ जाना है, वो क्लैरिटी है। तो इसके लिए मैं जो कुछ चीजें समझता हूँ कि बहुत जरूरी हैं, एक तो जो एनर्जी एफिशिएंसी है, टू बी एबल टू, जो एग्जिस्टिंग एनर्जी जितनी कंज्यूम हो रही है उससे जितना ज्यादा से ज्यादा वर्क या आउटपुट ली जा सके, दैट शुड बी आइटम ऑन प्रायोरिटी। जो दूसरा इशू है वो जो डोमेस्टिक एंडोमेंट्स है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, उनको किसी तरह यूज करके यदि हम अपनी जो ऊर्जा की सप्लाई है उसको बढ़ा पाए। और इसमें मिसाल जैसे आपने एथेनॉल की दी, मैं एक्चुअली उससे एक स्टेप और आगे जाऊंगा। सीबीजी एक ऐसा पोटेंशियल है जो आइडेंटिफाइड है और 15 मिलियन टन का गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सतत प्रोग्राम एनविसेज किया था। टोटल पोटेंशियल जो है वो लगभग 62 मिलियन टन का है। तो अब क्योंकि इस तरह की स्थिति में वो एक एरिया होगा जहां हम ट्रिगर करें और जो सीबीजी का पूरा पोटेंशियल है उसके यूज करें, और ये सबसे लो कॉस्ट ऑप्शन होगा फॉर द रीजन के सारा कंट्री लकीली सीजीडी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। तो आपको सेपरेट सप्लाई चेन्स नहीं बनानी है, सप्लाई चेन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। यदि आप डोमेस्टिक सप्लाई को बढ़ा सकते हैं तो देश को ही जो किसान है और जो गांव है हमारे, क्योंकि सीबीजी लार्जली उन एरियाज में प्रोड्यूस होगी, तो उसके लिए बहुत बड़ा एक साधन बनेगा। तीसरा जो है, जो देश में बाकी जितने साधन है, चाहे वो हाइड्रोजन की बात हो रही है, आपकी सोलर की बात है, या इवन थर्मल पावर की बात है, सब जो है वो इस टाइम ट्रिगर करने के लिए एक दीर्घकालीन प्रोग्राम बनाना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि आगे कोई इस तरह का डिसरप्शन आता है। ऑफ कोर्स इस बार भी इंडिया ने उसको बड़ा बखूबी फेस किया है, पर क्योंकि आने वाले समय में 10 साल बाद ब्लड से यदि इकोनॉमी 2.5-3 गुना हो जाती है, तो उस स्थिति में आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम से कम दुगनी होगी, और यदि वो दुगनी होगी तो आप डोमेस्टिकली कितनी प्रोड्यूस कर सकते हैं वो होना चाहिए। और एक जो बात है, जो पिछले कुछ सालों में अच्छा भला देश ने काफी ऑयल और गैस प्रॉपर्टीज भी काफी एक्वायर की थी दुनिया में, और वो एक बहुत बड़ा कुशन की तरह काम कर सकती है, तो हमें स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन ऑफ एसेट्स जो है वो कंटिन्यू करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। मतलब यदि आप कोशिश करिए कि आपका अपने रिसोर्सेज हो, पर यदि वो बाय चांस आपके वो एडिक्वेट नहीं है, तो कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट आपको ग्लोबली इतनी ओनरशिप है कि जब जरूरत पड़े तो आप इंडिया को भेज सकें। तो और कोल गैसिफिकेशन तो एक बहुत ही बढ़िया कदम है जो उठाया जा रहा है, और यदि इसका ही भी पोटेंशियल और कंट्रीब्यूशन काफी रहेगी। तो मैं सोचता हूँ ये 4-5 चीजें डेफिनेटली गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में होंगी, और काम ऑलरेडी चल रहा है, तो ये काफी कंट्रीब्यूट करेंगी एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ।
1: और हम बात कर रहे हैं ऊर्जा सुरक्षा की, और देशवासियों की चिंताओं को लेकर लगातार अंतर मंत्रालयीय संवाददाता सम्मेलन हो रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि भारत की क्या स्थिति है ऊर्जा को लेकर।
4: वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते, जैसा आप जानते हैं कि ऊर्जा आपूर्ति वर्ल्ड सप्लाई डिस्ट्रप्शंस हुए हैं ऊर्जा आपूर्ति में, और इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी प्राइस वॉलेटिलिटी देखी जा रही है, परंतु भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि आम उपभोक्ता को कम से कम असुविधा के साथ फ्यूल सप्लाई की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। और इन सभी जो स्टेप्स लिए हैं उनके फलस्वरूप हमारी क्रूड इन्वेंट्री मेंटेन है, टाइड अप है, हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही है, किसी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट नहीं है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर भी कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है, पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं, और घरेलू कुकिंग के लिए एलपीजी की आपूर्ति की जा रही है।
1: नरेंद्र जी, कार्यक्रम में समय बहुत ज्यादा नहीं है, आपसे एक सवाल पर संक्षिप्त टिप्पणी आपसे चाहेंगे कि तेल की कीमतों में जो अस्थिरता का असर हो रहा है भारतीय रुपए और करंट अकाउंट डेफिसिट पर, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि तेल व्यापार के लिए रुपया पेमेंट मैकेनिज्म, जिसकी चर्चा कुछ समय से चल रही है, इसको और प्रभावी बनाने से कुछ राहत मिल सकती है?
0: नहीं, अच्छा प्रश्न है और काफी इसकी चर्चा भी है, लेकिन ये जो हमारे जो कुल मिला के संबंध है पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों से, उस पर डिपेंड करेगा हम उसको कैसे बैलेंस करते हैं। अमेरिका से हमारे बड़े अच्छे संबंध है, सामरिक संबंध है और लॉन्ग टर्म संबंध है, हम क्वाड के मेंबर हैं और अमेरिका को हम चाहते हैं यहाँ ज्यादा और निवेश करे, और वो जो फ्री वर्ल्ड जिसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, उसका अमेरिका काफी उसमें दबदबा है, और अमेरिका जो है वो पेट्रोडॉलर को मजबूत रखना चाहता है, वो बड़ी आपत्ति करता है अगर कोई लोकल करेंसीज में तेल खरीदता है, लेकिन हमको अपने राष्ट्रीय हित देखने हैं, और पिछले दिनों हमने रूस के साथ तमाम जो डील हुई है उसमें रुपए की बड़ी भूमिका रही है, और इस तरीके की बातचीत कुछ अन्य देशों से भी चल रही है, लेकिन कुल मिलाकर के हमको बैलेंस बना के चलना होता है राजनीति के अंदर, क्योंकि तेल के बारे में कहा जाता है तेल 90% जियोपॉलिटिक्स है, तो उसमें हमको उसको भी बैलेंस रख के चलना है, लेकिन साथ साथ मुझे लगता है आवश्यक हमारे लिए यह है कि हम एक लॉन्ग टर्म जो हमारा प्लान रहेगा उस पर और थोड़ा जोर डालें, देश के अंदर जो तेल का खनन है, उत्पादन है, उसको और इंसेंटिवाइज करें, विदेशों में जाकर के जहां भी तेल के भंडारों में हम हिस्सेदारी खरीद सकते हैं उसको थोड़ा और एग्रेसिवली खरीदें, और साथ में जो रिन्यूएबल एनर्जी को हम काफी जोर दे ही रहे हैं, लेकिन हमको यह भी साथ में समझना पड़ेगा कि हमारी देश का जो प्रगति है, जो हमारा विकास, उससे तो हम समझौता कर नहीं सकते, और आने वाले समय के अंदर हमें और तेल की जरूरत पड़ेगी हमारी अर्थव्यवस्था को, और गैस की भी जरूरत पड़ने वाली है, और ये सारा कुछ सौभाग्य से हमारे आसपास के देशों में उपलब्ध है, खासतौर से खाड़ी के देशों में। एक नया वेस्ट एशिया बनेगा ये जब भी युद्ध समाप्त होता है, ईरान की अर्थव्यवस्था शायद खुलेगी, यूनाइटेड अरब एमिरेट से जो है वहां नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, सऊदी अरब का रवैया जो बड़ा कड़ा रहा है वो थोड़ा नरम पड़ेगा, तो मुझे लगता है हमारे देश के आसपास ही नई संभावनाएं जो है उनका शीघ्र जन्म होगा और हमको देखना पड़ेगा क्या वहां से हम पाइपलाइन बना सकते हैं या हम अपने एलएनजी टैंकर बना सकते हैं, अपने टैंकर्स बना सकते हैं, बहुत सारी इसमें चीजें हैं। तो मुझे लगता है युद्ध तो है लेकिन युद्ध में हमको देखना है कि अवसर क्या है और हमारे इतने अच्छे संबंध हैं तमाम देशों से जो तेल के बड़े निर्यातक हैं और साथ में हमारी जो भारत की जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, अपने विजन में बिल्कुल क्लियर है। तो मुझे लगता है कि हमको चिंता का विषय नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि समय के साथ साथ जरा थोड़ा हमको इस दिशा में खासतौर से एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ थोड़ा और स्मार्टली और तेजी से बढ़ना पड़ेगा।
1: जब हमारे आपके परिवार पर संकट आता है तो हम अपने अभिभावकों की तरफ देखते हैं और उनके दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी समझते हैं। जब पश्चिम एशिया में संकट है तो भारत के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों से अपील की है कि वो टीम इंडिया की तरह एकजुट होकर इसका सामना करें। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
5: देश का हित, देश के लोगों का हित, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। आप देख रहे हैं कि इस समय वैश्विक स्तर पर किस तरह की चुनौतियां हैं। वेस्ट एशिया में संकट की स्थितियां लगातार बनी हुई है। युद्ध के इस माहौल का बहुत नकारात्मक असर पूरे विश्व पर पड़ा है और भारत भी इससे प्रभावित हो रहा है। देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य में हमें अपना संयम भी बढ़ाना होगा। हमें मिलकर संसाधनों को बचाना होगा, देश के हितों की रक्षा करनी होगी। जिस तरह कोरोना काल में हमने संकटों का मिलकर सामना किया था, वैसे ही देशभक्ति की भावना से हमें फिर एक बार भारत को इन वैश्विक संकटों से निकालने के लिए एक साथ खड़ा होना ही होगा।
1: कहते हैं संकट ही समाधान की जननी है। पश्चिम एशिया की ये चुनौतियां भारत को याद दिलाती हैं कि हमारा रास्ता आत्मनिर्भरता की ओर ही जाता है। चाहे वो हमारी सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों, रेलवे का सोलर विजन हो या फिर रेगिस्तानों के नीचे छुपा हमारा सामरिक तेल भंडार, भारत अपनी सुरक्षा की कहानी खुद लिख रहा है। पश्चिम एशिया की रेत में भले ही हलचल हो लेकिन भारत का संकल्प अडिग है। हम न केवल इस संकट से उभरेंगे बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया को एक नई राह भी दिखाएंगे। सुभाष जी आपका, नरेंद्र जी आपका आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: थैंक यू,
3: धन्यवाद।
1: आप ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
6: चर्चा का विषय है।
7: आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।

0: रेलवे ट्रैक के किनारे झाड़ियों, सूखी घास और खेतों की पराली में आग ना जलाएं। इससे ट्रेनों का परिचालन बाधित होता है एवं दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है।
1: रेल यात्रा के दौरान ट्रेन में पटाखे या कोई भी ज्वलनशील वस्तु लाना सख्त रूप से प्रतिबंधित और दंडनीय अपराध है। ट्रैक पार करने के लिए केवल अधिकृत फुट ओवर ब्रिज, रोड ओवर ब्रिज या अंडर पास का ही प्रयोग करें। सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें।
0: पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छता से बदले अपना परिवेश, स्वच्छ जीवन की ओर एक कदम बढ़ाएं।
1: स्वच्छता अपनाएं, स्वास्थ्य का आनंद उठाएं।
0: गंदगी हटाओ, स्वच्छता लाओ, स्वस्थ जीवन जीने का सपना साकार करो।
1: स्वच्छता की आदत, स्वस्थ जीवन की शुरुआत।

0: स्वच्छता का संदेश फैलाओ, हर जगह सफाई लाओ,
1: कूड़ा कचरा सही जगह डालो, स्वच्छता की आदत अपनाओ,
0: साफ सफाई से जीवन सुहाना, स्वस्थ समाज का सपना सजाना,
1: गली मोहल्ला शहर हर क्षेत्र हो चमकदार, स्वच्छता का नियम सबको समझाओ मेरे यार।

फिल्म बादशाह के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामिनी।

इसमें आज आप सुनेंगे पद्मा तलवलकर का गायन राग केदार।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सूर्यामिनी में अभी आप पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन राग झिंझोटी सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
2: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रति वर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धौलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धौलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। CBI ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का निर्णय लिया है। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव CB जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज ये मंजूरी दी। प्रवीण सूद का वर्तमान कार्यकाल इस महीने की 24 तारीख को समाप्त हो रहा था। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 193 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 66 रन बना लिए हैं। कोलकाता की ओर से अंग कृष रघुवंशी ने 71 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support prices, MSP, for 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, the government has increased the MSP of kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce. Mr. Vaishnaw said, the highest increase of 622 rupees per quintal in MSP has been recommended for sunflower seed, followed by 557 per quintal for cotton and 500 rupees per quintal for sesamum. He said, for grade A paddy, the MSP will be 2,461 rupees per quintal. For Jowar hybrid, it will be 4,023 rupees per quintal. For Bajra, the MSP will be 2,900 rupees. And for Tur, it will be 8,450 rupees per quintal. The Union Cabinet has also approved a scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved Ahmedabad Sarkhej Dholera semi-high-speed double-line project with a total cost of nearly 20,667 crore rupees. The Union Cabinet has also approved upgradation and modernization of Nagpur International Airport through long-term license involving private partner under public-private partnership. Prime Minister Narendra Modi has said that the Union Cabinet's decision of approving an increase in the minimum support price MSP for kharif crops for the marketing season 2026-27 will ensure that crores of food providers in the country receive fair and profitable prices for their produce. In a social media post, Mr. Modi said that this decision will bring greater prosperity to the lives of the farmers of the country. The Central Bureau of Investigation, CBI, has arrested 5 accused persons in connection with the alleged irregularities and paper leak related to the NEET UG 2026 examination. The 5 accused persons in the case, 3 from Jaipur, 1 from Gurugram, and 1 from Nashik, and several other suspects are currently being examined. The agency has also carried out searches today at multiple locations across the country based on emerging leads. During the searches and arrests, several incriminating materials and electronic devices, including mobile phones, have been seized. The agency is also coordinating with the Special Operations Group Rajasthan, which had conducted a preliminary inquiry in the case. Prime Minister Narendra Modi's appeal to reduce the consumption of fuel has made a profound influence, resulting in curtailing the use of petrol and diesel. Setting an example, the Prime Minister himself significantly reduced his convoy size, prompting several BJP chief ministers and other leaders to adopt similar measures. In keeping with the Prime Minister's appeal, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has directed an immediate 50% reduction in the fleet of vehicles. Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav has also announced that he will use a minimum number of vehicles for his convoy and asked his ministerial colleagues to do the same. Delhi Chief Minister Rekha Gupta has announced limits on official vehicles used by ministers, MLAs and other public representatives. Rajasthan Chief Minister Bhajan Lal Sharma also announced to reduce his convoy's size. Gujarat Governor Acharya Devrat announced that he will travel within Gujarat using trains, state transport buses and public transport. Bihar Deputy Chief Minister Vijay Kumar Chaudhary has announced that he will undertake official travel only when necessary. Foreign Minister of the Islamic Republic of Iran, Sayyed Abbas Araghchi, arrived in New Delhi this evening to participate in the meeting of the foreign ministers of the BRICS member country. In IPL cricket, Kolkata Knight Riders have set a target of 193 runs for Royal Challengers Bengaluru and Raipur. In reply, RCB were 71 for 1 in 7.1 overs when reports last came in. Put into bat first, Kolkata Knight Riders posted 192 for 4 in the stipulated 20 overs. Earlier, Royal Challengers Bengaluru won the toss and elected to field after rain and a wet outfield delayed the start of the match. In weightlifting, India's Gyaneshwari Yadav bagged 2 medals, a silver and a bronze at the Asian Senior Championship in Gandhinagar today. And that is the end of this news bulletin.
0: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। संपन्न होती हमारी आज की सायंकालीन प्रसारण सभा। कल प्रातः 5:55 पर हम अपनी प्रातःकालीन प्रसारण सभा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।